0: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति, लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ, आपकी आवाज में, सिर्फ और सिर्फ वाग रेडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं दिन का ये खूबसूरत सफर हर रंग के साथ में। साथियों, सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना आप सुन पाएंगे। हर सुबह की शुरुआत हो ईश्वर के नाम के साथ। आरती, भजन और मन को शांति देने वाला ये कार्यक्रम समर्पित है आराधना को। तो जुड़िए प्रभु स्मरण में और कीजिए अपने दिन का शुभारंभ। इसी के साथ साथियों, अगला कार्यक्रम है 6:30 पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी। किसान हमारे अन्नदाता है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की सलाह, ताकि खेत भी मुस्कुराए और अन्न भंडार भी भरे। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी कि मैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है सच्चा बचपन। इसे आप सुन पाएंगे 7 बजे। श्रोताओं, बचपन की कहानियाँ, नैतिक शिक्षा और बच्चों के लिए मनोरंजन का खजाना, प्यारे नन्हे श्रोताओं के लिए एक खास कार्यक्रम जहाँ हंसी, ज्ञान और संस्कार साथ चलते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इसी रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। आप सुन पाएंगे 7:30 पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज को, युवा शक्ति देश की असली ताकत। इस कार्यक्रम में उठेंगे युवाओं के मुद्दे, मिलेंगी करियर गाइडेंस, मोटिवेशंस और नए विचारों को मंच। जुड़िए और बनिए बदलाव की आवाज में। इस कार्यक्रम को लेकर आती है आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी कि मैं। अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8 बजे सच्चा स्वराज। जी हाँ साथियों, स्वराज सिर्फ राजनीतिक नहीं, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में सुनिए स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और जानिए आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी कि मैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे 8:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आप सुनेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास, लोक संगीत में बसती है हमारी आत्मा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों ढोलक, बांसुरी और मंजीरी की ताल पर झूमने के लिए। अगला कार्यक्रम सुन पाएंगे 9 बजे हमारा स्वास्थ्य। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर। साथियों, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, इस कार्यक्रम में जानिए घरेलू नुस्खे, डॉक्टरी सलाह और योग से जुड़ी बातें और खुद को रखिए तंदुरुस्त हर रोज।
1: आगे बढ़ते हुए हम सुनेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे आप सुन पाएंगे 9:30 पर। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी।
0: साथियों, आपको कार्यक्रम की रूपरेखा तो बताई दी हूँ। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे 10 बजे और 10 बजे कार्यक्रम आता है हमारी बात आपके साथ। साथियों, ये कार्यक्रम समाज के मुद्दे, संवाद का एक मंच, आप कहिए हम सुने, क्योंकि आपकी बातों में है वो ताकत जो बदलाव ला सकती है। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 10 बजे और इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। दोपहर 11 से 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा आपकी फरमाइश सिर्फ आपके नाम, आपके पसंदीदा गानों की फरमाइश आपके संदेशों के साथ। आप अपने संदेश हमें व्हाट्सएप ऐसे मिस कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए, हमारा नंबर है 9460051234 और आप अपने फरमाइश गीतों को सुन सकते हैं वागर रेडियो 90.8 FM पर। श्रोताओं, बजेंगे वही गाने जो आपके दिल की धड़कन है। तो जुड़े रहिए वागर रेडियो पर, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज है सबसे खास। तो श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना।

जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई बड़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? इस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है सदा। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में, यह आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है हृदय में, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए। मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे, पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे, संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करता है, और अपेक्षा की तो नियति है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की प्रमाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते, पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाए और स्वीकार करे केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन स्वयमेव सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा। जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है, और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोनो ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते। मैं आप सबनु घणेमान स्वागत करा हूँ अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम की भाई बोनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय निहाते। तो भाई बोनो आज अमारे कार्यक्रम में अब तक की बातचीत नो विषय है कि खरीफ ने बाद आपड़े रबी नी खेती करा हूँ तो अवड़े तकी आपणे एनी तैयारी हरते शुरू करवी है, कई कई बातनुं ध्यान रखवू है, एने बारामे आजे आपणे वाते करवा वारा हां। तो वाते तमारी आप तैयारी घणा काणी रहेंगा पण कार्यक्रम शुरू कर एने पहले आपने हमरावी दा गीत ने मोरे करा आपणी वाते। तो बायन बोनो आप हांभळता रहेजो आपणो रेडियो आपणी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: બેન્ડ બનુ ગીત તો આઈશું પૂરું અને ગીત બાદ એક વખત ફેરી આપ સપનું હણે મન સ્વાગત કરો હું અમારે આજને કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં જેમ કે બેન્ડ બનુ અમે આપને ગીત તો કે પહેલા વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હો કે ખરીફ ને બાદ રબીની ફસલની તૈયારી આપણને હેતે કરવી હે ને કઈ કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું હે તો આના વિશે માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ તકી જોડી રહી માંગીલાલજી તો સપ્તી કી પહેલા આપણે હામરી લણાની વાતે ને મોરે કરા આપણી વાતે સર નમસ્કાર
1: નમસ્કાર જી
0: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતી હું મેં વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં
1: જી ધન્યવાદ
0: સર જૈસા કી આજ આપ હમારે કાર્યક્રમ સે જુડ રહે હૈ ઓર આજ હમારે કાર્યક્રમ મેં આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ કે ખરીફ કે બાદ રવિ કી તૈયારી અભી સે હમ કૈસે શરૂ કરે
1: જી
0: ક્યોંકી હમ દેખતે હૈ કે જબ સીઝન આયે ઉસ સમય અગર હમ તૈયારી શરૂ કરતે હૈ તો બહોત સી બાર બહોત સી ચીજે હમ ભૂલ જાતે હૈ કે યે કરના થા ઓર યે નહીં કિયા ઓર અગર હમ પહેલે સે તૈયારી કરતે હૈ તો સમય રહેતે અગર કોઈ ગલતી ભી હો તો ઉસમે હમ સુધાર કર સકતે હૈ તો આપ સબસે પહેલે હમ યહી બતાઈએ કે ઇસકે લિયે હમે સબસે પહેલે ક્યા કરના હોગા
1: જી તો આપકા જો વિષય હૈ બહોત અચ્છા હૈ ઓર વર્તમાન મેં ઇસ વિષય પર હમે સોચને કી જરૂરત હૈ સભી કિસાન ભાઈઓ કો તો દેખે રબી કી જો અચ્છી ફસલ કી શરૂઆત હૈ વો બુઆઈ કે દિન સે નહીં હોતી હૈ ઇસકી તૈયારી હૈ ખરીફ કી ફસલ કે જો અંતિમ ચરણ હોતા હૈ तब से शुरू हो जाती है जैसे सितंबर में अंत तक और अक्टूबर में शुरुआत में तो इसमें क्या होता है कि खेत बीज मिट्टी नमी उसमें फसल के अवशेष सिंचाई की सुविधाएं फसल योजना इन सब पर जो है रबी की बुआई से पहले अत्यधिक व्यवस्थित करना पड़ता है और ध्यान दिया जाता है
0: जी जी
1: रबी की फसल में गेहूं चना मसूर मटर सरसों अलसी ये जो क्षेत्र में हमारे यहाँ होती है तो सामान्य रूप से हमारे जो जलवायु है उनके लिए अनुकूल होती है इसलिए स्थानीय जलवायु और मिट्टी की सिंचाई की सुविधा पिछली फसल और जो किसान के उद्देश्य हैं उनको ध्यान में रखकर चयन करना चाहिए
0: बिल्कुल
1: तो ये बहुत जरूरी है कि हम जब खरीफ के अंतिम चरण में है तो हमें देख लेना चाहिए कि हमारे खेत की क्या स्थिति है नमी कितनी है उसमें क्या जरूरत है कि जैसे खाद डालना है आपको या उसकी जैसे आपने खरीफ की कटाई कर दी तो उसके बाद में फिर उसकी जुताई करना होता है
0: बिल्कुल
1: तो सारी चीजें वो आपको पहले से देखने की जरूरत
0: बिल्कुल सर आपने सही कहा तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें खरीफ के बाद तुरंत ही इन सारी चीजों को देखने की जरूरत है ताकि आगे की जो फसल का उत्पादन हम चाह रहे हैं हमारे वो मन के अनुसार हमें मिल जाए तो इसके लिए हमें क्या करना होगा
1: तो देखिए हमें कुछ बातें हैं जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान देने की बहुत जरूरत है जैसे पहले खेत की जो स्थिति है उसको समझना बहुत जरूरी है
0: बिल्कुल
1: अब खेत की स्थिति में क्या है कि किसान है जो खरीफ की समाप्ति हो जाती है तो वो अपने खेत का निरीक्षण करे वो जाकर उसको देखे उसमें नमी कितना है पानी की निकासी का कैसा रहा ऐसा तो नहीं कि मिट्टी का कटाव हो गया हो ऐसा तो नहीं कि जैविक जो खेत में अवशेष है वो कितने हैं या नहीं है
0: बिल्कुल
1: तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है यदि खेत की मिट्टी बहुत कठोर हो गई है तो हो सकता है पानी की निकासी खराब है या रबी की बुआई से पहले जो सुधार की योजना आप बना सकते हैं तो इस तरह से हमें पहले उसकी स्थिति को अच्छे से समझना होगा और इसके लिए जो हमारे जो गांव में बड़े बुजुर्ग है वो और बेहतर तरीके से हमारे युवाओं को और हमारे ऐसे भाइयों को बता सकते हैं और उनसे हम जान सकते हैं कि किस तरह हमें करना चाहिए दूसरी हम बात करते हैं तो मिट्टी जो परीक्षण करना जरूरी होता है
0: बिल्कुल
1: मतलब जो परीक्षण का जो मतलब होता है वो तो क्या होता है कि हमें उसकी जो गुणवत्ता है उसकी जांच करना जरूरी होता है
0: जी जी
1: कि हमारी जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरकता है वो कितनी है वो उपयोगी है या नहीं है उसमें किन संसाधनों की आवश्यकता पड़ सकती है तो ये क्या है कि इसका जब मिट्टी की गुणवत्ता की जांच आप कर लेंगे तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि मेरी मिट्टी कैसी है कितनी उपयुक्त है या मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए तो एक तो है कि हमारे जो स्थानीय स्तर पर हम जांचते हैं कि जब मिट्टी का जो बोतल में भर के उसको उसकी परतें हम देखते हैं कि उसमें क्ले कितना है तो वो सारी उस तरह से हम देख सकते हैं जो हम स्थानीय उपाय करते हैं दूसरा अगर आपके पास में नजदीकी कोई कृषि विज्ञान केंद्र है या आपके पास में ऐसे टूल्स है जो आपके ग्राम पंचायत या आसपास में तो वहां भी इसका जांच की जा सकती है इसके साथ ही एक सोचने वाली बात यह है कि जब आपने मिट्टी की जुताई कर दी बुआई कर दी खेत की उसके पहले एक चीज ये भी है कि फसल का चुनाव है वो सोच समझकर करना चाहिए
0: बिल्कुल
1: तो इसमें क्या होता है कि जैसे रबी की फसल का चयन एक तो बाजार का भाव देखकर कर लेते हम लोग कि नहीं ये तो बहुत महंगी बिक रही है तो इसको करना जरूरी होता लेकिन ये देखना काफी नहीं है
0: बिल्कुल
1: उसके लिए ये देखना जरूरी है किस सिंचाई की सुविधाएं कितनी है, मिट्टी जो है किस फसल के लिए उपयुक्त है, पिछले मौसम में कौन सी फसल लगी थी, और परिवार का जो खाद्य आवश्यकता उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यदि परिवार को पोषण की प्राथमिकता है तो उसमें हम दलहन तिलहन और स्थानीय खाद्य जो फसलें हैं वो हमें उगाना चाहिए। इसके साथ में हमें ये भी देखना चाहिए कि कौन से खेत में कौन सी फसल करनी है, ऐसा नहीं कि हमने सब में एक जैसी कर दी।
0: बिल्कुल,
1: तो हमें उस संतुलन को देखना होगा कि हमारे पास में सुविधाएं कितनी है, पानी की है या हमारे पास में संसाधन कितने हैं। तो आपने मान लो पिछली बार किसी खेत में गेहूं लगाया, अब वापस एक बार देखने की जरूरत है कि उसमें गेहूं लगाना है या नहीं लगाना।
0: बिल्कुल,
1: तो वो हमें जरूरी है। दूसरी चीज एक यहाँ भी देखने की जरूरत है कि जब हम पोषण की बात करते हैं हमारी खेती से या हमारे परंपरागत खान पान की बात करते हैं जो स्थानीय है, तो उसमें क्या एक जो है वो जैव विविधता भी बीच में आती है हमारे।
0: बिल्कुल,
1: कि जो हमारे थाली की विविधता है उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए जो हमारी फसलें हैं वो जो उगती है वो हम खाते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि कौन कौन सी विविधताएं हैं वो हम कर सकते हैं। तीन चार पांच प्रकार की, जैसे आपने अनाज कर दिया, सब्जियां हैं या तिलहन है दलहन है।
0: बिल्कुल,
1: तो उससे क्या है आपको अलग अलग प्रकार की जो शरीर की पोषण आवश्यकताएं हैं वो पूरी होगी।
0: बिल्कुल,
1: इसी तरह अगर आप देखें तो हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि फसल का जो चुनाव कैसे करें, तो इसमें क्या फसल चक्र है उस पर भी हमें विचार करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: कि जैसे लगातार एक ही फसल उगाने के बजाय अलग अलग प्रकार की फसलें को प्राथमिकता दें, उनकी परिस्थितियों को समझें, तो विशेष रूप से जो दलहनी फसलें हैं फसल प्रणाली को शामिल करने में मिट्टी की जो प्रक्रिया है उसको कितना अच्छा है, समर्थन मिलता है या नहीं, उसको हमें देखने की जरूरत है।
0: जी जी,
1: तो हमें फसल चक्र अपनी स्थानीय परिस्थितियों को देखकर उसे अपनाने की जरूरत है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि खरीफ के बाद रबी की तैयारी अभी से हमें कैसे करनी है और ढेर सारी बातों से आप हमें अवगत करवा रहे हैं। यही हम देखते हैं कि इसमें बीज का चुनाव भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए किसान भाई बहनों को क्या ध्यान रखने की जरूरत है?
1: देखिए, बीज बहुत महत्वपूर्ण है, तो रबी की बुआई से पहले बीज की व्यवस्था जो है वो अंतिम समय तक नहीं टालें कि जब बुआई करें तभी, उसकी व्यवस्था पहले से करें। जैसे आपका घर का बीज है तो उसको साफ करना, स्वच्छता देखना, उसकी गुणवत्ता को देखना, उसमें से जो कमजोर बीज है उनको अलग करना, अच्छे बीजों को उपयोग करना, ये चीजें हमें देखने की जरूरत है। इसके साथ में बुआई से पहले उसका उपचार करना जो हम परंपरागत विधियों से करते हैं, जैसे गोमूत्र है, राख है, नीम की पत्तियां हैं, उन सबकी जो है उनसे उपचार करके उनको तैयार रखिए आप।
0: बिल्कुल,
1: ताकि बुआई के समय आपको एक साथ सारी चीजें ना करनी पड़े। उस पे अगर बीज में नमी है तो उसको थोड़ा सुखाए आप, उसकी नमी दूर करें, तो इस तरह से जो आपको उसको ध्यान रखने की जरूरत है।
0: बिल्कुल सर, और यही हम देखते हैं कि खेत की नमी और जैविक खाद और कई सारी चीजों की फसल में जरूरत रहती है, तो इनका ध्यान हमारे किसान भाई बहनों को कैसे रखना चाहिए?
1: देखिए, खरीफ की फसल होती है उसको कटाई हो जाती है, उसके बाद में क्या होता है कि हमारे कई किसान भाई ऐसे सोचते हैं कि बहुत ज्यादा बार जुताई करेंगे तो बहुत अच्छी फसल होगी।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन यहाँ ये ध्यान देने की जरूरत है कि अगर हम नमी की बात करते हैं तो हमें अनावश्यक जुताई है उससे बचना चाहिए। जितनी आवश्यकता उतनी करें, आपने दो जुताई की उसके बाद बुआई कर दो।
0: बिल्कुल,
1: ऐसा नहीं कि आप उसकी जुताई करते हैं तो उसकी नमी है वो गहरी चली जाएगी और आपकी जो रबी की फसल है उसको पानी की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी और उस फसल को नुकसान भी हो सकता है।
0: जी हाँ,
1: तो इस तरह हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ में जो नमी की हम बात करते हैं तो हमेशा क्या है कि उसको ढकने की बात करते हैं, मल्चिंग की बात करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे बुआई कर दी तो उस तरह से अगर आपने फसल लगाने वाले हो तो उससे पहले जैसे एक बार जुताई की तो उसको जो अवशेष चारे के उसको वहीं छोड़ दें, ताकि उनको हटाने से क्या होगा डायरेक्ट सूर्य किरणें उस पे पड़ेगी ना तो वो सूख सकती है। इसके साथ में जैविक खाद है, कंपोस्ट है, वो पहले से आप तैयार करें क्योंकि आपको आगे जाकर खेत में डालना है।
0: बिल्कुल,
1: तो वो भी आप तैयार करके रखिए। जैसे आपने कंपोस्ट तैयार कर दिया तो 60 दिन पहले आपने उसको शुरू कर दिया तो आपकी जब बुआई होगी तब आपको तैयार मिलेगा, तो उससे पहले आप छान कर रखिए उसको, आप बीज में मिलाकर उसको बोएं, उसके बाद में खेत में डालना हो तो डालें। इस तरह से हमें जो है उन चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है।
0: बिल्कुल सर, और यही फसल अवशेष को किस तरीके से हमारे किसान भाई बहन संसाधन बना सकते हैं?
1: देखिए, खरीफ की फसल के बाद जो डंठल या पत्तियां जो अवशेष बचते हैं वो जो जैविक खाद का काम करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इन्हें काटकर खेत में फैलाया जा सकता है, जिससे मल्च बोलते मल्चिंग करते हैं वो किया जा सकता है, इसको कंपोस्ट में शामिल किया जा सकता है ताकि इससे बहुत अच्छी खाद बनती है।
0: बिल्कुल,
1: इसमें एक परंपरागत खाद है वो बहुत अच्छी जो है आपकी उन अवशेषों से तैयार होगी। इसी तरह एक बात ये भी यहाँ पे आती है कि खेत की जो मेड़ है और जल निकासी है उसको पहले से आप सुधार ले,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि वो भी बहुत जरूरी होती है कि मेड़ की मरम्मत कर ले, जैसे अगर टूटी हुई हो बारिश के दिनों में या टूटे हुए इससे को ठीक करने की आवश्यकता है, निकासी की व्यवस्था रखें, पानी और जल सिंचाई का वो प्रबंधन आप पहले से, पानी कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, या हमारे पास उपलब्ध है तो कितना कब कब देना है, वो सारी चीजें हैं वो हमें देखने की जरूरत है।
0: बिल्कुल सर, यही सर बुवाई का समय कैसे ध्यान में रखना है किसान भाई बहनों को?
1: देखिए हम जो है कई वर्षों से हम खेती से जुड़े हुए हैं और हमारे जो बुजुर्ग है वो भी खेती करते आए हैं, तो रबी की जो फसल की बात करते हैं तो खरीफ की कटाई होने के बाद में हमने जुताई की और हम क्या है कि लगभग आप देखेंगे तो अक्टूबर में उसकी बुआई कर देते हैं। तो हमें इसके लिए पहली चीज में ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको इसका ज्ञान नहीं है कि कब बुआई करनी है तो आप सबसे पहले हमारे जो संसाधन है वो हमारे गांव के बुजुर्ग हैं, आप उनसे बात करें, उसके बाद उनसे जान ले कि कब बुआई करना उचित रहता है। तो इस तरह से अक्टूबर और नवंबर मिड तक आप आराम से जो है इन सब की बुआई कर सकते हैं।
0: जी सर, तो जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि खरीफ के बाद रबी की हमें तैयारी कैसे करनी है, यही हमारे किसान भाई बहन अगर रबी की योजना लिखित रूप में बनाए तो इससे क्या लाभ होगा और कैसे बना सकते हैं वो?
1: देखिए अगर योजना बनाते हैं तो जब बात योजना की आती है तो आपको परिणाम जो है वो बेहतर मिलते हैं अगर आप योजनाबंद काम करते हैं तो।
0: बिल्कुल,
1: तो जैसे आपने लिखा कि क्या करना है तो पहले आपने तय कर लिया खेत में कौन सी फसल बोनी है, बीज की मात्रा कितनी डालनी है, कौन सा बीज डालना है, मिट्टी है उसकी आपने जांच कर ली, मिट्टी का पोषण आपने देख लिया,
0: बिल्कुल,
1: जैविक खाद की मात्रा कितनी है, उसका उपलब्धता, उसका उपयोग देख लिया आपने, सिंचाई का संभावित जो स्रोत कौन सा होगा वो आपने देख लिया, कहाँ से पानी आएगा हमारी खेती के लिए, खेत में जो अवशेष है क्या आप उसको खेत में छोड़ रहे हो या कंपोस्ट में डाल रहे हो, या पशु जो खा रहे हैं उसको हम खेत में डाल रहे हैं कंपोस्ट में डाल रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: बुआई एवं निराई गुड़ जिसकी बात करते हैं वो जरूरत के अनुसार करें आप, उसमें देख ले कितने दिन लगेंगे, श्रम की व्यवस्था क्या होगी, बैल होंगे या कैसे आप उनकी व्यवस्था करेंगे, बाजार से अगर कुछ लेना है तो क्यों लेना है, कैसे लेना, कितना लेना है।
0: बिल्कुल,
1: और तय करना है कि हमें ये सोचना चाहिए कि अधिक से अधिक हम घर की ही चीजें उपयोग करें, बाजार पे हम ना जाए।
0: बिल्कुल सर,
1: तो इन चीजों का ध्यान रखें।
0: जी बिल्कुल, तो सर जैसा कि आपने ढेर सारी बातों से हमारे श्रोता साथियों को अवगत करवाया है तो अंत में कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे किसान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं सभी किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहूंगा कि खरीफ के बाद जो रबी की तैयारी है वो हमारे आने वाली फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल,
1: तो आप सोच समझ कर आप उसकी तैयारी करें, समय से बुआई करें ताकि उत्पादन बेहतर हो और फसल है वो आपको सुरक्षित रहे और अच्छा उत्पादन आपको मिल सके।
0: बिल्कुल, तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: जी धन्यवाद।
0: जिम की भाई बोनो अवड़े अपने वैस में मांगीलाल जी जुड़े तक कहा था ने एणे आपणाने घणी असल तरीका तकी घणा कानी वाते बताड़ी है। जिम की एणे आपणाने बताड्यो है कि आपणे खरीफ ने बाद सप्ती की पहले रबी नी फसल नी तैयारी करवी है तो आपणे खेत नी स्थिति समझवी होगा, मिट्टी परीक्षण नी प्राथमिकता आलवी होगा, फसल नु चुनाव होसे हमजी ने करवो पड़ेगा, फसल चक्र ने आपणे समझी शको, बीज नी तैयारी टाइम माते करवी होगा, बीज उपचार करवो होगा ने खाद भी बनावी ने आपणे पहले किस राखवो होगा। आशा करो हो कि हंगरी वाते आपने कमी होंगा क्योंकि अभी टाइम थे गयो है आपने अनस कार्यक्रम तक ही सूटा पड़वानू, तो सूटा तो पड़ा पर साथे पहले हम रीला एक और गीत ने मोरे पड़ा सूटा।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है, ये हुकी जाएंगा, हितर मंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है, ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो

0: ને આપણી અબ્બાવાળી પીઢીનું જીવન સફળ થઈ શકા.
1: હવે હવે જાગૃતિબોન, આપણે ભાઈ બોનોને કહો કે પાણી બચાવો, પાણી બચાવો ને આપણી ધરતીને હરીભરી રાખો. જલ જીવન હૈ આ આપણી પહેચાન હૈ, હર બૂંદનું મોલ આપણે જાણો.
0: વાગ રેડિયો વાગધારા સંસ્થા દ્વારા જનહિતને પ્રસારિત.
2: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन. खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है. जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं. लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं. हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है. ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें. वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित.
3: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए?
2: एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
3: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं.
2: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें. महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी. महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए. वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित.

नमस्कार श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जी हां श्रोता साथियों, कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर हम हाजिर हो चुके हैं अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। तो साथियों, बच्चों की सेहत की बात हो और खाने की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हम अक्सर बच्चों के लिए ऐसी चीजें ढूंढते हैं जो स्वादिष्ट भी हो और शरीर को ताकत भी दे, लेकिन हमारे आसपास मौजूद कई पारंपरिक अनाज ऐसे हैं जिन्हें हम रोजमर्रा के भोजन में शामिल करके बच्चों के आहार को और पौष्टिक बना सकते हैं। इन्हीं में से एक है श्री अन्न, जिसे हम आम बोलचाल में मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज कहते हैं, जिसमें बाजरा, रागी, ज्वार, कुटकी, कोदो, सावा जैसे अनाज हमारे पारंपरिक भोजन का हिस्सा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि बच्चों को मोटा अनाज खिलाया जा सकता है? इसे बच्चों के भोजन में कैसे शामिल करें? क्या केवल मोटे अनाज खिलाने से ही बच्चा स्वस्थ हो जाएगा? इन्हीं सवालों को लेकर आज हम कार्यक्रम के माध्यम से एक बहुत ही प्यारी सी कहानी प्रस्तुत करने वाले हैं। वो कहानी हम अवश्य सुनेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि मोटे अनाज बच्चों की सेहत के लिए किस तरीके से खजाना हो सकते हैं, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं हम कार्यक्रम के माध्यम से एक छोटा सा नाटक जिसमें रीना और सुनीता दोनों बातचीत कर रही हैं। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: अरे सुनीता, मैं बड़े परेशान हूँ। मेरा बच्चा रोज खाने में नखरे करता है। रोटी दो तो कहता है नहीं खानी, सब्जी दो तो अलग कर देता है। समझ नहीं आता कि उसे ऐसा क्या खिलाऊं जिससे उसे स्वाद भी आए और शरीर को पोषण भी मिले।
2: रीना, बच्चों के खाने की यही तो सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन क्या तुमने कभी उसके खाने में अपने पारंपरिक अनाज शामिल करने के बारे में सोचा है?
1: पारंपरिक अनाज यानी कि तुम मिलेट्स की बात कर रही हो?
2: हाँ बिल्कुल, जैसे कि बाजरा, रागी, ज्वार, कुटकी, कोदो, सांवा, ये सभी। हमारे यहाँ तो इनका इस्तेमाल पहले से होता आया है।
1: लेकिन ये तो मोटे अनाज कहलाते हैं ना? मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए थोड़े भारी हो सकते हैं।
2: अरे ऐसा जरूरी नहीं है रीना, सही तरीके से तैयार करके और बच्चे की उम्र के अनुसार अगर इन्हें उचित मात्रा में दिया जाए तो ये बच्चों के संतुलित आहार का हिस्सा भी बन सकते हैं।
1: अच्छा सुनीता, लेकिन इसमें ऐसा क्या खास होता है?
2: इनमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि रागी जो होता है वो कैल्शियम का अच्छा स्रोत होता है, बाजरा और दूसरे जो मिलेट्स हैं उनमें फाइबर और खनिज तत्व पाए जाते हैं। साथ ही इनमें मौजूद पोषण बच्चों के संतुलित आहार में योगदान दे सकता है।
1: तो क्या सुनीता रोज बच्चों को सिर्फ बाजरा और रागी ही खिलाते रहें?
2: अरे नहीं नहीं, ये बात समझना सबसे जरूरी है कि ये अनाज पौष्टिक है, लेकिन बच्चे का भोजन केवल एक ही अनाज पर आधारित नहीं होना चाहिए। बच्चे को अनाज के साथ दालें भी दे, दूध या अन्य उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थ भी दे, हरी सब्जियां भी दे, मौसमी फल, मेवे और बीज भी दे। साथ ही उम्र और परिवार की उपलब्धता के अनुसार ये सारी चीजें हम दे सकते हैं।
1: मतलब कि सुनीता, भोजन में विविधता जरूरी है।
2: हाँ बिल्कुल, जैसे अगर आज बाजरे की रोटी है तो उसके साथ दाल और सब्जी भी हो सकती है, कभी रागी की खीर बन सकती है, कभी रागी का चिल्ला तो कभी बाजरे की खिचड़ी, तो कभी कभी ज्वार या कुटकी को दूसरे खाद्य पदार्थों के साथ मिलाकर हम बच्चों के लिए बना सकते हैं।
1: वाह, यानी कि बच्चों को मोटे अनाज खिलाने के लिए रोज एक जैसा खाना बनाने की जरूरत नहीं है।
2: बिल्कुल नहीं, बच्चों के लिए भोजन स्वादिष्ट, रंग बिरंगा, मुलायम और उनकी पसंद के अनुसार बनाया जाए तो वे उसे आसानी से स्वीकार कर सकते हैं।
1: सुनीता, मेरे बेटे को खिचड़ी बहुत पसंद है, क्या उसमें मोटा अनाज मिलाया जा सकता है?
2: हाँ, बच्चे की उम्र और खाने की क्षमता के अनुसार उचित तरीके से अगर बनाकर दिया जाए तो ये बेहतर होगा। जैसे कि कुटकी या बाजरे की खिचड़ी में दाल और सब्जियां मिलाकर हम उसे पौष्टिक बना सकते हैं।
1: और रागी?
2: रागी? रागी से बच्चे की उम्र के अनुसार खीर, दलिया, चीला बनाया जा सकता है, लेकिन बनाते समय साफ सफाई का ध्यान रखना और अच्छी तरह पकाना भी जरूरी है।
1: एक बात पूछो सुनीता।
2: हाँ पूछो।
1: बाजार में तो बच्चों के लिए तरह तरह के पैकेट वाले खाद्य पदार्थ मिलते हैं, क्या वे मोटे अनाज से ज्यादा अच्छे होते हैं?
2: सिर्फ पैकेट देखकर किसी खाद्य पदार्थ को ज्यादा पौष्टिक नहीं मान लेना चाहिए हमें रीना। बच्चे के लिए भोजन चुनते समय उसकी पोषण, गुणवत्ता, सामग्री, मात्रा और उम्र के अनुसार उपयुक्तता भी देखनी चाहिए। घर में उपलब्ध स्थानीय और पारंपरिक खाद्य पदार्थ भी ऐसे में बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं।
1: मतलब हमारी रसोई में चीजों को भी हमें कम नहीं समझना चाहिए।
2: बिल्कुल, देखो रीना, हमारे गांव में पहले से कई तरह के अनाज इस्तेमाल होते आ रहे हैं, जरूरत है सिर्फ हम उन्हें नई तरह से बच्चों की थाली में शामिल करें।
1: लेकिन सुनीता, कुछ बच्चे तो बाजरा और ज्वार का स्वाद पसंद ही नहीं करते।
2: हाँ तो जबरदस्ती मत खिलाओ, धीरे धीरे आदत डालो। शुरुआत छोटी मात्रा से कर सकते हैं, उसे हम दाल, सब्जी या दूसरे पसंदीदा भोजन के साथ मिलाकर दे सकते हैं और हम इस तरीके से खाने को और आकर्षक तरीके से परोस सकते हैं।
1: अच्छा सुनीता, यानी कि बच्चों के साथ धैर्य रखना भी बहुत जरूरी है।
2: हाँ, और एक और जरूरी बात, बच्चों को खाना खिलाते समय उसकी उम्र और विकास के अनुसार भोजन की बनावट और मात्रा का भी ध्यान रखना चाहिए। छोटे बच्चों को बहुत कठोर या बड़े टुकड़े नहीं देने चाहिए।
1: अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था।
2: हाँ, और भोजन बनाते समय हाथ, बर्तन, पानी और अनाज के साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही पौष्टिक भोजन तभी फायदा देगा जब वह सुरक्षित और स्वच्छ तरीके से तैयार किया गया हो।
1: हाँ सुनीता, अब समझ आया। मोटे अनाज सिर्फ अनाज नहीं है बल्कि हमारे पारंपरिक भोजन का हिस्सा है, जिसे सही तरीके से बच्चों की थाली में जगह दी जा सकती है।
2: बिल्कुल, और एक बात याद रखो, बच्चे की सेहत किसी एक खाद्य पदार्थ से नहीं बनती। संतुलित भोजन, विविधता, स्वच्छता, पर्याप्त पानी, अच्छी नींद, खेलना और उम्र के अनुसार देखभाल, इन सभी का महत्व भी अलग है।
1: तो सुनीता, आज से ही मैं अपने बेटे के खाने में बदलाव जरूर करूंगी। कभी ज्वार, कभी रागी, कभी बाजरा या हमारे यहाँ मिलने वाले मोटे अनाज को अलग अलग तरीके से बना दूंगी।
2: बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात, उसे प्यार से खिलाना, खाने को लेकर डर या दबाव नहीं बनाना और उसकी पसंद को समझते हुए धीरे धीरे नई चीजों की आदत डालना।
1: हाँ सुनीता, आज तुमने मेरी बड़ी चिंता दूर कर दी। अब मुझे समझ आया कि बच्चों की थाली में हमारे पारंपरिक अनाज भी स्वाद और पोषण लेकर आ सकते हैं।
2: हाँ रीना, हमारी रसोई में छिपे इन अनाजों को पहचानने की जरूरत है। बस मोटे अनाज को अपनाएं, लेकिन संतुलित और विविध भोजन के साथ।
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, आपने सुना, बच्चों के लिए मोटे अनाज को भोजन का हिस्सा बनाया जा सकता है, लेकिन किसी एक अनाज को पूरे पोषण का विकल्प नहीं मानना चाहिए। बाजरा, रागी, ज्वार, कुटकी, कोदो और सावा जैसे जो मोटे अनाज हैं, वो बच्चों की उम्र और खाने की क्षमता के अनुसार अलग अलग व्यंजनों में शामिल किया जा सकता है। बच्चों की थाली में केवल खाना भरना ही पर्याप्त नहीं है, सही विविधता और सही आदतें बनाना भी जरूरी है। हमारी पारंपरिक रसोई में मौजूद अनाजों को श्रोता साथियों आधुनिक तरीके से बच्चों की पसंद के अनुसार तैयार करें और उनकी थाली को रंग, स्वाद और पोषण से भरें, क्योंकि स्वस्थ बचपन किसी महंगे खाद्य पदार्थ से नहीं बल्कि रोज की छोटी छोटी अच्छे भोजन की आदतों से तैयार होता है। जी हाँ श्रोता साथियों, बच्चों की सेहत की शुरुआत हमारी रसोई से ही होती है। हमारे आसपास आसानी से मिलने वाले मोटे अनाज पारंपरिक अनाजों में शामिल होते हैं, जिन्हें समय के साथ हमारी थाली में फिर से जगह दी जा सकती है। बच्चों को इनके स्वाद और बनावट से परिचित कराने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें उनकी पसंद के व्यंजनों में धीरे धीरे शामिल किया जाए। जब घर में उपलब्ध अनाज से हम अलग अलग तरह की व्यंजन बनाते हैं तो बच्चों को खाने में विविधता मिलती है और परिवार भी अपनी पारंपरिक खाद्य विरासत से जुड़ा रहता है। साथ ही बच्चों की उम्र, उनकी खाने की क्षमता और व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखना भी जरूरी है। इसलिए अगली बार जब भी बच्चों की थाली सजाएं तो केवल यह न सोचें कि उन्हें क्या पसंद है, बल्कि यह भी सोचें कि उनके भोजन में कितनी विविधता है और उसमें स्थानीय पौष्टिक चीजों को कितनी जगह मिली है। हमारी छोटी सी समझदारी बच्चे की भोजन संबंधित अच्छी आदतों की नींव रख सकती है। इसलिए मोटे अनाज को पहचानिए, अपनी रसोई से जोड़िए और बच्चों को विविध भोजन की आदत दीजिए। यही हमारी पारंपरिक समझ को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सुंदर तरीका हो सकता है। तो जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना, अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़े ने आपड़े मई देखाय तो आपड़े आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते एनीमिया उपचार ने गोरीये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: भाइयों बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार कर रही है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, सोरा ने मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे चलावो, हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार कर रही है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा, तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
1: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाइयों बहनों, जयवरे ग्राम सभा में बोने बोले हैं तो फैसला मजबूत थे हैं। वन अधिकार सिर्फ कानून नदी माँ जंगल थकी जरूर बोनों रिश्तों है। जे जंगल में हमसे हैं, ई इन्होंने रक्षा करे हैं। तो आओ बोना ने भागीदारी बढ़ावा, ग्राम सभा मजबूत बनावा, ने जंगल अनु भविष्य सुरक्षित करा। बोना ने आवाज विकास ने असली पहचान है।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी युवाओं का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत का विषय रहने वाला है, भागती जिंदगी थकता दिल, क्या युवाओं को अपनी रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक चाहिए।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि आज की जिंदगी की रफ्तार शायद पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल की स्क्रीन, फिर पढ़ाई या काम, उसके बाद करियर की चिंता, सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना, भविष्य को लेकर सवाल और इन सब के बीच खुद के लिए समय निकालना। कशिश, जैसे हमें लगता है कि लगातार किसी ऐसी दौड़ में शामिल है हम जिसका रास्ता तो दिखाई देता है लेकिन मंजिल का हमें पता नहीं होता।
0: बिल्कुल,
1: हम अक्सर कहते हैं श्रोताओं कि समय बहुत तेजी से भाग रहा है, लेकिन कभी हमने सोचा है कि शायद समय नहीं, हम खुद बहुत तेजी से भाग रहे हैं। और इसी भाग दौड़ के बीच आज का सवाल है, भागती जिंदगी थकता दिल, क्या युवाओं को अपनी रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: ब्रेक का मतलब रुक जाना नहीं है श्रोताओं, ब्रेक का मतलब है कुछ पल ठहरना, खुद को सुनना और फिर सही दिशा में आगे बढ़ना।
0: जी हाँ जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं से हमारी इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें होंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में हम उन्हें पहले गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं, तो क्यों ना आज भी शुरुआत पहले यहाँ पर एक प्यार से गीत के साथ करें।
1: जी हाँ, तो आइए साथ ही सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं भागती जिंदगी में थकता दिल। अगर बात करें जागृति जी की, भागती जिंदगी का हिस्सा हमारे युवा कैसे बन रहे हैं, तो जैसा कि आज के युवा साथी बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनके सपने बड़े हैं, वह पढ़ना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं और अपना व्यवसाय भी शुरू करना चाहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही साथ उनका सपना ये भी है कि वे परिवार की उम्मीदों पर खड़ा उतरे और समाज में अपनी पहचान भी वे बनाना चाहते हैं। लेकिन कई बार इन सपनों को पूरा करने की कोशिश में युवा अपने वर्तमान को जीना भूल जाते हैं।
1: जी हाँ।
0: सुबह से रात तक एक के बाद एक काम, एक लक्ष्य पूरा हुआ तो दूसरा सामने खड़ा है, एक परीक्षा खत्म हुई तो अगली परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है, एक नौकरी मिली तो प्रमोशन की चिंता साथियों, एक उपलब्धि मिली तो सोशल मीडिया पर किसी और की बड़ी उपलब्धि दिखाई दे गई और फिर मन कहता है मैं तो अभी भी पीछे हूँ।
1: जी हाँ।
0: दोस्तों, यही सोच धीरे धीरे जीवन को एक दौड़ में बदल देती है। हम अपने दिन को कामों से भरते जाते हैं लेकिन ये देखना भूल जाते हैं कि हमारे भीतर की ऊर्जा कितनी बची है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि तेज चलना गलत नहीं है, महत्वाकांक्षी होना भी गलत नहीं है, अपने सपनों के लिए मेहनत करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल ये है श्रोताओं कि क्या हर समय तेज भागना जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: कल्पना कीजिए श्रोताओं कि कोई व्यक्ति लगातार दौड़ रहा है, उसके सामने रास्ता है, मंजिल है, लेकिन वो कभी रुक कर ये नहीं देखता कि उसके जूते ठीक है या नहीं, रास्ता सही है या नहीं, या और उसके शरीर को आराम की जरूरत है या नहीं। क्या वो लंबे समय तक दौड़ पाएगा? शायद नहीं।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, ठीक यही बात जीवन पर भी लागू होती है। कभी कभी जीवन में थोड़ी धीमी गति हमें पीछे नहीं करती बल्कि हमें टूटने से बचाती है।
0: जी हाँ जागृति जी। साथी, अगर बात करें कि थकता दिल केवल शरीर की थकान नहीं है, तो जब भी हम थकान की बात करते हैं तो अक्सर शरीर की थकान को हम समझ लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन युवाओं की थकान हमेशा नहीं दिखाई देती। कभी कभी व्यक्ति बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता है, हंसता है, दोस्तों से बातें करता है, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालता है और काम करता है, लेकिन अंदर से वह लगातार दबाव महसूस कर रहा होता है।
1: बिल्कुल।
0: कभी मन कहता है मुझे थोड़ा आराम चाहिए, लेकिन जिम्मेदारियां कहती है अभी नहीं। कभी मन कहता है कि आज खुद के लिए कुछ समय निकाल लिया जाए, लेकिन मोबाइल पर कोई नया अपडेट, कोई नया लक्ष्य या कोई नई चिंता सामने आ जाती है।
1: जी हाँ।
0: धीरे धीरे श्रोता साथियों, व्यक्ति अपने ही जीवन में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे खुद से बात करने का समय ही नहीं मिलता।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि आज युवाओं की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल दुनिया से जुड़ गया है। सोशल मीडिया पर हमें हर किसी की जिंदगी का चमकदार हिस्सा ही दिखाई दे रहा है।
0: बिल्कुल।
1: कोई विदेश घूम रहा है, कोई नई नौकरी शुरू कर रहा है, कोई अपनी सफलता बता रहा है, कोई नया घर खरीद रहा है, कोई परीक्षा में बहुत अच्छे अंक ला रहा है। और श्रोताओं, हम अपनी वास्तविक जिंदगी की तुलना दूसरों की चुनी हुई तस्वीरों से करने लगते हैं।
0: बिल्कुल।
1: फिर मन में सवाल आ जाता है कशिश की, उसकी जिंदगी इतनी अच्छी है, मेरी क्यों नहीं। लेकिन श्रोताओं, हमें ये याद रखना होगा कि सोशल मीडिया अक्सर किसी व्यक्ति की पूरी जिंदगी हमें नहीं दिखाता है, वो केवल उसका चुना हुआ हिस्सा ही हमें दिखाता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए किसी और की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को कमतर समझना उचित नहीं है। हर व्यक्ति की गति अलग है, हर व्यक्ति का रास्ता अलग है और हर व्यक्ति की मंजिल भी अलग है।
0: जी हाँ जागृति जी, जैसा कि बात कर रहे हैं कि भागती जिंदगी, थकता दिल, किस प्रकार से युवाओं के जीवन में थोड़ा सा ब्रेक उन्हें चाहिए, तो इस विषय पर बातचीत हम आगे भी करते रहेंगे।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं यहाँ पर एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी भागती जिंदगी थकता दिल, युवाओं को अपनी रफ्तार पर किस तरह से थोड़ा सा ब्रेक चाहिए को लेकर। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जान पा रहे थे भागती जिंदगी का हिस्सा किस तरह से युवा बन रहे हैं।
1: जी हाँ,
0: क्या तेज चलना ही सफलता है। साथ ही हम जान रहे थे कि थकता दिल केवल शरीर की थकान नहीं है, और सोशल मीडिया और लगातार तुलना को लेकर भी हमारी बातें रही थी। यही जानते हैं साथियों, थोड़ा रुकना समय की बर्बादी नहीं है।
1: जी हाँ,
0: यानी कि कशिश, हमारे समाज में आराम को कई बार आलस समझ लिया जाता है। अगर कोई युवा कुछ समय शांत बैठना चाहता है तो लोग कह देते हैं इतने खाली क्यों बैठे हो। अगर कोई अपने लिए समय निकालता है तो लगता है कि वो समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन श्रोताओ, आराम और आलस से एक ही चीज नहीं है। आलस से हमें काम से दूर करता है, जबकि सही आराम हमें दोबारा काम करने की ऊर्जा भी दे रहा है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि मोबाइल को लगातार चलाने के बाद चार्ज करना पड़ता है, वैसे ही इंसान को भी अपनी ऊर्जा को संभालने के लिए आराम, नींद, मनोरंजन और अपने लोगों के साथ समय की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल। अब सवाल ये है जागृति जी कि अगर जिंदगी में ब्रेक चाहिए तो ये ब्रेक कैसा हो।
0: बिल्कुल,
1: क्या इसका मतलब पढ़ाई छोड़ देना होता है, क्या इसका मतलब काम छोड़ देना है साथियों, या इसका मतलब अपने सपनों से दूर हो जाना है। आपको बताना चाहेंगे कि इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। जीवन में ब्रेक का अर्थ होता है रफ्तार को थोड़ी देर नियंत्रित करना।
0: बिल्कुल,
1: दिशा को समझना और फिर आगे बढ़ना। कभी कभी जागृति जी ब्रेक का मतलब सिर्फ 10 मिनट शांत बैठना भी हो सकता है। कभी परिवार के साथ खाना खाना भी हो सकता है। कभी किसी दोस्त से खुलकर बात करना, मोबाइल को कुछ देर दूर रख देना, प्रकृति के बीच बैठना, अपनी पसंद का संगीत सुनना, कभी किताब पढ़ना और कभी बस खुद से पूछना कि मैं ठीक हूँ। ये सभी जो चीजें हैं जागृति जी, वो ब्रेक का ही हिस्सा है। हम जैसा कि जानते हैं कि युवावस्था जीवन का एक ऐसा समय है जब व्यक्ति अपने भविष्य की नींव तैयार कर रहा होता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन भविष्य बनाने की कोशिश में वर्तमान को वह कब खो देता है उसे पता ही नहीं चलता। अगर हम लगातार तनाव में रहेंगे दोस्तों, नींद पूरी नहीं होगी, भोजन और दिनचर्या की अनदेखी करेंगे और हर समय खुद से ये उम्मीद रखेंगे कि हमें दूसरों से बेहतर करना ही है, तो जीवन का संतुलन बिगड़ सकता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए हमारे युवाओं को अपने जीवन में काम, आराम, लक्ष्य और आनंद, जिम्मेदारी और खुद के लिए समय, इन सभी के बीच संतुलन बनाना सीखना होगा।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि कई युवा इसीलिए भी थक जाते हैं क्योंकि वे हर काम के लिए हाँ कह देते हैं। दोस्तों ने कहा है हाँ, परिवार ने कहा है हाँ, काम मिला हाँ, नई जिम्मेदारी मिली हाँ। लेकिन श्रोता साथियों, हर चीज के लिए हाँ कहना जरूरी नहीं है। कभी कभी अपनी क्षमता को समझ कर कहना अभी मैं ये नहीं कर पाऊंगा भी आत्म जागरूकता का ही हिस्सा है।
1: जी जी,
0: हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना मजबूती नहीं है श्रोता, अपनी सीमाओं को समझना भी समझदारी है।
1: बिल्कुल, कहना चाहेंगे दोस्तों आपसे कि प्रकृति में कोई पेड़ दूसरे पेड़ से ये तुलना नहीं करता है कि तुम मुझसे जल्दी बड़े हो गए हो।
0: बिल्कुल,
1: हर पेड़ का अपना समय होता है। इसी तरह युवा की भी यात्रा अलग है जागृति जी। किसी को सफलता जल्दी मिल सकती है तो किसी को थोड़ा समय लग सकता है।
0: जी हाँ,
1: किसी का रास्ता सीधा हो सकता है तो किसी को कई मोड़ भी मिल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक की जिंदगी बेहतर है और दूसरे की कमतर।
0: जी हाँ,
1: आपको श्रोता साथियों किसी और की गति से नहीं बल्कि अपने दिशा से मतलब होना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: हम अक्सर बड़े ब्रेक की तलाश करते हैं, सोचते हैं कि छुट्टी मिलेगी तब आराम करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे तब खुश होंगे, बहुत पैसे होंगे तब जिंदगी को एंजॉय करेंगे। लेकिन जिंदगी केवल बड़े अवसरों का नाम नहीं होती। सुबह की चाय, परिवार के साथ बातचीत, दोस्तों की हंसी, पसंदीदा गाना, किसी पेड़ के नीचे कुछ मिनट बैठना और शाम की सैर, ये छोटी छोटी चीजें भी जीवन में सुकून भर सकती है। इसलिए जिंदगी को केवल भविष्य के किसी बड़े दिन के लिए मत बचाइए साथियों, आज को भी थोड़ा जीना सीखिए।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, इसी कार्यक्रम के बीच हम एक छोटा सा मानसिक ब्रेक लेते हैं। कुछ सेकंड के लिए अपने आसपास की आवाजों पर आप ध्यान दीजिएगा, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए कि मैं पिछले कुछ दिनों से कैसा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ।
1: बिल्कुल,
0: क्या मैं लगातार किसी दबाव में हूँ, क्या मैं अपनी नींद और आराम को नजरअंदाज कर रही हूँ, क्या मैं दूसरों से अपनी तुलना बहुत ज्यादा कर रही हूँ, क्या मैं अपने परिवार या दोस्तों से बात करने के लिए समय निकाल रही हूँ, और सबसे जरूरी, क्या मैं अपनी जिंदगी जी भी रही हूँ या सिर्फ उसे पूरा करने में लगा हुआ हूँ या लगी हुई हूँ। साथियों, अगर इन सवालों का जवाब आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है तो शायद आपको जिंदगी रोकने की नहीं अपनी रफ्तार को थोड़ा संतुलित करने की जरूरत है।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए, ब्रेक लेने का मतलब हार मानना नहीं है। कभी कभी कुछ देर रुक कर पानी पीना इसीलिए जरूरी हो जाता है ताकि हम लंबी यात्रा पूरी कर सके। इसी तरह जीवन में भी ठहराव हमें नई ऊर्जा दे सकता है।
1: बिल्कुल,
0: अगर आज हम थके हुए हैं तो खुद को ये कहने की अनुमति दीजिए कि मुझे हर दिन परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। एक दिन काम हुआ तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। एक लक्ष्य थोड़ी देर से पूरा हुआ तो हमारी पूरी जिंदगी असफल नहीं हो जाती है। श्रोताओं, कभी कभी धीमा होना भी आगे बढ़ने का ही हिस्सा है।
1: बिल्कुल जागृति जी। दोस्तों, जिंदगी कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जिसे हर स्टेशन पर बिना रुके आगे बढ़ना ही है।
0: बिल्कुल,
1: कभी किसी स्टेशन पर उतरना भी जरूरी है। थोड़ा पानी पीना, थोड़ा आसपास देखना, अपनों से मिलना, खुद से मिलना, और फिर जब मन तैयार हो अपनी यात्रा दोबारा शुरू करनी है।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि जागृति जी, जिंदगी की खूबसूरती सिर्फ मंजिल तक पहुँचने में नहीं है, उस रास्ते में भी है जिसे हम तय कर रहे होते हैं।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि आज की तेज रफ्तार जिंदगी ने युवाओं को अवसर तो बहुत सारे दे दिए, लेकिन साथ ही लगातार आगे बढ़ते रहने का दबाव भी बढ़ा दिया है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे समय में सबसे जरूरी है संतुलन। हमें अपने सपनों को छोड़ना नहीं है श्रोताओं, अपनी मेहनत कम नहीं करनी है, बल्कि हमें ये सीखना है कि मेहनत के बीच खुद को हम कैसे संभालते हैं। क्योंकि जिंदगी में हमेशा तेज भागना ही सफलता नहीं है, कभी कभी सही समय पर रुकना, अपनी स्थिति को समझना और सही दिशा में आगे बढ़ना भी उतना ही जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: रफ्तार हमारी होनी चाहिए, दबाव की नहीं। और याद रखिए, थोड़ा ठहरना मंजिल से दूर जाना नहीं, बल्कि खुद को मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार करना है।
1: जी हाँ, तो दोस्तों, अगली बार जब आपको लगे कि जिंदगी बहुत तेज भाग रही है और आप थक रहे हैं, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिएगा कि क्या मुझे हार मानने की जरूरत है या बस थोड़ी देर सांस लेने की। शायद जवाब होगा जागृति जी, थोड़ी देर सांस लेने की।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि दोस्तों, आपको रुकना नहीं है, बस कभी कभी अपनी रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक लगाना है।
0: तो जैसा कि श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, जाना कि हम हमारे जीवन से किस तरह से थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं। तो बातें बहुत सारी हो चुकी है और समय का मान हमें रखना होगा। समय का मान रखते हुए आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं। पर जाने से पहले, जैसा कि कार्यक्रम का दस्तूर है कि अंत में भी आपको मनोरंजन करवाते हैं, तो अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ जागृति जी,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से जो बातें रही भागती जिंदगी थकते दिल को लेकर, ये बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 94140826।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों

0: से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को। नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट, और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पाराशर। स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है स्वस्थ गांव स्वस्थ परिवार, स्वास्थ्य हमारी पूंजी को लेकर। हम देखते हैं अंजलि कि स्वास्थ्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। धन दौलत, जमीन जायदाद, सुख सुविधाएं और आधुनिक साधन जीवन को आसान जरूर बना सकते हैं, लेकिन श्रोताओं अगर शरीर और मन स्वस्थ नहीं है तो इन सब का पूरा आनंद नहीं लिया जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि स्वास्थ्य है तो जीवन में खुशहाली है।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी बातें इस विषय पर हमारी ढेर सारी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम के शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए क्यों न कार्यक्रम का पहला गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है, स्वस्थ गांव स्वस्थ परिवार, स्वास्थ्य हमारी पूंजी। इस कार्यक्रम के माध्यम से कहा भी गया है कि स्वास्थ्य है तो जीवन में खुशहाली है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: बच्चे मन लगाकर पढ़ सकते हैं, किसान खेत में मेहनत कर सकता है और युवा अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे भी बढ़ सकता है। इसी तरह जब परिवार स्वस्थ होता है तो पूरा गांव स्वस्थ और मजबूत बनता है। इसलिए श्रोता साथियों, स्वास्थ्य केवल किसी एक व्यक्ति की चिंता नहीं बल्कि पूरे परिवार और पूरे समुदाय की जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि हमारे गाँव में आज भी बड़ी संख्या में लोग अपने दैनिक जीवन में खेती, पशुपालन, मजदूरी और दूसरे शारीरिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अच्छा स्वास्थ्य उनके जीवन और आजीविका दोनों के लिए बहुत जरूरी है।
1: जी जी।
0: लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारी न होने का नाम नहीं, स्वच्छ वातावरण, पौष्टिक भोजन, साफ पानी, व्यक्तिगत स्वच्छता, मानसिक शांति, नियमित दिनचर्या और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं लेना भी स्वस्थ जीवन का हिस्सा है।
1: जी हाँ, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि किसी भी स्वस्थ गांव की नींव एक स्वस्थ परिवार से शुरू होती है।
0: बिल्कुल।
1: परिवार में यदि साफ सफाई, संतुलित भोजन और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है तो उसका प्रभाव बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक दिखाई देता है। जागृति जी, अगर घर में भोजन बनाने से पहले और खाने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए, ये बात अगर समझाई जाए, पीने के पानी को साफ और सुरक्षित रखना चाहिए, भोजन को ढककर रखना चाहिए और घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, मच्छरों और दूसरे कीटों से बचाव के लिए भी स्वच्छता का ध्यान रखना जरूरी है। परिवार के प्रत्येक सदस्य की जरूरतें अलग अलग हो सकती हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए श्रोता साथियों, बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन और पर्याप्त नींद जरूरी है। गर्भवती महिलाओं को विशेष पोषण और स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता होती है। बुजुर्गों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच और परिवार का सहयोग महत्वपूर्ण है। युवाओं के लिए शारीरिक सक्रियता के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है।
0: जी हाँ अंजलि, इसीलिए परिवार में स्वास्थ्य को लेकर बातचीत और जागरूकता होनी चाहिए। बीमारी को छिपाना या नजरअंदाज करने के बजाय समय पर उचित स्वास्थ्य कर्मी या चिकित्सक से सलाह लेना बहुत जरूरी है। श्रोताओं, हम कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि स्वस्थ रहने में भोजन की बहुत ज्यादा भूमिका होती है। हमारे गाँव की पारंपरिक रसोई में कई ऐसे स्थानीय खाद्य पदार्थ मौजूद है अंजलि, जो पोषण से भरपूर होते हैं, जैसे कि दालें, मोटे अनाज, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध, दही, छाछ, अंकुरित अनाज, बाजरा, मक्का, ज्वार और कई प्रकार के स्थानीय खाद्य पदार्थ संतुलित आहार का हिस्सा बन सकते हैं। सिर्फ पेट भरना पर्याप्त नहीं श्रोताओं, शरीर को अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इसीलिए भोजन में विविधता रखना भी बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा तला भुना, बहुत अधिक नमक या चीनी वाला भोजन नियमित रूप से लेने से हमें बचना होगा। गांव में उपलब्ध स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों का उपयोग परिवार के भोजन को पौष्टिक और विविध बना सकता है। रसोई की छोटी से छोटी समझदारी भी परिवार के स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव ला सकती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही बात करें स्वच्छ पानी और स्वस्थ जीवन की तो श्रोता साथियों, पानी जीवन का आधार है। यदि पीने का पानी दूषित हो जाए तो कई प्रकार की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए घर में आने वाले पानी को सुरक्षित रखना और पानी के स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है। गांव में कुएं, हैंडपंप, टंकी और अन्य जल स्रोत हो, उनकी साफ सफाई और सुरक्षा का सामुदायिक रूप से ध्यान देना चाहिए।
0: जी हाँ।
1: पीने के पानी के बर्तनों को भी साफ रखना चाहिए और उन्हें ढककर रखना चाहिए। श्रोता साथियों, जल संरक्षण भी स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है। जब पानी सुरक्षित और पर्याप्त रहेगा तभी स्वच्छता और दैनिक जरूरतों को पूरा करना आसान होगा।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए जल की रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा एक दूसरे से जुड़ी हुई है।
0: जी हाँ, यही अगर स्वच्छ गांव स्वस्थ गांव को लेकर बात करें अंजलि, तो गांव केवल घरों का समूह नहीं होता। गांव की सड़कें, गलियां, तालाब, स्कूल, आंगनवाड़ी, खेत, पशुशालाएं और सार्वजनिक स्थान मिलकर गांव का वातावरण बनाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: अगर गांव में जगह जगह कचरा पड़ा हो, नालियां गंदी हो या पानी जमा होता रहे तो इसका असर पूरे समुदाय के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसीलिए श्रोताओं, स्वच्छ गांव बनाना किसी एक व्यक्ति या संस्था का काम नहीं है। हर परिवार अपने घर के आसपास सफाई रखे, कचरे को उचित स्थान पर डाले, सार्वजनिक स्थानों को गंदा न करे, ग्राम पंचायत और समुदाय मिलकर स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही स्वच्छता को केवल किसी विशेष अभियान तक सीमित न रखकर दैनिक आदत बनाना भी जरूरी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, आज हम जान रहे हैं कार्यक्रम के माध्यम से स्वस्थ गांव स्वस्थ परिवार और स्वास्थ्य हमारी पूंजी को लेकर ढेर सारी बातों को।
0: जी हाँ।
1: तो बातें ये आगे और भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि किस तरीके से हमें स्वच्छ गांव और स्वस्थ गांव की जो चीज है उसे समझना होगा, यही बात करें स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता की, तो श्रोता साथियों, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अर्थ यह भी है कि जरूरत पड़ने पर समय पर स्वास्थ्य सेवा ली जाए। कई बार लोग बीमारी को छोटा समझकर लंबे समय तक नजरअंदाज करते रहते हैं, इससे समस्या बढ़ सकती है। गांव में उपलब्ध स्वास्थ्य केंद्र, आशा कार्यकर्ता, ANM, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि जागृति जी, स्वास्थ्य संबंधित सही जानकारी के लिए प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सकों से सलाह लेना चाहिए। बच्चों के टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की जांच, बुजुर्गों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं और सामान्य बीमारियों की पहचान समय पर होना बहुत जरूरी है और परिवार को इसके प्रति सजग भी रहना चाहिए।
1: जी हाँ, क्योंकि किसी भी गांव का भविष्य उसके बच्चों में दिखाई देता है। स्वस्थ बच्चे ही अच्छी तरह सीख सकते हैं, खेल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों को पौष्टिक भोजन, साफ पानी, पर्याप्त नींद, स्वच्छ वातावरण और नियमित स्वास्थ्य देखभाल मिलना बहुत जरूरी है। स्कूल में स्वच्छता की आदतें विकसित करना भी बहुत जरूरी है। हाथ धोना, साफ पानी पीना, भोजन को सुरक्षित रखना, आसपास गंदगी न फैलाना और व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना, ये जो छोटी छोटी आदतें अंजलि, बच्चों के पूरे जीवन में काम करती है। साथ ही महिलाओं की बात करें तो परिवार में महिलाओं की भूमिका बहुत जरूरी है। वे घर, बच्चों, खेती और अनेक जिम्मेदारियों को संभालती है। इसीलिए श्रोता, महिलाओं के स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। महिलाओं को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन, आराम, आवश्यक स्वास्थ्य जांच और समय समय पर चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। विशेष रूप से गर्भावस्था और प्रसव के समय स्वास्थ्य संबंधी सलाह और देखभाल बहुत जरूरी है।
0: जी जी।
1: जब परिवार महिला के स्वास्थ्य को महत्व देते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, हमारे बुजुर्ग परिवार और समाज के अनुभव का खजाना होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताएं बदल सकती हैं। परिवार को उनकी दवाइयों, जांच, भोजन और दैनिक जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन बुजुर्गों के स्वास्थ्य में केवल शारीरिक देखभाल ही नहीं श्रोता साथियों, बल्कि उनका साथ और सम्मान भी महत्वपूर्ण है। उनसे बातचीत करना, उनकी बात सुनना और उन्हें परिवार का सक्रिय हिस्सा महसूस कराना उनके मानसिक सुख के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी के साथ अब बात आती है, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि जागृति जी, हम देखते हैं कि हम हमेशा शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं,
1: बिल्कुल,
0: और मानसिक स्वास्थ्य को भूल जाते हैं। श्रोता साथियों, अगर बात करें तो चिंता, तनाव, अकेलापन और लगातार परेशान रहने की स्थिति व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। परिवार में एक दूसरे से खुलकर बातचीत करना, समस्या को ध्यान से सुनना और जरूरत पड़ने पर उचित विशेषज्ञ से मदद लेना स्वस्थ वातावरण बनाने में सहायक हो सकता है। हमें ये समझना चाहिए कि परेशानी बताना कमजोरी नहीं होती है, किसी की बात सुनना और उसका साथ देना भी स्वास्थ्य की देखभाल का हिस्सा है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि स्वस्थ गांव के निर्माण में नशे से बचाव भी महत्वपूर्ण विषय है। नशे की आदत व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ साथ परिवार और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित कर सकती है। युवाओं को खेल, शिक्षा, कौशल, रचनात्मक गतिविधियाँ, सकारात्मक संगति से जोड़ना बहुत जरूरी है। परिवार और समुदाय मिलकर श्रोताओं जागरूकता पैदा कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ सहायता की दिशा में कदम भी बढ़ा सकते हैं। स्वस्थ गांव के लिए स्वस्थ पर्यावरण बहुत जरूरी है, जैसा कि हर कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारे श्रोता साथियों को हम बताते हैं। पेड़ पौधे, स्वच्छ हवा, सुरक्षित पानी और साफ वातावरण हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं।
0: जी जी।
1: गांव में अधिक से अधिक पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना, जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाना और कचरे का उचित प्रबंधन करना स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी है। एक पेड़ केवल छाया नहीं देता श्रोताओं, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण को भी बेहतर बनाता है और इसलिए पर्यावरण संरक्षण को स्वास्थ्य संरक्षण से अलग नहीं किया जा सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, गांव को स्वस्थ बनाने के लिए सभी की भागीदारी आवश्यक है। पंचायत, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कर्मी, किसान, महिलाएं, युवा और ग्रामीण मिलकर स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर काम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, ग्राम सभा में स्वच्छ पानी, साफ सफाई, कचरा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और पोषण से जुड़े जैसे जो विषय हैं, उन पर चर्चा की जा सकती है। समुदाय जो है वो अपनी समस्याओं को सामने रखकर उनके समाधान की दिशा में सामूहिक प्रयास कर सकता है और यही सामुदायिक भागीदारी सच्चे स्वराज की भावना को मजबूत करती है। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि जब गांव अपने स्वास्थ्य, स्वच्छता और विकास से जुड़े मुद्दों को समझकर मिलजुल कर समाधान की दिशा में आगे बढ़ता है, तभी हम देखते हैं कि एक जो गांव है वो स्वस्थ रह पाएगा।
1: बिल्कुल।
0: जागृति जी, हम अक्सर भविष्य के लिए धन बचाते हैं, जमीन खरीदते हैं और बच्चों की शिक्षा के लिए निवेश करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के बिना जीवन की दूसरी उपलब्धियों का आनंद अधूरा रह सकता है।
1: जी हाँ अंजलि, आपने सही कहा, क्योंकि स्वास्थ्य पर किया गया समय और प्रयास खर्च नहीं बल्कि भविष्य के लिए निवेश है। एक स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ परिवार की ताकत बनता है, स्वस्थ परिवार मिलकर स्वस्थ समुदाय बनाते हैं और स्वस्थ समुदाय मिलकर मजबूत गांव का निर्माण करते हैं। आज जरूरत है श्रोताओं कि हम स्वास्थ्य को केवल बीमारी के समय याद न करें, रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में स्वास्थ्य को शामिल करें, स्वच्छता रखें, पौष्टिक भोजन लें, साफ पानी पिए, नियमित शारीरिक गतिविधियां करें, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बीमारियों के संकेत को नजरअंदाज न करें।
0: बिल्कुल।
1: तो साथियों कहना चाहेंगे कि हम अपने गांव से एक ऐसी शुरुआत करें जहां हर घर में स्वच्छता हो, हर थाली में पोषण हो, हर परिवार में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हो और पूरे गांव में सहयोग की भावना हो, क्योंकि अंजलि स्वस्थ परिवार से स्वस्थ समाज बनता है, स्वस्थ समाज से मजबूत गांव बनता है और स्वस्थ गांव से मजबूत देश बनता है।
0: जी जी।
1: हमारी सच्ची पूंजी केवल हमारी संपत्ति नहीं हमारा स्वास्थ्य है, इसे संभालना भी हमारी जिम्मेदारी श्रोता, और आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ वातावरण देना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, जागरूक रहे और अपने गांव को स्वस्थ, खुशहाल और मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाए।
0: बिल्कुल। तो जागृति जी, इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साधु से ढेर सारी बातें रही हैं। अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागतरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9414082643।
0: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को। नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये हैं ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कह कि पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जाओ या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोलू अरे सब समस्या नो समाधान आपे करने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एक ने हमरो ने हाथों मिलने जावो है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लगाड़वो काटो नती जय वरे अधिकार हमरा अपनावी जानकारी सबनो हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बहनों हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनो नाम लगाड़ो
1: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, जैसा कि कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य जहाँ हम बात करते हैं शरीर को स्वस्थ रखने की, मन को बेहतर बनाने की और ऐसी छोटी छोटी आदतों की जिन्हें अपना कर हम अपने जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बना सकते हैं। श्रोता साथियों, जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में अच्छा खान पान, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और साफ सफाई जैसे विषय आते हैं।
0: जी हाँ,
1: लेकिन मनीषा, क्या हम सभी ने कभी सोचा है कि जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए देखभाल की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे मस्तिष्क को सक्रिय रखने और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए अच्छी आदतें भी जरूरी होती है।
0: जी हाँ,
1: आज की जिंदगी में मोबाइल फोन, इंटरनेट, भागदौड़ के बीच हमारा अधिकतर समय स्क्रीन पर बीतता है। हम मोबाइल पर पढ़ते हैं, संदेश देखते हैं, वीडियो सुनते हैं, लेकिन अपने विचारों को लिखने और अपने मन के साथ कुछ समय बिताने का अवसर कम ही निकाल पाते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: इसलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसी सरल आदत की जिसके लिए न किसी महंगे उपकरण की जरूरत है और न ही किसी विशेष व्यवस्था की, बस एक कागज, एक कलम और रोज के कुछ मिनट। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अपने हाथ से लिखने की आदत की। रोज कुछ मिनट लिखना किस तरह हमारे ध्यान, याद रखने के अभ्यास, विचारों को व्यवस्थित करने और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल में सहायक हो सकता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं, रोज कुछ मिनट हाथ से लिखे, दिमाग सक्रिय और विचार व्यवस्थित होंगे। अंजलि जी, हम देखते हैं कि हमारा स्वास्थ्य केवल हमारे शरीर के स्वस्थ रहने का नाम नहीं है। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं श्रोता साथियों, तो उसमें शरीर के साथ साथ हमारा मन, दिमाग, हमारी सोच और हमारी भावनाएं भी शामिल होती हैं। हम अक्सर अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना, व्यायाम, योग, नींद और साफ सफाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन श्रोता साथियों, मानसिक स्वास्थ्य और दिमाग को सक्रिय रखने के लिए क्या करते हैं, इस पर काम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम देखते हैं अंजलि जी कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा दिमाग लगातार काम करता रहता है। मोबाइल पर संदेश, सोशल मीडिया, वीडियो, समाचार, काम का तनाव, पढ़ाई, परिवार की जिम्मेदारी और श्रोता साथियों भविष्य की चिंता, इन सबके बीच हमारे मन में एक साथ बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। कई बार हम किसी बात को लेकर परेशान होते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि आखिर परेशानी की वजह क्या है। फिर कभी मन में बहुत सारे काम होते हैं और समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। ऐसा समय में एक बहुत ही सरल आदत हमारी मदद कर सकती है श्रोता साथियों, वो है श्रोता साथियों रोज कुछ मिनट लिखने की आदत।
1: बिल्कुल मनीषा, जब हम अपने हाथ से लिखते हैं तो हमारे शब्दों को याद करना, विचारों को समझना और उन्हें वाक्यों में व्यक्त करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में हमारा ध्यान और सोचने की क्षमता काम करती है। यदि विद्यार्थी पढ़ाई के बाद अपने हाथ से मुख्य बातें लिखते हैं तो उन्हें विषय को दोहराने और समझने में मदद मिलती है। इसी तरह बड़े भी अपनी दिनचर्या, अनुभव और जरूरी कामों को डायरी में लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप रोज कई पन्ने लिखें, केवल 5 मिनट से शुरुआत कीजिए। आज क्या लिखा, किस बात से खुशी मिली और कल कौन सा जरूरी काम करना है, इन बातों को लिखना भी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि दिन भर की जिम्मेदारियों और चिंताओं के कारण कभी कभी हमारा मन परेशान रहता है। ऐसे में अपनी भावनाओं और विचारों को कागज पर लिखने से उन्हें समझने और व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है।
0: जी हाँ,
1: इसके साथ ही श्रोता साथियों, पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और परिवार के साथ बातचीत भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, ऐसे में हम देखते हैं श्रोता साथियों कि कई बार हमारे दिमाग में एक साथ कई सारी बातें चलती रहती हैं। घर का काम, ऑफिस का काम, पढ़ाई, परिवार, भविष्य, पैसे की चिंता और कई छोटी छोटी बातें मन में घूमती रहती हैं। जब ये बातें श्रोता साथियों केवल दिमाग में रहती है तो हमें लगता है कि समस्या बहुत ज्यादा है, लेकिन जब श्रोता साथियों हम उन्हें कागज पर लिखना शुरू करते हैं तो एक एक बात सामने दिखाई देने लगती है। मान लीजिए श्रोता साथियों कि किसी व्यक्ति के मन में 5 काम हैं। वो सोच रहा है कि आज उसे बाजार जाना है, घर का काम जरूरी है वो करना है, किसी को फोन करना है, पढ़ाई करनी है और अगले दिन की तैयारी करनी है। अगर वो इन सभी कामों को दिमाग में रखेगा अंजलि जी, तो हम देखते हैं कि उसे तनाव महसूस होगा। ऐसे में श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि अगर वो कागज पर लिख ले कि जरूरी फोन करना है, बाजार कब जाना है, 1 घंटा पढ़ाई मुझे कैसे करनी है, घर का काम पूरा कैसे करना है, अगले दिन की तैयारी कैसे करनी है, ये सारी बातें श्रोता साथियों हम उतार लेते हैं तो हमारे मन का तनाव है वो कम हो जाता है और हम आसानी से हमारे कामों को कर पाते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, आज की जिंदगी में हमारा ध्यान बार बार भटकता रहता है। कभी मोबाइल पर संदेश आ जाता है, कभी फोन की घंटी बजती है, तो कभी हम एक काम करते हुए दूसरे काम के बारे में सोचने लगते हैं। श्रोता साथियों, कई बार हम कोई जरूरी काम शुरू तो करते हैं लेकिन ध्यान दूसरी जगह चला जाता है, इससे काम पूरा करने में अधिक समय लग सकता है। ऐसे में कुछ मिनट शांत बैठकर हाथ से लिखना एकाग्रता का अभ्यास करने का अच्छा तरीका हो सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने तय किया कि वह रोज 5 मिनट अपने दिन के अनुभव लिखेगा। वह एक शांत जगह पर बैठकर मोबाइल को दूर रखता है और केवल अपने लिखने पर ध्यान देता है।
0: जी हाँ,
1: इससे उसे कुछ समय एक ही गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलता है। इसी तरह विद्यार्थी किसी पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु लिख सकते हैं, किसान अपने खेत के कामों का विवरण लिख सकते हैं, कोई व्यक्ति दिन भर के जरूरी कामों की सूची बना सकता है। शुरुआत में 5 मिनट पर्याप्त हैं, जरूरी नहीं है श्रोता साथियों कि आप एक साथ बहुत कुछ लिखें। धीरे धीरे अपनी सुविधा के अनुसार समय बढ़ा सकते हैं। यदि लिखते समय ध्यान भटकता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोबारा अपने काम पर ध्यान लगाएं और आराम से लिखना जारी रखिए। याद रखिए कि एकाग्रता का अभ्यास धीरे धीरे होता है। नियमित रूप से किसी गतिविधि में ध्यान लगाने का अवसर देना हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हो सकता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं, तो ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले आज हम कार्यक्रम में जान रहे हैं कि रोज कुछ मिनट हाथ से लिखना दिमाग को सक्रिय और विचार को व्यवस्थित रखता है, जिसमें मनीषा हम ढेर सारी बातों को जान पाए। यही बात करें विचारों को व्यवस्थित करने में लिखने की भूमिका की, तो श्रोता साथियों, हम सभी के मन में दिन भर कई तरीके के विचार आते रहते हैं।
1: जी हाँ।
0: कभी घर के कामों की चिंता, कभी बच्चों की पढ़ाई की, तो कभी नौकरी की जिम्मेदारियां और कभी भविष्य को लेकर योजनाएं। जब एक साथ बहुत सारे विचार मन में चलते हैं तो कई बार यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि पहले कौन सा काम करें और किस काम को बाद में करना चाहिए। ऐसे समय में मनीषा अपनी बातों को कागज पर लिखना उपयोगी हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: मान लीजिए किसी महिला के मन में कई योजनाएं हैं, वो पढ़ाई आगे बढ़ाना चाहती है, अपने बच्चों को समय देना चाहती है और घर की जिम्मेदारियां भी निभाती है। उसे लगता है कि समय की कमी के कारण वह कुछ नहीं कर पा रही।
1: जी हाँ।
0: वह अपनी दिनचर्या लिखती है और अगले दिन की 3 जरूरी काम तय करती है तो उसे अपने समय और अपने जिम्मेदारियों को समझने में मदद मिल सकती है। इसी तरह कोई युवा लिख सकता है कि उसे परीक्षा की तैयारी करनी है, कौन सा विषय पढ़ना है, रोज कितना समय पढ़ाई के लिए निकालना है, और लिखने से काम अपने आप पूरे नहीं होते, लेकिन उन्हें छोटे हिस्सों में बांटना और प्राथमिकताएं तय करना आसान हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: जब हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से लिखते हैं श्रोता साथियों, तो हमें अपनी जरूरतों और लक्ष्यों पर विचार करने का अवसर मिलता है। इसलिए दिन की शुरुआत में या रात को सोने से पहले अगले दिन की योजना लिखने की आदत अपनाएं।

0: जा सकती है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि रात में हमें दिन की समीक्षा करनी है। हाथ से लिखने की आदत के लिए श्रोता साथियों रात का समय भी अच्छा हो सकता है। सोने से पहले 5 मिनट निकाल कर हम पूरे दिन के बारे में लिख सकते हैं। आज मैंने क्या किया, आज मैंने क्या सीखा, आज कौन सी बात मुझे परेशान कर रही थी, कल मुझे क्या बेहतर करना है। इस तरह श्रोता साथियों दिन की समीक्षा करने से व्यक्ति अपने व्यवहार और दिनचर्या को समझ सकता है। लेकिन रात में बहुत ज्यादा चिंता वाली बातें लिखकर हमें उसके बारे में सोचना हमारे लिए जरूरी नहीं है। यदि कोई बात बहुत परेशान कर रही है तो उसे लिखकर समाधान के अगले छोटे कदम पर ध्यान देकर हम बेहतर कर सकते हैं। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि हमें सकारात्मक सोच के साथ लिखना है। हाथ से लिखना केवल समस्याओं के बारे में लिखने तक सीमित नहीं होना चाहिए। हम अपने जीवन की अच्छी बातों को लिख सकते हैं। हर दिन ऐसी 3 बातें लिखी जा सकती है जिसके लिए हम आभार व्यक्त करें। जैसे कि आज परिवार के साथ मैंने समय बिताया, उसके लिए मैंने समय निकाला, आज मैंने अपना जरूरी काम पूरा किया, आज किसी ने मेरी मदद की। इससे हमारा ध्यान श्रोता साथियों केवल परेशानियों पर नहीं रहता है बल्कि जीवन में मौजूद अच्छी चीजों पर भी जाता है।
2: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में कभी खुशी आती है, कभी चिंता, कभी निराशा और कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनके बारे में हम किसी से खुलकर बात नहीं कर पाते। घर की जिम्मेदारियां, आर्थिक परेशानियां, काम का दबाव या परिवार से जुड़ी चिंताएं हमारे मन में कई विचार पैदा कर सकती है। श्रोता साथियों ऐसे समय में अपनी भावनाओं को पहचानना और स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना जरूरी है।
1: जी हाँ,
2: लोगों को डायरी में अपनी मन की बातें लिखने से अपने विचारों और भावनाओं को समझने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति लिख सकता है कि आज मुझे काम पूरा नहीं होने की चिंता रही, मुझे समझ आया कि मैंने काम शुरू करने में देर की, कल मैं अपना काम थोड़ी देर पहले से शुरू कर दूंगा ताकि मेरा काम समय पर हो जाए।
1: जी
2: इस
1: हाँ।
2: तरह लिखने से व्यक्ति अपनी परेशानी को पहचान सकता है और आगे के लिए कोई छोटे कदम तय कर सकता है। इसी तरह हम रोज रात को अपने आप से 3 सवाल पूछ सकते हैं कि आज मुझे किस बात से खुशी मिली, आज किस बात ने मुझे परेशान किया, कल मैं अपने स्वस्थ दिनचर्या के लिए कौन कौन सी चीजें कर सकता हूँ। इन सवालों के जवाब लिखने से मनीषा हमें अपने दिन के अनुभव का विचार करने का अवसर मिलता है।
1: जी हाँ,
2: ये भी समझना जरूरी है कि डायरी लिखना मानसिक स्वास्थ्य संबंधित सभी परेशानियों का इलाज नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक चिंता, उदासी, नींद की परेशानी या तनाव बना रहे तो उसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लेनी चाहिए।
1: जी हाँ बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि हमारा स्वास्थ्य केवल बीमारी से बचने का नाम नहीं है।
2: बिल्कुल,
1: स्वस्थ जीवन के लिए शरीर के साथ साथ मन और दिमाग पर ध्यान देना भी हमारे लिए जरूरी है। रोज कुछ मिनट अपने हाथ से लिखना एक बहुत छोटी और आसान आदत है। इसके लिए किसी खास जगह, महंगी चीज या ज्यादा समय की जरूरत भी नहीं होती है। एक कॉपी, एक पेन, कुछ मिनट का पर्याप्त समय हम ले सकते हैं। जब श्रोता साथियों हम अपने विचारों को कागज पर लिखते हैं तो हम देखते हैं कि उसे समझने, व्यवस्थित करने और प्राथमिकता तय करने में हमें मदद मिल सकती है। हमें अपने दिन के काम लिख सकते हैं, अपनी अच्छी बातों को याद कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को पहचान सकते हैं और अपने स्वास्थ्य से जुड़ी जो आदतें हैं उन पर हम ध्यान दे सकते हैं। इसलिए श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि आज से ही अपने व्यस्त दिन के कुछ मिनट अपने लिए जरूर निकालें। मोबाइल को थोड़ी देर किनारे रखें, कॉपी और पेन उठाएं और अपने मन की बातें लिखें। हो सकता है कि कुछ ही मिनटों में एक छोटा सा अभ्यास आपके दिन को अधिक व्यवस्थित कर सकता है।
2: जी बिल्कुल मनीषा, यही अंत में श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि मस्तिष्क और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए केवल लिखना ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ स्वस्थ जीवन शैली अपनाना भी जरूरी है। अपने भोजन में दालें, हरी सब्जियां, मौसमी फल, अनाज और पर्याप्त पानी शामिल करें। संतुलित भोजन शरीर और मस्तिष्क को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने में मदद करता है। अपनी उम्र और शारीरिक क्षमता के अनुसार नियमित रूप से टहले, योग करें या कोई अन्य शारीरिक गतिविधि अपनाएं। पर्याप्त नींद लें और सोने से पहले मोबाइल का उपयोग कम करने का प्रयास करें। परिवार और मित्रों के साथ बातचीत करें, अपने अनुभव साझा करें और दूसरों की बातें भी ध्यान से सुने। इसके साथ पढ़ना, लिखना, पहेलियां हल करना, नई भाषा सीखना या कोई रचनात्मक कार्य काम करना भी दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है। श्रोता साथियों इन सभी गतिविधियों का उद्देश्य अपने शरीर और मन की देखभाल करना है। हर परिवार की जरूरतें और जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं, इसलिए अपने दिनचर्या को अपनी उम्र, स्वास्थ्य और परिस्थितियों के अनुसार हमें अपनाना चाहिए।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं। और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
2: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वाघ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम समस्या समाधान हमरवारा मर हित्ता भाई बोने ने आपनी बोन मनीषा
1: ने आपनी बोन अंजलि नु
2: राम राम।
0: होवे भाई बोनो आप सब हमले रिया हो आपड़ू सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर रहा हूँ हमारे आज ने कार्यक्रम समस्या समाधान में।
1: होवे भाई बोनो लेने हाजिर थे गयो हूँ कार्यक्रम समस्या समाधान लेने एक ना विषय ने हाथे। तो मनीषा बोन आज अपने कार्यक्रम में भाई बोनो तकी बातचीत नो विषय है कि अपने गाँव में जो गडलो मन कहे ई ने अपने जो डिजिटल दुनिया अवड़े ना टेम में इनमें अपने वधारे खोवाई गयो हूँ एना ने कारण अपने वेश में हूँ दूरे वधी रही है ने समस्या ने समाधान हूँ थी शके
0: होवे।
1: अपने देखो हो कि आज ना टेम में अपने आए पाए घना कानी चीजें बदलाई गई है। पहले ना टेम में जो काम कागज ने कलम तकी थाता हता इन ठेकने आज घना जो काम है ई मोबाइल तकी थावा लगे है। किनक ने पैसा मोकलवा हो अवड़े ना टेम में अपने देखो हो कि बिजली नु बिल जमा भी अपना मोबाइल तकी थी सा। पहला ना टाइम में बिजली ना बिल समा कराबा भले लंबी लाइन लगती हती। इन साथे घना आकानी एवी जानकारी है जेनानी जे चीजे है एनानी जानकारी आपड़ा ने मोबाइल तकीस मिली जाए है। पण अणा सब बदलाव ने वेस में आपू जे समाज है एनु एक वर्ग से है ई वाय छूटतु देखाई रू है। ई है आपड़ा गांव ना गडला मनक। आपड़ा देखो हो कि घना गडला मनक मोबाइल तो राखे है पण एनानी कई चीजें हैं हूँ कामनी है ई हमस में नहीं आतु। ई कयो भी बटन दबावा तकी आपने देखो हो कि बी ए है कि काय बिजू नहीं थी सा। तो आज आप ई जानांगा कि जे गडलो मन क है ई डिजिटल दुनिया तकी हरते दूर है ने आनी हूँ समस्या है ने समाधान ना हूँ उपाय थी सके।
0: होवे अंजलि बोन तो अणा विषय माते आपड़े भाई बोन खती कार्यक्रम ने माध्यम कती घणा आकानी वाती रेंगा पण कार्यक्रम ने शुरुआत में हामड़ा गीत ने मोरे करा आपड़ी वाती।
1: होवे तो भाई बोनो आप हमर तरह सु आपड़ो रेडियो आपड़ी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि दिल स्वस्थ है तो जिंदगी मस्त है। हमारी रोजमर्रा की आदतें दिल पर कितना असर डालती है। जी हाँ श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि हमेशा आपके जीवन, आपके परिवार, आपके गांव और आपकी सेहत से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को आपके बीच लेकर हम आते हैं। इसी कड़ी में आज जैसा कि हम बात कर रहे हैं, तो आप जरा सोचिए एक पल रुककर कि सुबह जब हमारी आंख खुलती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? कोई उठते ही चाय की तलाश करता है तो कोई मोबाइल देखने लगता है, कोई घर के कामों में जुट जाता है तो कोई खेत खलियान या नौकरी पर जाने की तैयारी करने लगता है। दिन भर हमारी जिंदगी इसी तरह भागदौड़ में गुजरती रहती है। कभी काम का दबाव, कभी परिवार की जिम्मेदारी, कभी पैसों की चिंता तो कभी भविष्य की फिक्र। हम अपने घर परिवार और कामकाज के लिए तो हर दिन समय निकालते हैं, लेकिन क्या कभी अपने दिल के लिए भी कुछ समय निकालते हैं? हम अक्सर कहते हैं कि जब तक शरीर साथ देगा तब तक हम काम करेंगे, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि शरीर को लगातार काम करने की ताकत देने वाला हमारा दिल भी आराम, देखभाल और सही आदतों का हकदार है।
0: जी हाँ,
1: इसलिए आज हम कार्यक्रम में इस विषय पर ढेर सारी बातों को जानेंगे कि दिल केवल हमारे शरीर का एक अंग नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन की धड़कन है। जब तक दिल नियमित रूप से धड़कता है तब तक शरीर के हर हिस्से तक खून और उसके साथ ऑक्सीजन पहुंचती रहती है। हम चलते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं और अपने परिवार के साथ खुशियां बांटते हैं, तो इन सब के पीछे हमारे दिल की निरंतर मेहनत भी शामिल होती है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हमारी छोटी छोटी आदतें जैसे कि जरूरत से ज्यादा नमक खाना, तली भुनी चीजें अधिक खाना, घंटों बैठे रहना, नींद पूरी तरह न लेना, हर समय तनाव में रहना धीरे धीरे हमारे दिल की सेहत को प्रभावित कर सकता है।
0: जी हाँ,
1: तो आज के इस कार्यक्रम में हम किसी डर या घबराहट की बात नहीं करेंगे बल्कि मनीषा समझेंगे कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कौन से बदलाव ला सकते हैं, किन संकेतों को गंभीरता से लेना चाहिए और किस तरह परिवार और समुदाय को हृदय रोगों से बचाव के प्रति जागरूक बना सकते हैं। तो बातें तो ढेर सारी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ,

0: श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं दिल स्वस्थ तो जिंदगी मस्त, हमारी रोजमर्रा की आदतें दिल पर कितना असर डालती है इस विषय को लेकर। कहा जाता है श्रोता साथियों कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन श्रोता साथियों हृदय यानी कि दिल का स्थान है वो विशेष होता है। दिल हमारे शरीर में लगातार काम करता है, यह बिना रुके रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है और शरीर के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन तथा आवश्यक पोषक तत्वों को पहुंचाने में मदद करता है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि जब हमारा दिल स्वस्थ रहता है तो हम अधिक ऊर्जा, उत्साह और सक्रियता के साथ अपने जीवन को जी सकते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। हमारा दिल एक मजबूत मांसपेशी से बना अंग है जो दिन रात बिना रुके काम करता है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा दिल धड़कता रहता है। जब हम खेतों में काम करते हैं, घर के काम निपटाते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं या बाजार जाते हैं, तब भी दिल लगातार शरीर के अलग अलग हिस्सों तक खून पहुँचाने में लगा रहता है।
0: बिल्कुल,
1: खून के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व पहुँचते हैं। इसी कारण दिल और रक्त वाहिकाओं का स्वस्थ रहना पूरे शरीर के लिए जरूरी है। लेकिन जब दिल तक खून पहुंचाने वाली धमनियों में धीरे धीरे चर्बी और दूसरे पदार्थ जमा होने लगते हैं तो खून का बहाव प्रभावित हो सकता है। कभी कभी इसी जमा हुई परत पर खून का जो थक्का है वो बन जाता है और दिल की मांसपेशियों तक खून पहुंचना अचानक रुक जाता है। ऐसी स्थिति में दिल का दौरा पड़ सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मनीषा, तंबाकू का सेवन, असंतुलित खान पान, शारीरिक निष्क्रियता और हानिकारक मात्रा में शराब का सेवन रक्त रोगों के हृदय रोगों के प्रमुख व्यवहार संबंधी जोखिम है। इसलिए दिल की बीमारी को केवल बुजुर्ग की बीमारी समझना सही नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ जोखिम बढ़ सकता है, लेकिन जीवन शैली, परिवार में हृदय रोग का इतिहास, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए दिल की देखभाल का अर्थ केवल बीमारी होने पर दवा लेना नहीं है, इसका अर्थ है कि बीमारी आने से पहले हम अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें और ऐसे कदम उठाएं जो हमारे दिल को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद करें।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आज की तेज रफ्तार जीवन शैली में हम देख रहे हैं कि हमारी जीवन शैली ही वो बदलती जा रही है। सुबह देर से उठना, शारीरिक मेहनत कम करना, घंटों तक मोबाइल चलाना या कंप्यूटर हम देखते रहते हैं, फास्ट फूड और अत्यधिक नमक चीनी वाला भोजन हम करते हैं, तनाव लेते हैं, पर्याप्त नींद हम नहीं ले पाते हैं और व्यायाम की कमी के कारण अंजलि जी हम देखते हैं कि ये समस्या है वो आम होती जा रही है। ये आदतें श्रोता साथियों केवल हमारी दिनचर्या को ही प्रभावित नहीं करती हैं बल्कि लंबे समय तक यह हमारे हृदय के स्वास्थ्य पर भी असर डालती है। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए श्रोता साथियों हमेशा बड़े बदलावों की जरूरत नहीं होती है। कहना चाहेंगे कि हमारी छोटी छोटी आदतें हैं वो भी बड़ा अंतर पैदा कर सकती हैं। सही खान पान, नियमित शारीरिक गतिविधियां, पर्याप्त नींद, तनाव पर नियंत्रण और नशे से दूरी जैसे कदम ही वो हमारे हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि हमारी रोजमर्रा की आदतें हमारे दिल को मजबूत बनाने में भी योगदान दे सकती है और उसके स्वास्थ्य के लिए जोखिम में उसको भी कम कर सकती है। साथ ही श्रोता साथियों, दिल स्वस्थ रहेगा तो हमारे जीवन में ऊर्जा, उमंग और खुशहाली है वो भी बनी रहेगी।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन और वैसा ही तन। हम जो खाते हैं उसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है। हमारी दिल की सेहत भी हमारी रसोई से जुड़ी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में घरों में मक्का, गेहूं, मक्का की रोटी, दालें और हरी सब्जियां, मौसमी फल और पारंपरिक अनाज का उपयोग होता है। ये खाद्य पदार्थ संतुलित भोजन का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन इसके साथ हम कितना नमक, तेल, घी, चीनी और तली हुई चीजें लेते हैं यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि हमारे घरों में कई बार भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए नमक अधिक डाल दिया जाता है। अचार, पापड़, चटनी, नमकीन, दूसरी नमकीन चीजों के माध्यम से शरीर में नमक की मात्रा बढ़ सकती है। नमक में सोडियम होता है और जरूरत से अधिक सोडियम लेने से कुछ लोगों में रक्तचाप बढ़ सकता है। जब रक्तचाप लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो दिल को खून पंप करने के लिए अधिक मेहनत पड़ती है और हृदय रोग और स्ट्रोक का जोखिम बढ़ सकता है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन वयस्कों के लिए प्रतिदिन कुल 5 ग्राम से कम नमक लेने की सलाह देता है। इसमें भोजन बनाते समय डाला गया नमक और पहले से खाद्य पदार्थों में मौजूद नमक भी शामिल है। इसलिए जरूरी है कि हम धीरे धीरे भोजन भोजन में नमक की मात्रा कम करें। शुरुआत में भोजन थोड़ा फीका लग सकता है, लेकिन समय के साथ स्वाद की आदत भी बदल सकती है। भोजन में नींबू, धनिया, लहसुन, अदरक और दूसरे प्राकृतिक मसालों से स्वाद बढ़ाया जा सकता है। अचार और नमकीन का

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से हमें अपने स्तर पर अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए किन किन विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। यही श्रोता साथियों, बात करें बैठे बैठे गुजरता है दिन और दिल पर उसका असर पड़ता है। मनीषा, जब जरा अपनी दिनचर्या पर जब हम नजर डालते हैं तो सुबह उठते ही चाय पी ली, फिर काम पर जाने के लिए वाहन या बस में बैठ गए, नौकरी पर पहुंचे तो कुर्सी पर बैठे, घर लौटे तो मोबाइल या टीवी के सामने बैठ गए। दिन समाप्त तो हो गया लेकिन शरीर को पर्याप्त गतिविधि का मौका ही नहीं मिला। हमारे शरीर को चलने फिरने के लिए बनाया गया है। जब हम नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियां करते हैं तो इससे रक्तचाप, वजन, रक्त में शर्करा और समग्र हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इसके विपरीत लंबे समय तक बैठे रहना और शारीरिक गतिविधि की कमी हृदय रोगों के जोखिम से जुड़ी है। अब सवाल उठता है कि क्या दिल को स्वस्थ रखने के लिए हमें रोजाना जिम जाना जरूरी है? नहीं श्रोता साथियों, हर व्यक्ति के लिए जिम जाना आवश्यक नहीं है। हमारे आसपास ही कई ऐसी गतिविधियां हैं जिन्हें हम अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: सुबह या शाम को तेज कदमों से टहलना, खेत या बगीचे में काम करना, घर के आसपास पैदल चलना, साइकिल चलाना और अपनी क्षमता के अनुसार हल्के व्यायाम करना इसके उदाहरण है। वयस्कों के लिए भी सप्ताह में कम से कम 150 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि एक सामान्य स्वास्थ्य संबंधित मार्गदर्शन है। इसे अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग तरीके और अलग अलग दिनों में और अलग अलग समय में बांटा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति रोजाना 30 मिनट पैदल चलने का लक्ष्य रख सकता है सप्ताह में 5 दिन। लेकिन यदि लंबे समय से व्यायाम नहीं किया है, उम्र अधिक है या कोई बीमारी है तो शुरुआत में धीरे धीरे करें और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य कर्मी से सलाह लें। खास बात यह है कि अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करके शरीर को थकाना व्यायाम नहीं है। नियमित और सुरक्षित

0: गतिविधियां अधिक महत्वपूर्ण हैं। जो लोग दिन भर खेत में शारीरिक मेहनत करते हैं मनीषा, उन्हें भी अपनी सेहत के अनुसार पर्याप्त आराम, पानी, संतुलित भोजन और जरूरत के अनुसार गतिविधि में संतुलन बनाए रखना चाहिए। और एक बात श्रोता साथियों कि घर का काम करने वाली महिलाओं की मेहनत को भी कम नहीं समझना चाहिए। पानी भरना, खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना और खेतों में हाथ बटाना, इन सब में काफी ऊर्जा लगती है। फिर भी लगातार काम का दबाव और बिना आराम की दिनचर्या सेहत पर असर डाल सकती है। इसलिए महिलाओं को भी अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालने और नियमित जांच करवाने का अवसर मिलना ही चाहिए।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि हृदय शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य है वो श्रोता साथियों पूरे शरीर में रक्त को पंप करना है। रक्त के माध्यम से शरीर में अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व है वो पहुँचते हैं। साथ ही साथियों शरीर में अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया है वो यह करता है। हमारा दिल लगातार काम करता है। जब हम सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं या खेल रहे होते हैं, हृदय वो हर समय कार्य करता रहता है। इसलिए हृदय के स्वास्थ्य को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम अपने दिल का ध्यान रखते हैं श्रोता साथियों, तो इसका लाभ है वो केवल हमारे हृदय तक सीमित नहीं रहता है। स्वस्थ जीवन शैली से हमारे शरीर की जो समग्र कार्य क्षमता है, ऊर्जा है और हमारे जीवन की गुणवत्ता है, उसको भी बेहतर बनाने में मदद मिलती है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि हमें हमेशा अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि नियमित योगा करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और साथ ही अपने दिनचर्या में सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि जिंदगी में हर व्यक्ति के सामने कोई ना कोई परेशानी आती ही है। किसी को घर चलाने की चिंता है, किसी को बच्चों की पढ़ाई की, किसी को खेती में बारिश और फसल की चिंता है, तो किसी को नौकरी और परिवार की जिम्मेदारी का दबाव है। कई बार हम बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन मन के भीतर लगातार चिंताएं चल रही होती हैं।
1: जी हाँ,
0: हम किसी से अपनी परेशानी साझा नहीं करते, अपनी बात मन में दबा कर रखते हैं और धीरे धीरे तनाव हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। अब सवाल यह है कि तनाव का दिल से क्या संबंध है? तो श्रोता साथियों, जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर में ऐसे बदलाव होते हैं जिनसे कुछ समय के लिए दिल की धड़कन और रक्तचाप बढ़ सकते हैं। यदि तनाव लगातार बना रहे तो नींद, खान पान और शारीरिक गतिविधियां जैसी आदतें भी प्रभावित हो सकती हैं। लंबे समय तक तनाव हृदय रोगों की जोखिम से जुड़ा हुआ है। हालांकि हर तनावग्रस्त व्यक्ति को हृदय रोग हो ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे घरों में मनीषा कई बार छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है। किसी ने हमारी बात नहीं मानी, किसी ने हमारी मेहनत की सराहना नहीं की, किसी काम में उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं मिला, तो हम पूरे दिन उसी बात को सोचते रहते हैं। ऐसे में हमें अपनी भावनाओं को समझना और स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना सीखना चाहिए। यदि कोई बात परेशान कर रही है तो परिवार के किसी भरोसेमंद सदस्य से बात करें। अपनी परेशानी को मन में दबा कर रखने के बजाय उसे शांत तरीके से साझा करें। किसी से असहमति है तो तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा समय लें और फिर अपनी बात रखें। कभी कभी कुछ समय प्रकृति के बीच बिताएं, अपने खेत और बगीचे में बैठना, बच्चों के साथ खेलना, मनपसंद गीत सुनना या किसी मित्र से बातचीत करना भी मन को राहत दे सकता है। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि हमारे वागड़ की संस्कृति में सामूहिकता, मेल मिलाप और एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने की परंपरा रही है। गांव में चौपाल पर बैठकर बातचीत करना, पड़ोसी का हाल पूछना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना केवल सामाजिक संबंधों को मजबूत नहीं करता बल्कि व्यक्ति को अकेलेपन से भी बचा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि गंभीर या लगातार तनाव, चिंता, नींद की समस्या होने पर केवल सकारात्मक सोचने की सलाह पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य कर्मी या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना भी उचित है। दिल को स्वस्थ रखने के लिए शरीर के साथ मन की देखभाल करना भी जरूरी है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारी दिनचर्या में श्रोता साथियों ऐसी कई सारी आदतें होती है जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। इन्हीं आदतों का लंबे समय तक दोहराव है वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों के खान पान का सीधा संबंध वो हमारे हृदय से होता है। हम जो खाते हैं उसका स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आज के समय में अंजलि जी हम देखते हैं कि पैकेज्ड फूड, तला भुना भोजन, अत्यधिक नमक, अधिक चीनी और अस्वस्थ जो वसा वाले खाद्य पदार्थ हुई उनका सेवन है वो भी बढ़ता जा रहा है। बार बार श्रोता साथी बहुत अधिक नमक और असंतुलित भोजन लेने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
0: बिल्कुल।
1: इसके बजाय हमें अपने घर का भोजन खाना है, फल सब्जियां खानी है, साबुत अनाज खाने हैं, दालें खानी है, मेवे खाने हैं और उचित मात्रा में जो प्रोटीन से युक्त होते हैं वो हमें खाद्य पदार्थ खाने ही, ऐसा भोजन है वो हमें हमारे भोजन में शामिल करना है। भोजन का अर्थ श्रोता साथियों केवल पेट भरना नहीं होता है, भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा और पोषक देने में मदद करता है। इसलिए श्रोता साथियों में स्वाद के साथ साथ पोषण और पोषक तत्वों का ध्यान रखना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो रात को देर रात तक मोबाइल देखते रहते हैं और सुबह जल्दी उठकर काम पर चले जाते हैं। किसी को देर रात तक काम करना पड़ता है, किसी को बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, तो किसी की नींद बार बार खुलती रहती है। कई बार हम सोचते हैं कि नींद कम लेने से क्या फर्क पड़ेगा, आखिर काम तो पूरा हो ही रहा है, लेकिन पर्याप्त नींद हमारे शरीर और दिल की सेहत के लिए महत्वपूर्ण है। नींद के दौरान शरीर को आराम मिलता है और रक्तचाप सहित शरीर की कई प्रक्रियाओं को संतुलित रहने में मदद मिलती है।
1: जी बिल्कुल।
0: लगातार काम और खराब नींद उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों के जोखिम से जुड़े हो सकते हैं। इसलिए वयस्कों को सामान्यतः हर रात लगभग 7 से 9 घंटे की नींद लेने का प्रयास करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल।
0: हालांकि नींद की जरूरत व्यक्ति की उम्र और स्वास्थ्य के अनुसार अलग हो सकती है, अपनी दिनचर्या में कुछ छोटे बदलाव करके हम नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। रात को सोने और सुबह उठने का समय नियमित रखें, सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल कम करें, रात में बहुत अधिक चाय या कॉफी पीने से बचें, खासकर यदि उससे नींद प्रभावित होती हो तो। यदि घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी देखभाल की जिम्मेदारी परिवार के सदस्यों के बीच बांटने का प्रयास करें, ताकि माँ को भी पर्याप्त आराम मिल सके। आराम करना आलस नहीं है, लगातार मेहनत करने वाले शरीर को आराम की जरूरत होती है। हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, अपने वाहन में ईंधन भरते हैं, तो अपने शरीर को भी पर्याप्त नींद और आराम देना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ श्रोता साथियों हम देखते हैं कि पहले हमारे दैनिक जीवन में जो काम थे वो हम खुद से करते थे, जैसे कि हम साइकिल चलाते थे, हमारा काम है वो हम करते थे, खेतों के जो अन्य कार्य हैं वो हम करते थे, जिससे अंजलि जी हम देखते थे कि हमारी शारीरिक गतिविधियां वो आसानी से हो जाती थी। अभी के टाइम पे हम देखते हैं कि लोग, बहुत सारे लोग हैं वो बाहर काम करते हैं और कुर्सी पर ज्यादातर तक बैठे रहते हैं, इसीलिए श्रोता साथियों शारीरिक गतिविधियां हैं वो कम होती जा रही हैं। शारीरिक गतिविधि कमी होने से श्रोता साथियों हमारी शारीरिक सक्रियता है वो भी कम हो जाती है। नियमित चलना, योग करना, खेलना, साइकिल चलाना या अपनी क्षमता के अनुसार व्यायाम है वो भी हम कर सकते हैं, जिससे हमारा शरीर है वो सक्रिय रहेगा। व्यायाम के लिए श्रोता साथियों हमेशा जिम जाना जरूरी नहीं है, जैसा कि अंजलि जी आपने बताया था। रोजमर्रा की हमारी जिंदगी में कुछ आदतें हैं उन्हें हम अपना सकते हैं, चल सकते हैं, सीढ़ियों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लंबे समय तक कोई काम हमें बैठकर नहीं करना है उसके लिए हम यहाँ वहाँ घूम सकते हैं, ये सारे काम हैं वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, तो जैसा कि कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातें जान रहे हैं, आगे भी ये बातें निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, हम बातें कर रहे थे, अगर हमारा दिल स्वस्थ रहेगा तो हमारी जिंदगी किस तरह बेहतर हो सकती है और हमारी रोजमर्रा की आदतें हैं वो किस प्रकार हमारे हृदय पर असर डालती हैं, इस विषय को लेकर यही अगर बात करें अंजलि जी, तनाव के प्रभाव की, तो श्रोता साथी हम देखते हैं कि आज की जिंदगी में तनाव एक सामान्य अनुभव बन चुका है। काम का दबाव, आर्थिक चिंताएं, पारिवारिक जिम्मेदारियां, पढ़ाई और नौकरी, भविष्य की चिंताएं, श्रोता साथियों ये सभी हमें मानसिक रूप से परेशान कर देती हैं। लगातार तनाव में रहना शरीर पर भी असर डाल सकता है, इसलिए तनाव को पहचानना और उसे स्वस्थ तरीके से संभालना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। परिवार के साथ समय बिताना, मित्रों से बातचीत करना, संगीत सुनना, प्रकृति के बीच समय बिताना, ध्यान और योग करना और अपनी पसंद की रचनात्मक जो गतिविधियां हैं उन्हें भी हम शामिल करके अपने तनाव को संभालने में मदद कर सकते हैं। साथ ही साथियों कहना चाहेंगे कि पर्याप्त नींद ही उसकी भी हमें जरूरत होती है। आज बहुत से लोग हैं वो देर रात तक फोन चलाते रहते हैं या काम करते समय जल्दी उठ नहीं पाते हैं। इससे अंजलि जी हम देखते हैं कि उनकी नींद है वो पूरी नहीं हो पाती है। अच्छी नींद शरीर और मन को आराम देने के लिए बहुत जरूरी होती है।
1: बिल्कुल,
0: पर्याप्त और नियमित नींद शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है। साथ ही साथ ये कहना चाहेंगे कि सोने और जागने का नियमित जो समय होता है वो हमें निर्धारित करना है। सोने से पहले स्क्रीन का उपयोग हमें कम करना है और शांत वातावरण में सोने की आदत हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो सकती है।
1: बिल्कुल मनीषा, एक ऐसी आदत जिसे कई लोग सामान्य समझकर अपना लेते हैं। कुछ लोग बीड़ी पीते हैं, कुछ सिगरेट, कुछ तंबाकू या कुछ गुटखे का सेवन करते हैं। कई बार गाँव में दोस्तों के साथ बैठकर या काम के बीच थकान दूर करने के नाम पर इंसान सेवन इन सारी चीजों का करता है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि तंबाकू का सेवन हमारे दिल और रक्त वाहिकाओं के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है?
0: जी हाँ,
1: तंबाकू में मौजूद निकोटीन रक्तचाप और दिल की धड़कन बढ़ा सकता है। तंबाकू के धुएं में मौजूद हानिकारक पदार्थ रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे दिल का दौरा और स्ट्रोक होने का जोखिम बढ़ सकता है। केवल बीड़ी या सिगरेट ही नहीं बल्कि चबाने वाले तंबाकू और दूसरे तंबाकू उत्पाद भी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: दूसरों के धुएं के संपर्क में आने से भी बचना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन हृदय रोगों से बचाव के लिए तंबाकू का सेवन पूरी तरह छोड़ने की सलाह देता है। असली श्रोता साथियों, कई बार तंबाकू छोड़ने का निर्णय तो हम ले लेते हैं लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर उसकी आदत हमें लौट आती है। ऐसे में खुद को दोष देने के बजाय सही सहायता लेना जरूरी है।
0: जी
1: अपने परिवार और दोस्तों से सहयोग मांगे, तंबाकू छोड़ने के लिए स्वास्थ्य कर्मी से परामर्श ले, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से उपलब्ध उपचार और परामर्श सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। और जो लोग तंबाकू का सेवन नहीं करते वे इस आदत को कभी शुरू न करें। अपने बच्चों के सामने भी तंबाकू के सेवन से बचें क्योंकि बच्चे बड़ों को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। याद रखिए कि तंबाकू छोड़ना केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार और भविष्य और अपने बच्चों के स्वस्थ वातावरण के लिए भी महत्वपूर्ण कदम है।
0: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविजन हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। इनका उपयोग शिक्षा, काम और जानकारी के लिए हम करते हैं, लेकिन श्रोता साथियों लंबे समय तक बैठे रहना और शारीरिक गतिविधि कम होना हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। कई लोग खाना बनाते समय, आराम करते समय और सोते समय मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। इससे हम देखते हैं कि हमारी दिनचर्या है वो असंतुलित हो जाती है। इसीलिए साथियों कहना चाहेंगे कि हमें तकनीक का उपयोग तो करना है लेकिन इसके साथ ही हमारी शारीरिक जो सक्रियता है उस पर भी हमें ध्यान देना है। हम देखते हैं साथियों कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार है उसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। भोजन में विभिन्न प्रकार की सब्जियां, फल हमें शामिल कर सकते हैं, जैसे कि साबुत अनाज, दालें, फलियां, मेवे और अन्य जो पौष्टिक खाद्य पदार्थ हैं वो संतुलित आहार का हिस्सा होते हैं। हम देखते हैं अंजलि जी के बहुत अधिक लोग होते हैं वो तले भुने भोजन का अत्यधिक सेवन करते हैं, ज्यादा नमक वाला भोजन खाते हैं और ज्यादा चीनी वाले जो पदार्थ होते हैं उनका सेवन करते हैं। साथियों कहना चाहेंगे कि इन सबका प्रभाव हमारे हृदय पर पड़ता है तो हमें इन सबका संतुलित उपयोग करना है।
1: जी हाँ मनीषा, यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि हमें हमारे जीवन में कई सारी स्वास्थ्य समस्याओं से कई बार गुजरना पड़ता है। हम देखते हैं कि अभी के समय में बहुत से लोगों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल जैसे समस्याएं हैं। इसकी नियमित जांच जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? तो श्रोता साथियों, कई बार किसी व्यक्ति को न तो सीने में दर्द होता है, न ही सांस फूलती है और न ही कोई विशेष परेशानी महसूस होती है।
0: जी हाँ,
1: रोजाना अपने काम पर जाता है, खेत में काम करता है और सामान्य जीवन जीता है, लेकिन जब उसकी जाँच होती है तो उसे पता चलता है कि उसका रक्तचाप बहुत बहुत बड़ा हुआ है या रक्त में शर्करा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सामान्य से अधिक है। इसलिए श्रोता साथियों, उच्च रक्तचाप को कई बार बिना स्पष्ट लक्षणों वाली समस्या भी कहा जाता है।
0: जी हाँ।
1: व्यक्ति को अपने रक्तचाप के बढ़ने का पता जो है वो लंबे समय तक नहीं चल पाता और लगातार अनियंत्रित रक्तचाप दिल और रक्तवाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है।
0: जी हाँ।

0: ले श्रोता साथियों, रक्तचाप की जांच से पता चलता है कि धमनियों की दीवारों पर खून कितना दबाव डाल रहा है। नियमित जांच से रक्तचाप बढ़ने का पता भी चल पाता है और इसलिए केवल सिरदर्द होने पर ही रक्तचाप की जांच करवाए पर्याप्त नहीं है। बिना किसी विशेष लक्षण के भी अपने उम्र और स्वास्थ्य के अनुसार नियमित जांच करवाना जरूरी है। अगर यही बात करें मनीषा मधुमेह की, तो श्रोता साथियों, मधुमेह में रक्तचाप में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। लंबे समय तक अनियमित मधुमेह रक्तवाहिकाओं और दिल को नुकसान पहुंचा सकता है। जिन लोगों को मधुमेह है उन्हें चिकित्सक की सलाह के अनुसार रक्त शर्करा की जांच, दवाओं और खानपान पर ध्यान देना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए जरूरी एक प्रकार का वसा जैसा पदार्थ है, लेकिन रक्त में कुछ प्रकार के कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से में वसायुक्त परतें जमा होने का जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए जरूरत है कि डॉक्टर के सलाह के अनुसार हम जांच करवाएं, खासकर जिनके परिवार में कम उम्र में हृदय रोग हुआ हो, जिन्हें उच्च रक्तचाप या मधुमेह हो, जो तंबाकू का सेवन करते हो, या जिनमें अन्य जोखिम कारक हो, उन्हें अपनी जांच और स्वास्थ्य संबंधित सलाह को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारे आसपास उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैसी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकती है। अपने क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी आशा सहयोगिनी, ANM, स्थानीय स्वास्थ्य कर्मी से प्राप्त करें। और सबसे जरूरी बात, यदि डॉक्टर ने रक्तचाप, मधुमेह या कोलेस्ट्रॉल की दवा दी है तो उसे अपने मन से बंद न करें। केवल इसलिए दवा छोड़ देना कि अब कोई परेशानी महसूस नहीं होती, ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए श्रोता साथियों, स्वस्थ जीवन शैली, जरूरत के अनुसार चिकित्सक उपचार और दोनों एक दूसरे के पूरक है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि उन्हें पानी पीने की आदत भी विकसित करनी है। पर्याप्त पानी पीना शरीर के सामान्य कार्यों के लिए बहुत आवश्यक होता है। कई लोग काम में व्यस्त रहने के कारण पानी पीना भूल जाते हैं। हम अपनी प्यास और शरीर की जो आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त पानी पीने की मात्रा है उसको हम कम करते देखते हैं। तो श्रोता साथियों, में पर्याप्त पानी पीने पर भी हमें ध्यान देना है। बहुत अधिक लोग हैं वो मीठे पेय पदार्थों का उपयोग करते हैं और सामान्य जो पानी होता है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। तो साथियों, कहना चाहेंगे कि पानी है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यही अगर बात करें कि वजन और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की, तो साथियों हम देखते हैं कि शरीर का स्वस्थ है वो वजन के द्वारा ही नियंत्रित होता है। अधिक वजन बढ़ने के कारण हमारे शरीर की जो समस्याएं और जोखिम है वो बढ़ जाते हैं। अंजलि जी, वजन को लेकर केवल श्रोता साथियों बाहरी सुंदरता को नजर में रखना हमारे लिए ठीक नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमें सोचना भी हमारे लिए जरूरी है। संतुलित भोजन और नियमित शारीरिक गतिविधियां वजन के स्वास्थ्य की सीमा को बनाए रखने में मदद कर सकती है।
0: बिल्कुल मनीषा, अब हम एक ऐसे महत्वपूर्ण बात पर बात करते हैं जिसे सुनना और समझना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है कि दिल की बीमारी से बचाव के साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि यदि किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने के संकेत दिखाई दे तो हमें क्या करना चाहिए। अक्सर लोग सीने में दर्द या बेचैनी होने पर सोचते हैं कि शायद गैस बन गई है, एसिडिटी हो गई है या ज्यादा काम करने से थकान हो गई है। कई बार वे घरेलू नुस्खे अपनाते हैं और अस्पताल जाने में देर कर देते हैं। लेकिन साथियों, दिल का दौरा पड़ने के कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे कि सीने के बीच में दबाव, भारीपन, जकड़न, दर्द या बेचैनी महसूस होना, दर्द या असहजता का एक या दोनों हाथों, कंधे, पीठ, गर्दन और जबड़े पर तक पहुंचना, सांस लेने में परेशानी या अचानक सांस फूलना, ठंडा पानी, ठंडा पसीना आना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना या बेहोशी जैसा लगना और जी मसलाना या उल्टी होना, महिलाओं में सांस फूलना, मतली, उल्टी, पीठ या जबड़े में दर्द जैसी जो चीजें हैं वो सामने आ सकती हैं। हर व्यक्ति को दिल के दौरे के लक्षण एक जैसे नहीं होते और कभी कभी सीने में तेज दर्द के बिना भी परेशानी हो सकती है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को ऐसे लक्षण दिखाई दे तो उसे गैस या सामान्य थकान समझकर इंतजार नहीं करना चाहिए। ऐसे स्थिति में तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता लें। भारत में 112 पर कॉल करके आपातकालीन सहायता मांगी जा सकती है।
1: बिल्कुल।
0: मरीज को खुद वाहन चलाकर अस्पताल जाने के लिए न कहें, उसे आरामदायक स्थिति में रखें, शारीरिक मेहनत न करवाएं और आपातकालीन चिकित्सा सहायता के निर्देशों का पालन करें। बिना चिकित्सीय सलाह के कोई दवा या घरेलू नुस्खा देने में समय न गवाएं। दिल का दौरा एक चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति है। समय पर अस्पताल पहुंचाएं, जीवन बचाएं और दिल की मांसपेशियों को होने वाले नुकसान को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इस तरह यदि किसी व्यक्ति का चेहरा अचानक एक तरफ झुक जाए, एक हाथ में कमजोरी आ जाए या बोलने में अचानक परेशानी होने लगे तो ये स्ट्रोक के संकेत हो सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: ऐसी स्थिति में भी तत्काल आपातकालीन चिकित्सा सहायता लेना जरूरी है। गाँव में रहने वाले हर व्यक्ति को इन संकेतों की जानकारी होनी चाहिए। परिवार में बुजुर्ग हो या युवा, महिला हो या पुरुष, सभी को यह पता होना चाहिए मनीषा कि आपातकालीन स्थिति में किससे संपर्क करना है और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल तक कैसे पहुंचना है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो ये बातें हमारी आगे भी श्रोता साथियों से कुछ छोटी मोटी रह गई हैं, वो जारी रहेंगी। लेकिन क्यों ना साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
0: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से विदा लेना चाहेंगे। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पारशर को।
1: नमस्कार।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम के होस्ट कशिश पारशर। स्वागत करती हूं दोस्तों आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम

हम सब बहुत अच्छा हमारा आपके साथ बना रहता है। सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच दोस्तों आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं और आप भी अपने फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। आपको करना कुछ नहीं है, आपको लिखना है फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहाँ से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं वहाँ का आपको नाम लिखना है, साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भेज देना है व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 9414260843 पर। मैं फिर से नंबर बताना चाहूँगी दोस्तों, क्योंकि इसी नंबर के ज़रिए आप अपने राय सुझाव और फरमाइश की गीत हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा नंबर है 9414082643 पर। तो श्रोता साथियों, हम इंतज़ार रहेगा आपकी फरमाइश गीतों का। अब जैसा कि कार्यक्रम में फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो मैं बढ़ना चाहूँगी हमारी पहली फरमाइश की गीत की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच बागपत यूपी से आई है। फिल्म का नाम है सौदागर, गीत के बोल हैं ये इलो इलो क्या है। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे आसिफ अली खान, मोमिना नाथ, मुस्कान, सादिक अली खान, सारिक अली खान और भी हमारे दोस्त हैं जो जुड़ रहे हैं इसी गीत के साथ में। मुरादाबाद से जुड़ना चाह रहे हैं बेगम शबीबा, शहीबा महबूब, समीर अंसारी, बारिश अंसारी, शिमा अलशिफा अंसारी, मोहम्मद आरिश अंसारी जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन कर रहे हैं। मोहाली पंजाब से जुड़ रहे हैं बबल मल्होत्रा, प्रकाश मल्होत्रा जी। बागपत से जुड़ना चाह रहे हैं जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनेश देवी, अर्जुन भाटी बिटिया, अंजलि नितिन जगमोहन, भुवनेश्वरी देवी जी, सुधुर नूतन भुवनेश्वरी देवी, रानंद कश्यप जी, सुमन देवी जी और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। बताना चाहूँगी पाटापारा से हैं हिमकेश्वर साहू, कर्णराउल साहू, चंपा साहू। इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, खनेश खर्चे जी, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, स्वाति प्रयागराज चौधरी, लड्डू देविका चौधरी जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं ये इलो इलो क्या है, ये इलो इलो। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुल्लू है।
1: आई एम लारिसा। डोंट से लारिसा।
0: अबे हाँ, मुझे ना कुछ में भी। आज हम लोग खेलने वाले हैं ट्रूथ एंड स्पाइस।
1: दिमाग काम नहीं कर रहा है।
2: अगला राउंड लाओ।
1: ओके, हाउ लॉन्ग यू बीन सिंगल?
0: इट हैज चेंज। यू लाइक? कोई बोले कि लेबल्स नहीं चाहिए।
1: या आई मीन व्हाट लेबल्स?
0: अबे कोई कोंकणी लड़की के साथ डेट पे आ गया हूं।
1: आई मीट रिच बॉयज।
3: वन सेलिब्रिटी मेट इन रियल लाइफ एंड इंस्टेंटली डिसलाइक्ड।
0: ओ भाई साहब, लारिसा आज मामला है।
1: लारिसा
0: बता कौन सी चाहिए, जीरो शुगर चाहिए या नॉर्मल वाली चाहिए?
1: स्प्राइट जीरो
0: है?
1: जीरो
0: ये लीजिए। चलो भाई, ये मामला हो गया सेट।
1: ऐसे करते कुल्लू।
0: कैसे? तो मैं कैसे कर रहा हूँ?
1: वैसे
0: कर रहा हूँ।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसे कि फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है मजनू का टिल्ला से। फिल्म का नाम है द ट्रेन। गीत के बोल हैं, गुलाबी आँखें जो तेरी देखी। इस गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी जी ने और फरमाइश करता जुड़ रहे हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक जी। हमारे साथ ही और भी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। कश्मीर से हैं फैज़ारा मिराजुद्दीन, नज़मुद्दीन, क्वासिरुद्दीन। जुड़ना चाह रहे हैं गंजुड़वाड़ा से शमशुल कमर राय, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैज़ान खान, अनु खान जी। गाजीबाद से शिशपाल अकेला, तेजपाल प्रजापति जी। करेली से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, नसरीन अंसारी, शमा अंसारी, माहिनूर अंसारी जी। और भी श्रोता साथी निम्बानगर मध्य प्रदेश से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन जी शाह, मंगलाबेन जी शाह, राजेन शाह, सुषमा कपूर जी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस प्यारे से गीत को। गीत के बोल हैं, गुलाबी आँखें जो तेरी देखी। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है बटेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है हीना। गीत के बोल हैं, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति मरला वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र मनहरण वर्मा जी, और भी दोस्त जुड़ रहे हैं नरगढ़ छत्तीसगढ़ से महाराज करतनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल टिम्पल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी जी। इसी बीच बिलासपुर छत्तीसगढ़ से श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन कर रहे हैं। गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, बेबी ऐश श्रीवास। छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमू, मानस राज। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं मुरादाबाद से अजित कसाना, माया देवी, ऋतिक आदित्य कसाना दी, लदावली से जुड़ना चाह रहे हैं। आपको बताना चाहूँगी और भी अनुरोध करता, मधुबनी बिहार से इस गीत को सुनना चाह रहे हैं शब्बीर परवाना जी, साजिद अली, शाहिद अली जी और जाहिद अली जी। मलियान सरदना मेरठ से, अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान मास्टर, जीवीएम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, अंशिका जैन, बोरखेड़ा पित्रामल से हैं विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाटा, दिलीप सिंह पंवार और दीक्षा कुश मुणत जी। सहारनपुर से सैयद मसूर, साहिना अक्सा, नाजमा आफिया, इब्राहिम सद्दाम जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। तब तक आप बने रहिएगा वगड़ रेडियो 90.8 FM पर, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि फरमाइश का गीत चल रहा था, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, इसी गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे बीच आई है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं ताजमहल अंसारी गुलाम शाबीर महराज जहाँ। इन श्रोताओं की फरमाइश है, आपको बताना चाहूँगी, शोले फिल्म का गीत महबूबा ओ महबूबा। फरमाइशकर्ता और भी हैं जो इसी गीत के साथ अपना नाम जोड़ना चाह रहे हैं और सुनना चाह रहे हैं इसी गीत को। राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोड़ा ने, अर्चना ताई गोड़ा ने, हीरामन शेंडे जी, प्रेम प्रसिद्धि जी। झारखंड से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद यासिन अशमा, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बीबी चाहत और सादिया जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस प्यारे से गीत को। गीत के बोल हैं महबूबा ओ महबूबा। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, इस गीत के बाद फिर से अगली फरमाइश की ओर बढ़ते हैं। आपको बताना चाहूँगी, अगली फरमाइश दादरी गेट भिवानी से आई है। फिल्म का नाम है गुमनाम, गीत के बोल हैं गुमनाम है कोई। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं इसी गीत के साथ में, कोलगांव से हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक प्रथमेश, संतोष पांडुरंग कुम्हार जी। और भी दोस्त दादरी गेट भिवानी से हैं, कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण कपिल, कुणाल मेहरा। सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से हैं, किशोर वड़ादकर, शुभम वड़ादकर, पुन्नू वड़ादकर जी। जलाना शहर से जुड़ रहे हैं सुधाकर राय जाधव, प्रशांत राय जाधव, जगुताय राय जाधव, देशमुख, प्राणी देशमुख, सर्वत देशमुख, सर्वत और हर्षिता संचित, प्रथमेश देशमुख। राजस्थान से जुड़ रहे हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार जी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस प्यारे से गीत को, गीत के बोल हैं गुमनाम है कोई। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि फरमाइश का बहुत ही प्यारा सा गीत था, गुमनाम है कोई, अनजान है कोई, किसको खबर कौन है वो। इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के इस प्यारे से गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी। जोधपुर राजस्थान से ये फरमाइश का गीत आया है, फिल्म का नाम है धड़कन, गीत के बोल हैं तुम दिल की धड़कन में रहते हो। फरमाइशकर्ता जोड़ रहे हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, गर्वी हिमाक्ष बेबी जी। सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक सचिन शर्मा, रोहित शर्मा। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया जी। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष सोहिनी, मोहित बलवीर सिंह जी। तो आइए दोस्तों, मनोरंजन कर लेते हैं साथियों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं तुम दिल की धड़कन में रहती हो। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी। फिल्म का नाम है बुलबुलैया, गीत के बोल हैं मेरे ढोलना सुन। ये गीत की फरमाइश हमारे बीच आई है, आपको मैं बताना चाहूँगी। श्रोता साथी जो जुड़ रहे हैं, आकोट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, शिवम बेंडे, विजय बेंडे, पवनजरिया, संजीव डाबेराव जी और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं इस गीत के साथ में। जाकुर राजस्थान से शंभूदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुनलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक, खेल बाजार पानीपत से नरेश मिलो, नीटू लक्ष्मण मल्होत्रा, लड़कुल मल्होत्रा, ननक चल मल्होत्रा, रोहतक से पीयूष सिक्का, कुनिका डुग्गू सिक्का, भाविक सिक्का। तो आइए श्रोता साथियों, मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं मेरे ढोल ना सुन। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है संजय कॉलोनी खंडवा से। फिल्म का नाम है जहर। गीत के बोल हैं वो लम्हे वो बातें। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे अब्दुल गफार डावर, खुशसिब अब्दुल हक डावर, जियाउलक अब्दुल रहमान डावर, कादर डावर, बाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे सोहन जोशी जी। इसी बीच कलानोर से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन, मयंक शर्मा और भी हमारे दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशर विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजुनू रजना, बदना प्रियल, दिव्यांशी विश्वकर्मा जी। मेरठ से जुड़ रहे अनिल जैन, सैम जैन, मस्कान मास्टर जी, वीएम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, अंशिका जैन। गंजुडवाड़ा से हैं शमशुल कुमार राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु अंसारी, कलीम अंसारी जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं वो लम्हे वो बातें। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

नमस्कार श्रोता साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता कशिश पारेशर के साथ में। अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इस सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है नरवेल महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है मसाल। गीत के बोल ही मुझे याद तुम्हारी याद आई। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने, किशोर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर। मलकापुर महाराष्ट्र से जुड़ रही नारायण इगले, सोपान इगले, आशीष मेहकर। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, माला ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानो शानु, बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर। इससे भी जुड़ना चाह रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार देवगाना, दुर्गा प्रसाद देवगाना, पराग टेलर, पूनाराम देवगाना, कृष्णा देवगाना। इस गीत के अनुरोध करता है आकोट सिंह, हीरामन शिंडे, सिद्धार्थ जी शिंडे, अमरावती गोडाना से जुड़ना चाह रहे हैं। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है मसाल। गीत के बोल ही मुझे तुम याद करना। इस गीत को आवाज़ दी लता मंगेशकर जी ने और किशोर कुमार जी ने। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गज चौराहा यूपी से। फिल्म का नाम है कुर्बान, गीत के बोल ही ये धरती चांद सितारे। इस गीत की फरमाइश करता है सुरेश चौरासिया, श्रीमती सरोज चौरासिया, सबोज चौरासिया, सलोनी चौरासिया, संजू लल्ला चौरासिया, पूजा पिंकी चौरासिया, बाबू शिवा शिवानी जी चौरासिया। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजार, नरगिस जी खातून। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीजा, पूनम गगनीजा, विशाल प्रिया, दिशानी निमित आहूजा जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। इस गीत के अनुरोध करता है अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका रामेकर और रामेकर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है कुर्बान, गीत के बोल हैं ये धरती चांद सितारे। इस गीत को आवाज दी है अनुराधा जी ने और उदित नारायण जी ने। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं साथियों की फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाघ रेडियो 90.8 FM पर।

0: आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है धनोरी तेलीवाला से। फिल्म का नाम है मोहब्बती। गीत के बोल हैं, आंखें खुली हो यहाँ हो बंद। इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण जी ने और लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बीबी आलिया, आयन बाबू। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं शिवाजी चौक कटनी से। अनिल ताम्रेकार, अमर ताम्रेकार, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रेकार, रंजित रजक, विपिन गुप्ता, प्रकाश सोनी, अरुण कंजोनिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू सोना, मोना हसी, यश और सौम्या जी इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं। लाहौरा से डोमेंद्र नेताम, गणेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामलेश नेताम और माहिनीर जी नेताम। इस गीत के अनुरोध करता है अमरावती से श्याम केटी, वंदना केटी, कार्तिक केटी और भाविका जी केटी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं पलेरा टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष जी विश्वकर्मा। पत्रोड से जुड़ना चाह रहे हैं विजय अंबाटेकर, सुनीता अंबाटेकर, अक्षय अंबाटेकर, राधिका अंबाटेकर, ऋषिकेश जी अंबाटेकर। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है मोहब्बती। गीत के बोल हैं, आंखें खुली हो या हो बंद। इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण जी ने और लता मंगेशकर जी ने। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।
1: लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता था,
2: आंखें खुली हो या

श्रोता साथियों, अभी हमने लता मंगेशकर जी और उदित नारायण जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, आंखें खुली हुई आँखें बंद। इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडितपुर सिटी से। फिल्म का नाम है अजनबी। गीत के बोल ही मेरी ज़िंदगी में अजनबी का इंतज़ार है। इस गीत की फरमाइश करता है प्रशांत सिंधी, सुनीता सिंधी, यशराज सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा घोड़के जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं पंजाब से, सुभाष गोद्रा, विमला देवी, इंदु गोद्रा, पार्वती गोद्रा, हिमांशु गोद्रा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से, दिलीप रामेकर, हर्षा रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका रामेकर और रामेकर परिवार के सभी सदस्यगण। सरगांव छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांशी वर्मा। बुलंदशहर से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद सहीद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरुद्दीन अब्बासी, सुहांजी अब्बासी, अबांजी अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी, अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इस गीत के अनुरोध करता है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से साहिद हुसैन अंसारी, नरसी अंसारी, नूरिन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद फेक जी अंसारी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है अजनबी। गीत की बोल है मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है एकता कोहली ने रोहतक से। फिल्म का नाम है लावारिस। गीत के बोल हैं, कब के बिछड़े हुए। इस गीत की फरमाइश करता है सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित जी कांगड़ा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं बीड़ शहर महाराष्ट्र से, नंदकिशोर घटी, संगीता घटी, साक्षी घटी, अंजलि करवा, बाल प्रसाद करवा, जयश्री मलेत्री, रामनिवास अग्रवाल, धनजी बिट्टू, पीबी कुदलेश जी। इस गीत की अनुरोध करता है महाराष्ट्र से रूपेश संगई, महेश संगई, ब्रजेश संगई, प्रतेश संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इस गीत के अनुरोध करता है नवाशहर पंजाब से गंगदीप थांदी, दीप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका, वाणीजी थांदी। डापकी रोड अकोला से जुड़ना चाह रहे हैं शशिला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव जी मधुरकर। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है लावारिस। गीत के बोल हैं, कब के बिछड़े हुए। और इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार जी ने और आशा जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश की इस गीत को।

आइए साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पटिया कला दुर्ग से। फिल्म का नाम है दिल से, गीत के बोल हैं चल छैया छैया। इस गीत की फरमाइश करता है संजीव कुमार शाहू, सुजीता शाहू, शशांक जी शाहू और सीमा जी शाहू। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं पंजाब से, बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश जी मल्होत्रा। इस गीत के अनुरोध करता है यतला महाराष्ट्र से शंकरलाल जयसवाल, गणेशलाल जयसवाल, सुप्रसाद जयसवाल, अपनव जयसवाल, दुर्गेश्वरी जयसवाल, राखी जी जयसवाल और तृप्ति जी जयसवाल। इस गीत के अनुरोध करता है राहुल नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, रोशनी मनवर, चेतन मनवर, विशाल मनवर, बेबी प्रियांशी जी। इस गीत के अनुरोध करता है उत्तर प्रदेश से इशरत खान, शायरा खान, रफ्यू खान, शाबरीन बेगम, शहबाज खान, सैफ खान, ईशान जी खान। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है दिल से, गीत के बोल हैं चल छैया छैया। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है आगरा से। फिल्म का नाम है विजय पद, गीत के बोल हैं राहों में उनसे मुलाकात हो गई। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। इस गीत के फरमाइश करता है श्रीमती सरिता चौरासिया, सुमित चौरासिया, वीर और अभिर्जी चौरासिया। कानपुर से जुड़ना चाह रहे हैं श्रीमती सुजाता चौरासिया, पंकज चौरासिया, पीयू और दियाजी चौरासिया। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेमांश कुमार चंदन, सोंगा जी। इस गीत के अनुरोध करता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हेमंत नामदेव, नंदनी नामदेव, नेहा नामदेव, निशा नामदेव, छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, रंजन शाहू जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे नेहरू चौक पेटर्न से डॉक्टर सुरेश यादव, अनिता जाधव, आरती पूजा, प्रसाद जाधव, सोनम जाधव, बीबी सिया जाधव जलाना शहर से जुड़ रही हैं। सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जी जाधव, एकता जी जाधव और संगीता जी जाधव। इस गीत के अनुरोध करता है करेली सी मोहम्मद यासिर अंसारी, शमशील अंसारी, नरसी अंसारी, शमा अंसारी, महिनूर जी अंसारी और अंसारी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इस गीत के अनुरोध करता है भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरजिंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अंकिता जी जोशी, लक्ष्मी ध्रुव, बेबी वेदई जोशी, हंसिका जी जोशी, विजेंद्र अग्रवाल, रानू अग्रवाल जी। खड़वा मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं अब्दुल गफ्फार डावर जी और जगदलपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रही हैं पूनम नायडू जी। जनकपुरी सहारनपुर से जुड़ रहे हैं जोन टिकिस्ट्रो, रोजी टिकिस्ट्रो, पल टिकिस्ट्रो, विलेज टिकिस्ट्रो। तो आइए श्रोता साथियों सुनते ही फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है विजयपथ, गीत के बोल हैं राहों में उनसे मुलाकात हो गई। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। तो आइए श्रोता साथियों सुनते ही श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। और श्रोता साथियों यह गीत आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। साथियों, अब वक्त है शाम के खास कार्यक्रमों का जो आपके हर पल को बनाएगा खास, तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए आज के शाम के कार्यक्रम की रूपरेखा। साथियों, शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति शांति और सुकून से भरे सुरों के साथ दिन भर की थकान को अलविदा कहने का समय। इसी के साथ अगला कार्यक्रम होगा शाम 5:30 पर युवाओं की आवाज, जहां सपने बोलते हैं, विचार उड़ान भरते हैं और युवा अपनी बात खुलकर रखते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी कि मैं और कशिश पाराशर। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है श्रोता साथियों शाम 6 बजे कार्यक्रम सच्चा बचपन। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे बच्चों की मासूमियत, मुस्कान और बचपन की यादों से भरा प्यारा सा सफर। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम है खेतीबाड़ी, इसे आप सुन पाएंगे 6:30 पर। ये कार्यक्रम किसानों के काम की बात, जमीन से जुड़ी सच्ची जानकारी और अनुभव है। इसे लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी कि मैं। श्रोता साथियों, जैसे कि कार्यक्रमों की रूपरेखा चल रही है तो हम अगला कार्यक्रम आपको बताते हैं। अगला कार्यक्रम शुरू होगा 7 बजे और इस कार्यक्रम का नाम है सच्चा स्वराज। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे समाज, सोच और सच्चाई से जुड़ी आवाज जो हमें जागरूक बनाती है। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम होगा हमारा स्वास्थ्य, जो कि सेहत और सम्मान की बातों के साथ होगा। इसे आप सुन पाएंगे 7:30 पर। इसे लेकर आएंगी आरजे कशिश पाराशर और हमारे रेडियो साथी मनीषा पटेल। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम है सपनों की उड़ान, इसे आप सुन पाएंगे 8 बजे। तो श्रोताओं, जैसे कि कार्यक्रमों की रूपरेखा मैं आपको बता रही हूँ तो अंत में आप सुनेंगे 9:00 शामी कसले। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सुनेंगे अल्फाज जो छू जाए, एहसास जो ठहर जाए, सुकून भरी रात की शुरुआत। तो श्रोताओं, शाम की घड़ियां यूं ही नहीं गुजरती, ये वो पल है जहाँ भक्ति भी है, युवा सोच भी है, बचपन की हंसी भी है, किसान की मेहनत भी है, सच की आवाज भी है, सेहत और सम्मान की बात भी है, संगीत का जादू भी है और गजलों का सुकून भी है। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागर रेडियो। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई बड़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? इस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है सदा। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में, क्या आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है हृदय में, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए। मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे, पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे, संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करता है, और अपेक्षा की तो नियति है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की प्रामाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते, पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाए और स्वीकार करे केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन स्वयमेव सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा। जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है, और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा।

0: जागृति बुंद, आपने कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुंद, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुंद, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुंद, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुंद, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुंद, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी युवाओं का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत का विषय रहने वाला है, भागती जिंदगी थकता दिल, क्या युवाओं को अपनी रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक चाहिए।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि आज की जिंदगी की रफ्तार शायद पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल की स्क्रीन, फिर पढ़ाई या काम, उसके बाद करियर की चिंता, सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना, भविष्य को लेकर सवाल और इन सब के बीच खुद के लिए समय निकालना। कशिश, जैसे हमें लगता है कि लगातार किसी ऐसी दौड़ में शामिल है हम जिसका रास्ता तो दिखाई देता है लेकिन मंजिल का हमें पता नहीं होता।
0: बिल्कुल,
1: हम अक्सर कहते हैं श्रोताओं कि समय बहुत तेजी से भाग रहा है, लेकिन कभी हमने सोचा है कि शायद समय नहीं, हम खुद बहुत तेजी से भाग रहे हैं। और इसी भाग दौड़ के बीच आज का सवाल है, भागती जिंदगी थकता दिल, क्या युवाओं को अपनी रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: ब्रेक का मतलब रुक जाना नहीं है श्रोताओं, ब्रेक का मतलब है कुछ पल ठहरना, खुद को सुनना और फिर सही दिशा में आगे बढ़ना।
0: जी हाँ जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं से हमारी इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें होंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में हम उन्हें पहले गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं, तो क्यों ना आज भी शुरुआत पहले यहाँ पर एक प्यारे से गीत के साथ करें।
1: जी हाँ, तो आइए साथ ही सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं भागती जिंदगी में थकता दिल। अगर बात करें जागृति जी की, भागती जिंदगी का हिस्सा हमारे युवा कैसे बन रहे हैं, तो जैसा कि आज के युवा साथी बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनके सपने बड़े हैं, वह पढ़ना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं और अपना व्यवसाय भी शुरू करना चाहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही साथ उनका सपना ये भी है कि वे परिवार की उम्मीदों पर खड़ा उतरे और समाज में अपनी पहचान भी वे बनाना चाहते हैं। लेकिन कई बार इन सपनों को पूरा करने की कोशिश में युवा अपने वर्तमान को जीना भूल जाते हैं।
1: जी हाँ।
0: सुबह से रात तक एक के बाद एक काम, एक लक्ष्य पूरा हुआ तो दूसरा सामने खड़ा है, एक परीक्षा खत्म हुई तो अगली परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है, एक नौकरी मिली तो प्रमोशन की चिंता साथियों, एक उपलब्धि मिली तो सोशल मीडिया पर किसी और की बड़ी उपलब्धि दिखाई दे गई और फिर मन कहता है मैं तो अभी भी पीछे हूँ।
1: जी हाँ।
0: दोस्तों, यही सोच धीरे धीरे जीवन को एक दौड़ में बदल देती है। हम अपने दिन को कामों से भरते जाते हैं लेकिन ये देखना भूल जाते हैं कि हमारे भीतर की ऊर्जा कितनी बची है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि तेज चलना गलत नहीं है, महत्वाकांक्षी होना भी गलत नहीं है, अपने सपनों के लिए मेहनत करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल ये है श्रोताओं कि क्या हर समय तेज भागना जरूरी है?
0: बिल्कुल।
1: कल्पना कीजिए श्रोताओं कि कोई व्यक्ति लगातार दौड़ रहा है, उसके सामने रास्ता है, मंजिल है, लेकिन वो कभी रुक कर ये नहीं देखता कि उसके जूते ठीक है या नहीं, रास्ता सही है या नहीं, या और उसके शरीर को आराम की जरूरत है या नहीं। क्या वो लंबे समय तक दौड़ पाएगा? शायद नहीं।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, ठीक यही बात जीवन पर भी लागू होती है। कभी कभी जीवन में थोड़ी धीमी गति हमें पीछे नहीं करती बल्कि हमें टूटने से बचाती है।
0: जी हाँ जागृति जी। साथी, अगर बात करें कि थकता दिल केवल शरीर की थकान नहीं है, तो जब भी हम थकान की बात करते हैं तो अक्सर शरीर की थकान को हम समझ लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन युवाओं की थकान हमेशा नहीं दिखाई देती। कभी कभी व्यक्ति बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता है, हंसता है, दोस्तों से बातें करता है, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालता है और काम करता है, लेकिन अंदर से वह लगातार दबाव महसूस कर रहा होता है।
1: बिल्कुल।
0: कभी मन कहता है मुझे थोड़ा आराम चाहिए, लेकिन जिम्मेदारियां कहती है अभी नहीं। कभी मन कहता है कि आज खुद के लिए कुछ समय निकाल लिया जाए, लेकिन मोबाइल पर कोई नया अपडेट, कोई नया लक्ष्य या कोई नई चिंता सामने आ जाती है।
1: जी हाँ।
0: धीरे धीरे श्रोता साथियों, व्यक्ति अपने ही जीवन में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे खुद से बात करने का समय ही नहीं मिलता।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि आज युवाओं की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल दुनिया से जुड़ गया है। सोशल मीडिया पर हमें हर किसी की जिंदगी का चमकदार हिस्सा ही दिखाई दे रहा है।
0: बिल्कुल।
1: कोई विदेश घूम रहा है, कोई नई नौकरी शुरू कर रहा है, कोई अपनी सफलता बता रहा है, कोई नया घर खरीद रहा है, कोई परीक्षा में बहुत अच्छे अंक ला रहा है। और श्रोताओं, हम अपनी वास्तविक जिंदगी की तुलना दूसरों की चुनी हुई तस्वीरों से करने लगते हैं।
0: बिल्कुल।
1: फिर मन में सवाल आ जाता है कशिश की, उसकी जिंदगी इतनी अच्छी है, मेरी क्यों नहीं? लेकिन श्रोताओं, हमें ये याद रखना होगा कि सोशल मीडिया अक्सर किसी व्यक्ति की पूरी जिंदगी हमें नहीं दिखाता है, वो केवल उसका चुना हुआ हिस्सा ही हमें दिखाता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए किसी और की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को कमतर समझना उचित नहीं है। हर व्यक्ति की गति अलग है, हर व्यक्ति का रास्ता अलग है और हर व्यक्ति की मंजिल भी अलग है।
0: जी हाँ जागृति जी, जैसा कि बात कर रहे हैं कि भागते जिंदगी थकता दिल किस प्रकार से युवाओं के जीवन में थोड़ा सा ब्रेक उन्हें चाहिए, तो इस विषय पर बातचीत हम आगे भी करते रहेंगे।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं यहाँ पर एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी भागती जिंदगी थकता दिल, युवाओं को अपनी रफ्तार पर किस तरह से थोड़ा सा ब्रेक चाहिए को लेकर। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जान पा रहे थे भागती जिंदगी का हिस्सा किस तरह से युवा बन रहे हैं।
1: जी हाँ,
0: क्या तेज चलना ही सफलता है। साथ ही हम जान रहे थे कि थकता दिल केवल शरीर की थकान नहीं है, और सोशल मीडिया और लगातार तुलना को लेकर भी हमारी बातें रही थी। यही जानते हैं साथियों, थोड़ा रुकना समय की बर्बादी नहीं है।
1: जी हाँ,
0: यानी कि कशिश, हमारे समाज में आराम को कई बार आलस समझ लिया जाता है। अगर कोई युवा कुछ समय शांत बैठना चाहता है तो लोग कह देते हैं इतने खाली क्यों बैठे हो। अगर कोई अपने लिए समय निकालता है तो लगता है कि वो समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन श्रोताओं, आराम और आलस से एक ही चीज नहीं है। आलस से हमें काम से दूर करता है, जबकि सही आराम हमें दोबारा काम करने की ऊर्जा भी दे रहा है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि मोबाइल को लगातार चलाने के बाद चार्ज करना पड़ता है, वैसे ही इंसान को भी अपनी ऊर्जा को संभालने के लिए आराम, नींद, मनोरंजन और अपने लोगों के साथ समय की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल, अब सवाल ये है जागृति जी कि अगर जिंदगी में ब्रेक चाहिए तो ये ब्रेक कैसा हो।
0: बिल्कुल,
1: क्या इसका मतलब पढ़ाई छोड़ देना होता है, क्या इसका मतलब काम छोड़ देना है साथियों, या इसका मतलब अपने सपनों से दूर हो जाना है। आपको बताना चाहेंगे कि इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। जीवन में ब्रेक का अर्थ होता है रफ्तार को थोड़ी देर नियंत्रित करना।
0: बिल्कुल,
1: दिशा को समझना और फिर आगे बढ़ना। कभी कभी जागृति जी, ब्रेक का मतलब सिर्फ 10 मिनट शांत बैठना भी हो सकता है। कभी परिवार के साथ खाना खाना भी हो सकता है, कभी किसी दोस्त से खुलकर बात करना, मोबाइल को कुछ देर दूर रख देना, प्रकृति के बीच बैठना, अपनी पसंद का संगीत सुनना, कभी किताब पढ़ना और कभी बस खुद से पूछना कि मैं ठीक हूँ। ये सभी जो चीजें हैं जागृति जी, वो ब्रेक का ही हिस्सा है। हम जैसा कि जानते हैं कि युवावस्था जीवन का एक ऐसा समय है जब व्यक्ति अपने भविष्य की नींव तैयार कर रहा होता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन भविष्य बनाने की कोशिश में वर्तमान को वह कब खो देता है उसे पता ही नहीं चलता। अगर हम लगातार तनाव में रहेंगे दोस्तों, नींद पूरी नहीं होगी, भोजन और दिनचर्या की अनदेखी करेंगे और हर समय खुद से ये उम्मीद रखेंगे कि हमें दूसरों से बेहतर करना ही है, तो जीवन का संतुलन बिगड़ सकता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए हमारे युवाओं को अपने जीवन में काम, आराम, लक्ष्य और आनंद, जिम्मेदारी और खुद के लिए समय, इन सभी के बीच संतुलन बनाना सीखना होगा।

0: जी हाँ कशिश, क्योंकि कई युवा इसीलिए भी थक जाते हैं क्योंकि वे हर काम के लिए हाँ कह देते हैं। दोस्तों ने कहा है हाँ, परिवार ने कहा है हाँ, काम मिला हाँ, नई जिम्मेदारी मिली हाँ, लेकिन श्रोता साथियों हर चीज के लिए हाँ कहना जरूरी नहीं है। कभी कभी अपनी क्षमता को समझ कर कहना अभी मैं ये नहीं कर पाऊंगा भी आत्म जागरूकता का ही हिस्सा है।
1: जी जी,
0: हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना मजबूती नहीं है श्रोताओं, अपनी सीमाओं को समझना भी समझदारी है।
1: बिल्कुल, कहना चाहेंगे दोस्तों आपसे कि प्रकृति में कोई पेड़ दूसरे पेड़ से तुलना नहीं करता है कि तुम मुझसे जल्दी बड़े हो गए हो।
0: बिल्कुल,
1: हर पेड़ का अपना समय होता है। इसी तरह युवा की भी यात्रा अलग है जागृति जी। किसी को सफलता जल्दी मिल सकती है तो किसी को थोड़ा समय लग सकता है।
0: जी हाँ,
1: किसी का रास्ता सीधा हो सकता है तो किसी को कई मोड़ भी मिल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक की जिंदगी बेहतर है और दूसरे की कमतर।
0: जी हाँ,
1: आपको श्रोता साथियों किसी और की गति से नहीं बल्कि अपनी दिशा से मतलब होना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: हम अक्सर बड़े ब्रेक की तलाश करते हैं, सोचते हैं कि छुट्टी मिलेगी तब आराम करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे तब खुश होंगे, बहुत पैसे होंगे तब जिंदगी को एंजॉय करेंगे। लेकिन जिंदगी केवल बड़े अवसरों का नाम नहीं होती। सुबह की चाय, परिवार के साथ बातचीत, दोस्तों की हंसी, पसंदीदा गाना, किसी पेड़ के नीचे कुछ मिनट बैठना और शाम की सैर, ये छोटी छोटी चीजें भी जीवन में सुकून भर सकती है। इसलिए जिंदगी को केवल भविष्य के किसी बड़े दिन के लिए मत बचाइए साथियों, आज को भी थोड़ा जीना सीखिए।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि श्रोताओं इसी कार्यक्रम के बीच हम एक छोटा सा मानसिक ब्रेक लेते हैं। कुछ सेकंड के लिए अपने आसपास की आवाजों पर आप ध्यान दीजिएगा, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए कि मैं पिछले कुछ दिनों से कैसा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ।
1: बिल्कुल,
0: क्या मैं लगातार किसी दबाव में हूँ? क्या मैं अपनी नींद और आराम को नजरअंदाज कर रही हूँ? क्या मैं दूसरों से अपनी तुलना बहुत ज्यादा कर रही हूँ? क्या मैं अपने परिवार या दोस्तों से बात करने के लिए समय निकाल रही हूँ? और सबसे जरूरी, क्या मैं अपनी जिंदगी जी भी रही हूँ या सिर्फ उसे पूरा करने में लगा हुआ हूँ या लगी हुई हूँ? साथियों अगर इन सवालों का जवाब आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है तो शायद आपको जिंदगी रोकने की नहीं अपनी रफ्तार को थोड़ा संतुलित करने की जरूरत है।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए ब्रेक लेने का मतलब हार मानना नहीं है। कभी कभी कुछ देर रुक कर पानी पीना इसीलिए जरूरी हो जाता है ताकि हम लंबी यात्रा पूरी कर सके। इसी तरह जीवन में भी ठहराव हमें नई ऊर्जा दे सकता है।
1: बिल्कुल,
0: अगर आज हम थके हुए हैं तो खुद को ये कहने की अनुमति दीजिए कि मुझे हर दिन परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। एक दिन काम हुआ तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। एक लक्ष्य थोड़ी देर से पूरा हुआ तो हमारी पूरी जिंदगी असफल नहीं हो जाती है श्रोताओं। कभी कभी धीमा होना भी आगे बढ़ने का ही हिस्सा है।
1: बिल्कुल जागृति जी, दोस्तों जिंदगी कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जिसे हर स्टेशन पर बिना रुके आगे बढ़ना ही है।
0: बिल्कुल,
1: कभी किसी स्टेशन पर उतरना भी जरूरी है। थोड़ा पानी पीना, थोड़ा आसपास देखना, अपनों से मिलना, खुद से मिलना, और फिर जब मन तैयार हो अपनी यात्रा दोबारा शुरू करनी है।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि जागृति जी जिंदगी की खूबसूरती सिर्फ मंजिल तक पहुँचने में नहीं है, उस रास्ते में भी है जिसे हम तय कर रहे होते हैं।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि आज की तेज रफ्तार जिंदगी ने युवाओं को अवसर तो बहुत सारे दे दिए लेकिन साथ ही लगातार आगे बढ़ते रहने का दबाव भी बढ़ा दिया है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे समय में सबसे जरूरी है संतुलन। हमें अपने सपनों को छोड़ना नहीं श्रोताओं, अपनी मेहनत कम नहीं करनी है बल्कि हमें ये सीखना है कि मेहनत के बीच खुद को हम कैसे संभालते हैं, क्योंकि जिंदगी में हमेशा तेज भागना ही सफलता नहीं है। कभी कभी सही समय पर रुकना, अपनी स्थिति को समझना और सही दिशा में आगे बढ़ना भी उतना ही जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: रफ्तार हमारी होनी चाहिए, दबाव की नहीं। और याद रखिए, थोड़ा ठहरना मंजिल से दूर जाना नहीं बल्कि खुद को मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार करना है।
1: जी हाँ, तो दोस्तों अगली बार जब आपको लगे कि जिंदगी बहुत तेज भाग रही है और आप थक रहे हैं तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिएगा कि क्या मुझे हार मानने की जरूरत है या बस थोड़ी देर सांस लेने की। शायद जवाब होगा जागृति जी थोड़ी देर सांस लेने की।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि दोस्तों आपको रुकना नहीं है, बस कभी कभी अपनी रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक लगाना है।
0: तो जैसा कि श्रोता साथियों आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की जाना कि हम हमारे जीवन से किस तरह से थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं। तो बातें बहुत सारी हो चुकी है और समय का मान हमें रखना होगा। समय का मान रखते हुए आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं।
1: बिल
0: पर जाने से पहले जैसा कि कार्यक्रम का दस्तूर है कि अंत में भी आपको मनोरंजन करवाते हैं, तो अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ जागृति जी,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से जो बातें रही भागती जिंदगी थकते दिल को लेकर, ये बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को। नमस्कार।

थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारतेनू खवानू सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

भोजन में शामिल करके बच्चों के आहार को और पौष्टिक बना सकते हैं। इन्हीं में से एक है श्री अन्न, जिसे हम आम बोलचाल में मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज कहते हैं, जिसमें बाजरा, रागी, ज्वार, कुटकी, कोदो, सावा जैसे अनाज हमारे पारंपरिक भोजन का हिस्सा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि बच्चों को मोटा अनाज खिलाया जा सकता है? इसे बच्चों के भोजन में कैसे शामिल करें? क्या केवल मोटे अनाज खिलाने से ही बच्चा स्वस्थ हो जाएगा? इन्हीं सवालों को लेकर आज हम कार्यक्रम के माध्यम से एक बहुत ही प्यारी सी कहानी प्रस्तुत करने वाले हैं। वो कहानी हम अवश्य सुनेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि मोटे अनाज बच्चों की सेहत के लिए किस तरीके से खजाना हो सकते हैं, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं हम कार्यक्रम के माध्यम से एक छोटा सा नाटक जिसमें रीना और सुनीता दोनों बातचीत कर रही हैं। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: अरे सुनीता, मैं बड़े परेशान हूँ। मेरा बच्चा रोज खाने में नखरे करता है। रोटी दो तो कहता है नहीं खाने, सब्जी दो तो अलग कर देता है। समझ नहीं आता कि उसे ऐसा क्या खिलाऊं जिससे उसे स्वाद भी आए और शरीर को पोषण भी मिले।
2: रीना, बच्चों के खाने की यही तो सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन क्या तुमने कभी उसके खाने में अपने पारंपरिक अनाज शामिल करने के बारे में सोचा है?
1: पारंपरिक अनाज यानी कि तुम मिलेट्स की बात कर रही हो?
2: हाँ बिल्कुल, जैसे कि बाजरा, रागी, ज्वार, कुटकी, कोदो, सांवा, ये सभी। हमारे यहाँ तो इनका इस्तेमाल पहले से होता आया है।
1: लेकिन ये तो मोटे अनाज कहलाते हैं ना? मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए थोड़े भारी हो सकते हैं।
2: अरे ऐसा जरूरी नहीं है रीना, सही तरीके से तैयार करके और बच्चे की उम्र के अनुसार अगर इन्हें उचित मात्रा में दिया जाए तो ये बच्चों के संतुलित आहार का हिस्सा भी बन सकते हैं।
1: अच्छा सुनीता, लेकिन इसमें ऐसा क्या खास होता है?
2: इनमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि रागी जो होता है वो कैल्शियम का अच्छा स्रोत होता है, बाजरा और दूसरे जो मिलेट्स हैं उनमें फाइबर और खनिज तत्व पाए जाते हैं। साथ ही इनमें मौजूद पोषण बच्चों के संतुलित आहार में योगदान दे सकता है।
1: तो क्या सुनीता रोज बच्चों को सिर्फ बाजरा और रागी ही खिलाते रहें?
2: अरे नहीं नहीं, ये बात समझना सबसे जरूरी है कि ये अनाज पौष्टिक है, लेकिन बच्चे का भोजन केवल एक ही अनाज पर आधारित नहीं होना चाहिए। बच्चे को अनाज के साथ दालें भी दे, दूध या अन्य उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थ भी दे, हरी सब्जियां भी दे, मौसमी फल, मेवे और बीज भी दे। साथ ही उम्र और परिवार की उपलब्धता के अनुसार ये सारी चीजें हम दे सकते हैं।
1: मतलब कि सुनीता, भोजन में विविधता जरूरी है।
2: हाँ बिल्कुल, जैसे अगर आज बाजरे की रोटी है तो उसके साथ दाल और सब्जी भी हो सकती है। कभी रागी की खीर बन सकती है, कभी रागी का चिल्ला, तो कभी बाजरे की खिचड़ी, तो कभी कभी ज्वार या कुटकी को दूसरे खाद्य पदार्थों के साथ मिलाकर हम बच्चों के लिए बना सकते हैं।
1: वाह, यानी कि बच्चों को मोटे अनाज खिलाने के लिए रोज एक जैसा खाना बनाने की जरूरत नहीं है।
2: बिल्कुल नहीं, बच्चों के लिए भोजन स्वादिष्ट, रंग बिरंगा, मुलायम और उनकी पसंद के अनुसार बनाया जाए तो वे उसे आसानी से स्वीकार कर सकते हैं।
1: सुनीता, मेरे बेटे को खिचड़ी बहुत पसंद है, क्या उसमें मोटा अनाज मिलाया जा सकता है?
2: हाँ, बच्चे की उम्र और खाने की क्षमता के अनुसार उचित तरीके से अगर बनाकर दिया जाए तो ये बेहतर होगा। जैसे कि कुटकी या बाजरे की खिचड़ी में दाल और सब्जियां मिलाकर हम उसे पौष्टिक बना सकते हैं।
1: और रागी?
2: रागी? रागी से बच्चे की उम्र के अनुसार खीर, दलिया, चीला बनाया जा सकता है, लेकिन बनाते समय साफ सफाई का ध्यान रखना और अच्छी तरह पकाना भी जरूरी है।
1: एक बात पूछो सुनीता।
2: हाँ पूछो।
1: बाजार में तो बच्चों के लिए तरह तरह के पैकेट वाले खाद्य पदार्थ मिलते हैं, क्या वे मोटे अनाज से ज्यादा अच्छे होते हैं?
2: सिर्फ पैकेट देखकर किसी खाद्य पदार्थ को ज्यादा पौष्टिक नहीं मान लेना चाहिए हमें रीना। बच्चे के लिए भोजन चुनते समय उसकी पोषण, गुणवत्ता, सामग्री, मात्रा और उम्र के अनुसार उपयुक्तता भी देखनी चाहिए। घर में उपलब्ध स्थानीय और पारंपरिक खाद्य पदार्थ भी ऐसे में बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं।
1: मतलब हमारी रसोई में चीजों को भी हमें कम नहीं समझना चाहिए।
2: बिल्कुल, देखो रीना, हमारे गांव में पहले से कई तरह के अनाज इस्तेमाल होते आ रहे हैं, जरूरत है सिर्फ हम उन्हें नई तरह से बच्चों की थाली में शामिल करें।
1: लेकिन सुनीता, कुछ बच्चे तो बाजरा और ज्वार का स्वाद पसंद ही नहीं करते।
2: हाँ तो जबरदस्ती मत खिलाओ, धीरे धीरे आदत डालो। शुरुआत छोटी मात्रा से कर सकते हैं, उसे हम दाल, सब्जी या दूसरे पसंदीदा भोजन के साथ मिलाकर दे सकते हैं, और हम इस तरीके से खाने को और आकर्षक तरीके से परोस सकते हैं।
1: अच्छा सुनीता, यानी कि बच्चों के साथ धैर्य रखना भी बहुत जरूरी है।
2: हाँ, और एक और जरूरी बात, बच्चों को खाना खिलाते समय उसकी उम्र और विकास के अनुसार भोजन की बनावट और मात्रा का भी ध्यान रखना चाहिए। छोटे बच्चों को बहुत कठोर या बड़े टुकड़े नहीं देने चाहिए।
1: अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था।
2: हाँ, और भोजन बनाते समय हाथ, बर्तन, पानी और अनाज के साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही पौष्टिक भोजन तभी फायदा देगा जब वह सुरक्षित और स्वच्छ तरीके से तैयार किया गया हो।
1: हाँ सुनीता, अब समझ आया। मोटे अनाज सिर्फ अनाज नहीं है बल्कि हमारे पारंपरिक भोजन का हिस्सा है, जिसे सही तरीके से बच्चों की थाली में जगह दी जा सकती है।
2: बिल्कुल, और एक बात याद रखो, बच्चे की सेहत किसी एक खाद्य पदार्थ से नहीं बनती। संतुलित भोजन, विविधता, स्वच्छता, पर्याप्त पानी, अच्छी नींद, खेलना और उम्र के अनुसार देखभाल, इन सभी का महत्व भी अलग है।
1: तो सुनीता, आज से ही मैं अपने बेटे के खाने में बदलाव जरूर करूंगी। कभी ज्वार, कभी रागी, कभी बाजरा या हमारे यहाँ मिलने वाले मोटे अनाज को अलग अलग तरीके से बना दूंगी।
2: बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात, उसे प्यार से खिलाना, खाने को लेकर डर या दबाव नहीं बनाना और उसकी पसंद को समझते हुए धीरे धीरे नई चीजों की आदत डालना।
1: हाँ सुनीता, आज तुमने मेरी बड़ी चिंता दूर कर दी। अब मुझे समझ आया कि बच्चों की थाली में हमारे पारंपरिक अनाज भी स्वाद और पोषण लेकर आ सकते हैं।
2: हाँ रीना, हमारी रसोई में छिपे इन अनाजों को पहचानने की जरूरत है। बस मोटे अनाज को अपनाएं, लेकिन संतुलित और विविध भोजन के साथ।
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, आपने सुना, बच्चों के लिए मोटे अनाज को भोजन का हिस्सा बनाया जा सकता है, लेकिन किसी एक अनाज को पूरे पोषण का विकल्प नहीं मानना चाहिए। बाजरा, रागी, ज्वार, कुटकी, कोदो और सावा जैसे जो मोटे अनाज हैं, वो बच्चों की उम्र और खाने की क्षमता के अनुसार अलग अलग व्यंजनों में शामिल किया जा सकता है। बच्चों की थाली में केवल खाना भरना ही पर्याप्त नहीं है, सही विविधता और सही आदतें बनाना भी जरूरी है। हमारी पारंपरिक रसोई में मौजूद अनाजों को श्रोता साथियों आधुनिक तरीके से बच्चों की पसंद के अनुसार तैयार करें और उनकी थाली को रंग, स्वाद और पोषण से भरें, क्योंकि स्वस्थ बचपन किसी महंगे खाद्य पदार्थ से नहीं बल्कि रोज की छोटी छोटी अच्छे भोजन की आदतों से तैयार होता है। जी हाँ श्रोता साथियों, बच्चों की सेहत की शुरुआत हमारी रसोई से ही होती है। हमारे आसपास आसानी से मिलने वाले मोटे अनाज पारंपरिक अनाजों में शामिल होते हैं, जिन्हें समय के साथ हमारी थाली में फिर से जगह दी जा सकती है। बच्चों को इनके स्वाद और बनावट से परिचित कराने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें उनकी पसंद के व्यंजनों में धीरे धीरे शामिल किया जाए। जब घर में उपलब्ध अनाज से हम अलग अलग तरह की व्यंजन बनाते हैं तो बच्चों को खाने में विविधता मिलती है और परिवार भी अपनी पारंपरिक खाद्य विरासत से जुड़ा रहता है। साथ ही बच्चों की उम्र, उनकी खाने की क्षमता और व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखना भी जरूरी है। इसलिए अगली बार जब भी बच्चों की थाली सजाएं तो केवल यह न सोचें कि उन्हें क्या पसंद है, बल्कि यह भी सोचें कि उनके भोजन में कितनी विविधता है और उसमें स्थानीय पौष्टिक चीजों को कितनी जगह मिली है। हमारी छोटी सी समझदारी बच्चे की भोजन संबंधित अच्छी आदतों की नींव रख सकती है। इसलिए मोटे अनाज को पहचानिए, अपनी रसोई से जोड़िए और बच्चों को विविध भोजन की आदत दीजिए। यही हमारी पारंपरिक समझ को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सुंदर तरीका हो सकता है। तो जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना, अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़े ने आपड़े में देखाए तो आपड़े ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरी निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
1: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा, आपड़े आपड़ा भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है, हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
4: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोनू आप एक कार्य विचार करियो है कि जया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हूं या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जय हवा में आपड़े हाल हूं ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
4: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: थारी में पासो लावो चूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमारा वारा हंग्र भाई बोनो ने आपनी बोन अंजलि नो राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनो घणेमान स्वागत करा हो हमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम की भाई बोनो अमे हमारे टाइम माते हाजिर थे सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाथे। तो भाई बोनो आज हमारे कार्यक्रम में अब तक की बातचीत नो विषय है कि खरीफ ने बाद आपड़े रबी नी खेती करा हो तो अवड़े तकी आपड़े एनी तैयारी हरते शुरू करवी है कई कई बातों नु ध्यान रखवु है इने वारा में अजे आपड़े वाते करवा वारा हूं। तो वाते तमारी अब तकी घणा कानी रहेगा पण कार्यक्रम शुरू कर एने पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे करा आपड़ी वाते। तो बायन बोनो आप हमबरते रहजू आपड़ो रेडियो आपड़ी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: બેન બનુ ગીત તો આઈશું પૂરું અને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સપનું હણિમન સ્વાગત કરો હું અમારે આજને કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં જેમ કે બેન બનુ અમે આપને ગીત કે પહેલે વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હો કે ખરીફ ને બાદ રબીની ફસલની તૈયારી આપણને હેતે કરવી હે ને કઈ કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું હે તો આના વિશે માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ થકી જોડી રહી માંગીલાલજી તો સૌથી કે પહેલા આપણે સાંભળી લણાની વાત ને મોરે કર આપણી વાતે સર નમસ્કાર
1: નમસ્કાર જી
0: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતી હું મેં વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં
1: જી ધન્યવાદ
0: સર જૈસા કી આજ આપ હમારે કાર્યક્રમ સે જુડ રહે હૈ ઓર આજ હમારે કાર્યક્રમ મેં આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ કે ખરીફ કે બાદ રવી કી તૈયારી અભી સે હમ કૈસે શરૂ કરે
1: જી
0: ક્યુંકી હમ દેખતે હૈ કે જબ સીઝન આયે ઉસ સમય અગર હમ તૈયારી શરૂ કરતે હૈ તો બહોત સી બાર બહોત સી ચીજે હમ ભૂલ જાતે હૈ કે યે કરના થા ઓર યે નહીં કિયા ઓર અગર હમ પહેલે સે તૈયારી કરતે હૈ તો સમય રહેતે અગર કોઈ ગલતી ભી હો તો ઉસમે હમ સુધાર કર સકતે હૈ તો આપ સબસે પહેલે હમ યહી બતાઈએ કે ઇસકે લિયે હમે સબસે પહેલે ક્યા કરના હોગા
1: જી તો આપકા જો વિષય હૈ બહોત અચ્છા હૈ ઓર વર્તમાન મે ઇસ વિષય પર હમે સોચને એક જરૂરત હૈ સભી કિસાન ભાઈઓ કો તો દેખે રબી કી જો અચ્છી ફસલ કી શરૂઆત હૈ વો બુઆઈ કે દિન સે નહીં હોતી હૈ ઇસકી તૈયારી હૈ ખરીફ કી ફસલ કે જો અંતિમ ચરણ હોતા હૈ તબ સે શરૂ હો જાતી હૈ જૈસે સિતંબર મે અંત તક ઓર અક્ટૂબર મે શરૂઆત મે તો ઇસમે ક્યા હોતા કી ખેત બીજ મિટ્ટી નમી ઉસમે ફસલ કે અવશેષ સિંચાઈ કી સુવિધાએં ફસલ યોજના ઇન સબ પર જો હૈ રબી કી બુઆઈ સે પહેલે અત્યધિક વ્યવસ્થિત કરના પડતા હૈ ઓર ધ્યાન દિયા જાતા હૈ
0: જી જી
1: રબી કી ફસલ મે ગેહું ચના મસૂર મટર સરસો અલસી ये जो क्षेत्र में हमारे यहाँ होती है तो सामान्य रूप से हमारे जो जलवायु है उनके लिए अनुकूल होती है इसलिए स्थानीय जलवायु और मिट्टी की सिंचाई की सुविधा पिछली फसल और जो किसान के उद्देश्य हैं उनको ध्यान में रखकर चयन करना चाहिए
0: बिल्कुल
1: तो ये बहुत जरूरी है कि हम जब खरीफ के अंतिम चरण में है तो हमें देख लेना चाहिए कि हमारे खेत की क्या स्थिति है नमी कितनी है उसमें क्या जरूरत है कि जैसे खाद डालना है आपको या उसकी जैसे आपने खरीफ की कटाई कर दी तो उसके बाद में फिर उसकी जुताई करना होता है
0: बिल्कुल
1: तो सारी चीजें वो आपको पहले से देखने की जरूरत
0: बिल्कुल सर आपने सही कहा तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें खरीफ के बाद तुरंत ही इन सारी चीजों को देखने की जरूरत है ताकि आगे की जो फसल का उत्पादन हम चाह रहे हैं हमारे वो मन के अनुसार हमें मिल जाए तो इसके लिए हमें क्या करना होगा
1: तो देखिए हमें कुछ बातें हैं जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान देने की बहुत जरूरत है जैसे पहले खेत की जो स्थिति है उसको समझना बहुत जरूरी है
0: बिल्कुल
1: अब खेत की स्थिति में क्या है कि किसान है जो खरीफ की समाप्ति हो जाती है तो वो अपने खेत का निरीक्षण करे वो जाकर उसको देखे उसमें नमी कितना है पानी की निकासी का कैसा रहा ऐसा तो नहीं कि मिट्टी का कटाव हो गया हो ऐसा तो नहीं कि जैविक जो खेत में अवशेष है वो कितने हैं या नहीं है
0: बिल्कुल
1: तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है यदि खेत की मिट्टी बहुत कठोर हो गई है तो हो सकता है पानी की निकासी खराब है या रबी की बुआई से पहले जो सुधार की योजना बना सकते हैं तो इस तरह से हमें पहले उसकी स्थिति को अच्छे से समझना होगा और इसके लिए जो हमारे जो गांव में बड़े बुजुर्ग है वो और बेहतर तरीके से हमारे युवाओं को और हमारे ऐसे भाइयों को बता सकते हैं और उनसे हम जान सकते हैं कि किस तरह हमें करना चाहिए दूसरी हम बात करते हैं तो मिट्टी जो परीक्षण करना जरूरी होता है
0: बिल्कुल
1: मतलब जो परीक्षण का जो मतलब होता है वो तो क्या होता है कि हमें उसकी जो गुणवत्ता है उसकी जांच करना जरूरी होता है
0: जी जी
1: कि हमारी जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरकता है वो कितनी है वो उपयोगी है या नहीं है उसमें किन संसाधनों की आवश्यकता पड़ सकती है तो ये क्या है कि इसका जब मिट्टी की गुणवत्ता की जांच आप कर लेंगे तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि मेरी मिट्टी कैसी है कितनी उपयुक्त है या मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए तो एक तो है कि हमारे जो स्थानीय स्तर पर हम जांचते हैं कि जब मिट्टी का जो बोतल में भर के उसको उसकी परतें हम देखते हैं कि उसमें कले कितना है तो वो सारी उस तरह से हम देख सकते हैं जो हम स्थानीय उपाय करते हैं दूसरा अगर आपके पास में नजदीकी कोई कृषि विज्ञान केंद्र है या आपके पास में ऐसे टूल्स है जो आपके ग्राम पंचायत या आसपास में तो वहां भी इसका जांच की जा सकती है इसके साथ ही एक सोचने वाली बात यह है कि जब आपने मिट्टी की जुताई कर दी बुआई कर दी खेत की उसके पहले एक चीज ये भी है कि फसल का चुनाव है वो सोच समझ कर करना चाहिए
0: बिल्कुल
1: तो इसमें क्या होता है कि जैसे रबी की फसल का चयन एक तो बाजार का भाव देखकर कर लेते हैं हम लोग कि नहीं ये तो बहुत महंगी बिक रही है तो इसको करना जरूरी होता लेकिन ये देखना काफी नहीं है
0: बिल्कुल
1: उसके लिए ये देखना जरूरी है किस सिंचाई की सुविधाएं कितनी है, मिट्टी जो है किस फसल के लिए उपयुक्त है, पिछले मौसम में कौन सी फसल लगी थी, और परिवार का जो खाद्य आवश्यकता उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यदि परिवार को पोषण की प्राथमिकता है तो उसमें हम दलहन तिलहन और स्थानीय खाद्य जो फसलें हैं वो हमें उगाना चाहिए। इसके साथ में हमें ये भी देखना चाहिए कि कौन से खेत में कौन सी फसल करनी है, ऐसा नहीं कि हमने सब में एक जैसी कर दी।
0: बिल्कुल,
1: तो हमें उस संतुलन को देखना होगा कि हमारे पास में सुविधाएं कितनी है, पानी की है या हमारे पास में संसाधन कितने हैं। तो आपने मान लो पिछली बार किसी खेत में गेहूं लगाया, अब वापस एक बार देखने की जरूरत है कि उसमें गेहूं लगाना है या नहीं लगाना।
0: बिल्कुल,
1: तो वो हमें जरूरी है। दूसरी चीज एक यहाँ भी देखने की जरूरत है कि जब हम पोषण की बात करते हैं हमारी खेती से या हमारे परंपरागत खान पान की बात करते हैं जो स्थानीय है, तो उसमें क्या एक जो है वो जैव विविधता भी बीच में आती है हमारे।
0: बिल्कुल,
1: कि जो हमारे थाली की विविधता है उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए जो हमारी फसलें हैं वो जो उगती है वो हम खाते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि कौन कौन सी विविधताएं हैं वो हम कर सकते हैं। तीन चार पांच प्रकार की, जैसे आपने अनाज कर दिया, सब्जियां हैं या तिलहन है दलहन है।
0: बिल्कुल,
1: तो उससे क्या है आपको अलग अलग प्रकार की जो शरीर की पोषण आवश्यकताएं हैं वो पूरी होगी।
0: बिल्कुल,
1: इसी तरह अगर आप देखें तो हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि फसल का जो चुनाव हो कैसे करें, तो इसमें क्या फसल चक्र है उस पर भी हमें विचार करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: कि जैसे लगातार एक ही फसल उगाने के बजाय अलग अलग प्रकार की फसलें को प्राथमिकता दें, उनकी परिस्थितियों को समझें, तो विशेष रूप से जो दलहनी फसलें हैं फसल प्रणाली को शामिल करने में मिट्टी की जो प्रक्रिया है उसको कितना अच्छा है, समर्थन मिलता है या नहीं, उसको हमें देखने की जरूरत है।
0: जी जी,
1: तो हमें फसल चक्र अपनी स्थानीय परिस्थितियों को देखकर उसे अपनाने की जरूरत है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि खरीफ के बाद रबी की तैयारी अभी से हमें कैसे करनी है और ढेर सारी बातों से आप हमें अवगत करवा रहे हैं। यही हम देखते हैं कि इसमें बीज का चुनाव भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए किसान भाई बहनों को क्या ध्यान रखने की जरूरत है?
1: देखिए, बीज बहुत महत्वपूर्ण है, तो रबी की बुआई से पहले बीज की व्यवस्था जो है वो अंतिम समय तक नहीं टाले कि जब बुआई करें तभी, उसकी व्यवस्था पहले से करें। जैसे आपका घर का बीज है तो उसको साफ करना, स्वच्छता देखना, उसकी गुणवत्ता को देखना, उसमें से जो कमजोर बीज है उनको अलग करना, अच्छे बीजों को उपयोग करना, ये चीजें हमें देखने की जरूरत है। इसके साथ में बुआई से पहले उसका उपचार करना जो हम परंपरागत विधियों से करते हैं, जैसे गोमूत्र है, राख है, नीम की पत्तियां हैं, उन सबकी जो है उनसे उपचार करके उनको तैयार रखिए आप।
0: बिल्कुल,
1: ताकि बुआई के समय आपको एक साथ सारी चीजें ना करनी पड़े। उस पे अगर बीज में नमी है तो उसको थोड़ा सुखाए आप, उसके नमी दूर करें, तो इस तरह से जो आपको उसको ध्यान रखने की जरूरत है।
0: बिल्कुल सर, और यही हम देखते हैं कि खेत की नमी और जैविक खाद और कई सारी चीजों की फसल में जरूरत रहती है, तो इनका ध्यान हमारे किसान भाई बहनों को कैसे रखना चाहिए?
1: देखिए, खरीफ की फसल होती है उसको कटाई हो जाती है, उसके बाद में क्या होता है कि हमारे कई किसान भाई ऐसे सोचते हैं कि बहुत ज्यादा बार जुताई करेंगे तो बहुत अच्छी फसल होगी।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन यहाँ ये ध्यान देने की जरूरत है कि अगर हम नमी की बात करते हैं तो हमें अनावश्यक जुताई है उससे बचना चाहिए। जितनी आवश्यकता उतनी करें, आपने दो जुताई की उसके बाद बुआई कर दो।
0: बिल्कुल,
1: ऐसा नहीं कि आप उसकी जुताई करते रहे तो उसकी नमी है वो गहरी चली जाएगी और आपकी जो रबी की फसल है उसको पानी की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी और उस फसल को नुकसान भी हो सकता है।
0: जी हाँ,
1: तो इस तरह हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ में जो नमी की हम बात करते हैं तो हमेशा क्या है कि उसको ढकने की बात करते हैं, मल्चिंग की बात करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे बुआई कर दी तो उस तरह से अगर आपने फसल लगाने वाले हो तो उससे पहले जैसे एक बार जुताई की तो उसको जो अवशेष चारे के उसको वहीं छोड़ दे, ताकि उनको हटाने से क्या होगा डायरेक्ट सूर्य किरणें उस पर पड़ेगी ना तो वो सूख सकती है। इसके साथ में जैविक खाद है, कंपोस्ट है, वो पहले से आप तैयार करें क्योंकि आपको आगे जाकर खेत में डालना है।
0: बिल्कुल,
1: तो वो भी आप तैयार करके रखिए। जैसे आपने कंपोस्ट तैयार कर दिया तो 60 दिन पहले आपने उसको शुरू कर दिया तो आपकी जब बुआई होगी तब आपको तैयार मिलेगा, तो उससे पहले आप छान कर रखिए उसको, आप बीज में मिलाकर उसको बोएं, उसके बाद में खेत में डालना हो तो डालें। इस तरह से हमें जो है उन चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है।
0: बिल्कुल सर, और यही फसल अवशेष को किस तरीके से हमारे किसान भाई बहन संसाधन बना सकते हैं?
1: देखिए, खरीफ की फसल के बाद जो डंठल या पत्तियां जो अवशेष बचते हैं वो जो जैविक खाद का काम करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इन्हें काटकर खेत में फैलाया जा सकता है, जिससे मल्च बोलते मल्चिंग करते हैं वो किया जा सकता है। इसको कंपोस्ट में शामिल किया जा सकता है ताकि इससे बहुत अच्छी खाद बनती है।
0: बिल्कुल,
1: इसमें एक परंपरागत खाद है वो बहुत अच्छी जो है आपकी उन अवशेषों से तैयार होगी। इसी तरह एक बात ये भी यहाँ पे आती है कि खेत की जो मेड़ है और जल निकासी है उसको पहले से आप सुधार ले,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि वो भी बहुत जरूरी होती है कि मेड़ की मरम्मत कर ले, जैसे अगर टूटी हुई हो बारिश के दिनों में या टूटे हुए हिस्से को ठीक करने की आवश्यकता है, निकासी की व्यवस्था रखें, पानी और जल सिंचाई का वो प्रबंधन आप पहले से, पानी कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, या हमारे पास उपलब्ध है तो कितना कब कब देना है, वो सारी चीजें हैं वो हमें देखने की जरूरत है।
0: बिल्कुल सर, यही सर बुवाई का समय कैसे ध्यान में रखना है किसान भाई बहनों को?
1: देखिए हम जो है कई वर्षों से हम खेती से जुड़े हुए हैं और हमारे जो बुजुर्ग है वो भी खेती करते आए हैं, तो रबी की जो फसल की बात करते हैं तो खरीफ की कटाई होने के बाद में हमने जुताई की और हम क्या है कि लगभग आप देखेंगे तो अक्टूबर में उसकी बुआई कर देते हैं। तो हमें इसके लिए पहली चीज में ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको इसका ज्ञान नहीं है कि कब बुआई करनी है तो आप सबसे पहले हमारे जो संसाधन है वो हमारे गांव के बुजुर्ग हैं, आप उनसे बात करें, उसके बाद उनसे जान ले कि कब बुआई करना उचित रहता है। तो इस तरह से अक्टूबर और नवंबर मिड तक आप आराम से जो है इन सब की बुआई कर सकते हैं।
0: जी सर, तो जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि खरीफ के बाद रबी की हमें तैयारी कैसे करनी है, यही हमारे किसान भाई बहन अगर रबी की योजना लिखित रूप में बनाए तो इससे क्या लाभ होगा और कैसे बना सकते हैं वो?
1: देखिए अगर योजना बनाते हैं तो जब बात योजना की आती है तो आपको परिणाम जो है वो बेहतर मिलते हैं अगर आप योजनाबंद काम करते हैं तो।
0: बिल्कुल,
1: तो जैसे आपने लिखा कि क्या करना है तो पहले आपने तय कर लिया खेत में कौन सी फसल बोनी है, बीज की मात्रा कितनी डालनी है, कौन सा बीज डालना है, मिट्टी है उसकी आपने जांच कर ली, मिट्टी का पोषण आपने देख लिया,
0: बिल्कुल,
1: जैविक खाद की मात्रा कितनी है, उसका उपलब्धता, उसका उपयोग देख लिया आपने, सिंचाई का संभावित जो स्रोत कौन सा होगा वो आपने देख लिया, कहाँ से पानी आएगा हमारी खेती के लिए, खेत में जो अवशेष है क्या आप उसको खेत में छोड़ रहे हो या कंपोस्ट में डाल रहे हो, या पशु जो खा रहे हैं उसको हम खेत में डाल रहे हैं कंपोस्ट में डाल रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: बुआई एवं निराई गुड़ जिसकी बात करते हैं वो जरूरत के अनुसार करें आप, उसमें देख ले कितने दिन लगेंगे, शर्म की व्यवस्था क्या होगी, बैल होंगे या कैसे आप उनकी व्यवस्था करेंगे, बाजार से अगर कुछ लेना है तो क्यों लेना है, कैसे लेना, कितना लेना है।
0: बिल्कुल,
1: और तय करना है कि हमें ये सोचना चाहिए कि अधिक से अधिक हम घर की ही चीजें उपयोग करें, बाजार पे हम ना जाएं।
0: बिल्कुल सर,
1: तो इन चीजों का ध्यान रखें।
0: जी बिल्कुल, तो सर जैसा कि आपने ढेर सारी बातों से हमारे श्रोता साथियों को अवगत करवाया है तो अंत में कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे किसान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं सभी किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहूंगा कि खरीफ के बाद जो रबी की तैयारी है वो हमारे आने वाली फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल,
1: तो आप सोच समझकर आप उसकी तैयारी करें, समय से बुआई करें ताकि उत्पादन बेहतर हो और फसल है वो आपको सुरक्षित रहे और अच्छा उत्पादन आपको मिल सके।
0: बिल्कुल, तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: जी धन्यवाद।
0: जिम की भाई बोनो अवड़े अपने वैस में मांगेलाल जी जुड़े तक कहा था ने एणे आपड़ा ने घनी असल तरीका तकी घना कानी बातें बताड़ी है, जिम की एणे आपड़ा ने बताड़ियो है कि आपड़े खरीफ ने बाद सप्त की पहले रबी नी फसल ने तैयारी करवी है तो आपड़े खेत नी स्थिति समझवी होगा, मिट्टी परीक्षण ने प्राथमिकता आलवी होगा, फसल नु चुनाव होसी हमजी ने करवो पड़ेगा, फसल चक्र ने आपड़े समझी सको, बीज नी तैयारी टाइम माते करवी होगा, बीज उपचार करवो होगा ने खाद भी बनावी ने आपड़ा ने पहले किस राखवो होगा। आशा करो हो कि हंगरी वाते आपने कमी होगा क्योंकि अभी टाइम थे गयो है आपने अनस कार्यक्रम तक ही सूटा पड़वानू, तो सूटा तो पड़ा पर साथ पहले हमरी लाइक और गीत ने मोरे पड़ा सूटा।

0: जाने चाहूंगी। मैं खेत हमारे बीज बोया, मैं पसंद बहाई वो विश्रम करो तो पसे बाप दादा ने जमा होते मारा अधिकार किन्नती। सूरी जन्म तक की सत्ता है, कानून या बात मानी है, कल्पना पुटे धर्म हक को ले सके न रिवाज और सच में बदली सके। बाप दादा ने जमी सूर्य अधिकार, सूर्य नो हक इन्हें पहचान।
1: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: सेहत नो राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात में शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सी व्यायाम ने दात काड़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज तकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नू असली राज। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

बुनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरू इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाई ने बोनो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हूं, यह आपड़े नी कितनी शांति मिले है। जैया हवा में आपड़े हाल हूं, ये भी आपड़ा थकी कई आश रागे है। हो भी अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है, ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है। जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पाराशर। स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है, स्वस्थ गांव स्वस्थ परिवार, स्वास्थ्य हमारी पूंजी। इस कार्यक्रम के माध्यम से कहा भी गया है कि स्वास्थ्य है तो जीवन में खुशहाली है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: बच्चे मन लगाकर पढ़ सकते हैं, किसान खेत में मेहनत कर सकता है और युवा अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे भी बढ़ सकता है। इसी तरह जब परिवार स्वस्थ होता है तो पूरा गांव स्वस्थ और मजबूत बनता है। इसलिए श्रोता साथियों, स्वास्थ्य केवल किसी एक व्यक्ति की चिंता नहीं बल्कि पूरे परिवार और पूरे समुदाय की जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि हमारे गाँव में आज भी बड़ी संख्या में लोग अपने दैनिक जीवन में खेती, पशुपालन, मजदूरी और दूसरे शारीरिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अच्छा स्वास्थ्य उनके जीवन और आजीविका दोनों के लिए बहुत जरूरी है।
1: जी जी।
0: लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारी न होने का नाम नहीं, स्वच्छ वातावरण, पौष्टिक भोजन, साफ पानी, व्यक्तिगत स्वच्छता, मानसिक शांति, नियमित दिनचर्या और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं लेना भी स्वस्थ जीवन का हिस्सा है।
1: जी हाँ, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि किसी भी स्वस्थ गांव की नींव एक स्वस्थ परिवार से शुरू होती है।
0: बिल्कुल,
1: परिवार में यदि साफ सफाई, संतुलित भोजन और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है तो उसका प्रभाव बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक दिखाई देता है। जागृति जी, अगर घर में भोजन बनाने से पहले और खाने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए, ये बात अगर समझाई जाए, पीने के पानी को साफ और सुरक्षित रखना चाहिए, भोजन को ढककर रखना चाहिए और घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, मच्छरों और दूसरे कीटों से बचाव के लिए भी स्वच्छता का ध्यान रखना जरूरी है। परिवार के प्रत्येक सदस्य की जरूरतें अलग अलग हो सकती हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए श्रोता साथियों, बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन और पर्याप्त नींद जरूरी है। गर्भवती महिलाओं को विशेष पोषण और स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता होती है। बुजुर्गों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच और परिवार का सहयोग महत्वपूर्ण है। युवाओं के लिए शारीरिक सक्रियता के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है।
0: जी हाँ अंजलि, इसीलिए परिवार में स्वास्थ्य को लेकर बातचीत और जागरूकता होनी चाहिए। बीमारी को छिपाना या नजरअंदाज करने के बजाय समय पर उचित स्वास्थ्य कर्मी या चिकित्सक से सलाह लेना बहुत जरूरी है। श्रोताओं, हम कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि स्वस्थ रहने में भोजन की बहुत ज्यादा भूमिका होती है। हमारे गाँव की पारंपरिक रसोई में कई ऐसे स्थानीय खाद्य पदार्थ मौजूद है अंजलि, जो पोषण से भरपूर होते हैं, जैसे कि दालें, मोटे अनाज, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध, दही, छाछ, अंकुरित अनाज, बाजरा, मक्का, ज्वार और कई प्रकार के स्थानीय खाद्य पदार्थ संतुलित आहार का हिस्सा बन सकते हैं। सिर्फ पेट भरना पर्याप्त नहीं श्रोताओं, शरीर को अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इसीलिए भोजन में विविधता रखना भी बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा तला भुना, बहुत अधिक नमक या चीनी वाला भोजन नियमित रूप से लेने से हमें बचना होगा। गांव में उपलब्ध स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों का उपयोग परिवार के भोजन को पौष्टिक और विविध बना सकता है। रसोई की छोटी से छोटी समझदारी भी परिवार के स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव ला सकती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही बात करें स्वच्छ पानी और स्वस्थ जीवन की तो श्रोता साथियों, पानी जीवन का आधार है। यदि पीने का पानी दूषित हो जाए तो कई प्रकार की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए घर में आने वाले पानी को सुरक्षित रखना और पानी के स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है। गांव में कुएं, हेडपंप, टंकी और अन्य जल स्रोत हो, उनकी साफ सफाई और सुरक्षा का सामुदायिक रूप से ध्यान देना चाहिए।
0: जी हाँ।
1: पीने के पानी के बर्तनों को भी साफ रखना चाहिए और उन्हें ढककर रखना चाहिए। श्रोता साथी, जल संरक्षण भी स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है। जब पानी सुरक्षित और पर्याप्त रहेगा तभी स्वच्छता और दैनिक जरूरतों को पूरा करना आसान होगा।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए जल की रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा एक दूसरे से जुड़ी हुई है।
0: जी हाँ, यही अगर स्वच्छ गांव स्वस्थ गांव को लेकर बात करें अंजलि, तो गांव केवल घरों का समूह नहीं होता। गांव की सड़कें, गलियां, तालाब, स्कूल, आंगनबाड़ी, खेत, पशुशालाएं और सार्वजनिक स्थान मिलकर गांव का वातावरण बनाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: अगर गांव में जगह जगह कचरा पड़ा हो, नालियां गंदी हो या पानी जमा होता रहे तो इसका असर पूरे समुदाय के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसीलिए श्रोताओं, स्वच्छ गांव बनाना किसी एक व्यक्ति या संस्था का काम नहीं है। हर परिवार अपने घर के आसपास सफाई रखे, कचरे को उचित स्थान पर डाले, सार्वजनिक स्थानों को गंदा न करे, ग्राम पंचायत और समुदाय मिलकर स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही स्वच्छता को केवल किसी विशेष अभियान तक सीमित न रखकर दैनिक आदत बनाना भी जरूरी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, आज हम जान रहे हैं कार्यक्रम के माध्यम से स्वस्थ गांव स्वस्थ परिवार और स्वास्थ्य हमारी पूंजी को लेकर ढेर सारी बातों।
0: जी हाँ,
1: तो बातें ये आगे और भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि किस तरीके से हमें स्वच्छ गांव और स्वस्थ गांव की जो चीज है उसे समझना होगा, यही बात करें स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता की, तो श्रोता साथियों, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अर्थ यह भी है कि जरूरत पड़ने पर समय पर स्वास्थ्य सेवा ली जाए। कई बार लोग बीमारी को छोटा समझकर लंबे समय तक नजरअंदाज करते रहते हैं, इससे समस्या बढ़ सकती है। गांव में उपलब्ध स्वास्थ्य केंद्र, आशा कार्यकर्ता, ANM, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि जागृति जी, स्वास्थ्य संबंधित सही जानकारी के लिए प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सकों से सलाह लेना चाहिए। बच्चों के टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की जांच, बुजुर्गों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं और सामान्य बीमारियों की पहचान समय पर होना बहुत जरूरी है और परिवार को इसके प्रति सजग भी रहना चाहिए।
1: जी हाँ, क्योंकि किसी भी गांव का भविष्य उसके बच्चों में दिखाई देता है। स्वस्थ बच्चे ही अच्छी तरह सीख सकते हैं, खेल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों को पौष्टिक भोजन, साफ पानी, पर्याप्त नींद, स्वच्छ वातावरण और नियमित स्वास्थ्य देखभाल मिलना बहुत जरूरी है। स्कूल में स्वच्छता की आदतें विकसित करना भी बहुत जरूरी है। हाथ धोना, साफ पानी पीना, भोजन को सुरक्षित रखना, आसपास गंदगी न फैलाना और व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना, ये जो छोटी छोटी आदतें अंजलि, बच्चों के पूरे जीवन में काम करती है। साथ ही महिलाओं की बात करें तो परिवार में महिलाओं की भूमिका बहुत जरूरी है। वे घर, बच्चों, खेती और अनेक जिम्मेदारियों को संभालती है। इसलिए श्रोताओं, महिलाओं के स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। महिलाओं को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन, आराम, आवश्यक स्वास्थ्य जांच और समय समय पर चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। विशेष रूप से गर्भावस्था और प्रसव के समय स्वास्थ्य संबंधी सलाह और देखभाल बहुत जरूरी है।
0: जी।
1: जब परिवार महिला के स्वास्थ्य को महत्व देते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, हमारे बुजुर्ग परिवार और समाज के अनुभव का खजाना होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताएं बदल सकती हैं। परिवार को उनकी दवाइयों, जांच, भोजन और दैनिक जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन बुजुर्गों के स्वास्थ्य में केवल शारीरिक देखभाल ही नहीं श्रोता साथियों, बल्कि उनका साथ और सम्मान भी महत्वपूर्ण है। उनसे बातचीत करना, उनकी बात सुनना और उन्हें परिवार का सक्रिय हिस्सा महसूस कराना उनके मानसिक सुख के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी के साथ अब बात आती है, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि जागृति जी, हम देखते हैं कि हम हमेशा शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं,
1: बिल्कुल,
0: और मानसिक स्वास्थ्य को भूल जाते हैं। श्रोता साथियों, अगर बात करें तो चिंता, तनाव, अकेलापन और लगातार परेशान रहने की स्थिति व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। परिवार में एक दूसरे से खुलकर बातचीत करना, समस्या को ध्यान से सुनना और जरूरत पड़ने पर उचित विशेषज्ञ से मदद लेना स्वस्थ वातावरण बनाने में सहायक हो सकता है। हमें ये समझना चाहिए कि परेशानी बताना कमजोरी नहीं होती है, किसी की बात सुनना और उसका साथ देना भी स्वास्थ्य की देखभाल का हिस्सा है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि स्वस्थ गांव के निर्माण में नशे से बचाव भी महत्वपूर्ण विषय है। नशे की आदत व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ साथ परिवार और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित कर सकती है। युवाओं को खेल, शिक्षा, कौशल, रचनात्मक गतिविधियाँ, सकारात्मक संगति से जोड़ना बहुत जरूरी है। परिवार और समुदाय मिलकर श्रोताओं जागरूकता पैदा कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ सहायता की दिशा में कदम भी बढ़ा सकते हैं। स्वस्थ गांव के लिए स्वस्थ पर्यावरण बहुत जरूरी है, जैसा कि हर कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारे श्रोता साथियों को हम बताते हैं। पेड़ पौधे, स्वच्छ हवा, सुरक्षित पानी और साफ वातावरण हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं।
0: जी।
1: गांव में अधिक से अधिक पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना, जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाना और कचरे का उचित प्रबंधन करना स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी है। एक पेड़ केवल छाया नहीं देता श्रोताओं, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण को भी बेहतर बनाता है और इसलिए पर्यावरण संरक्षण को स्वास्थ्य संरक्षण से अलग नहीं किया जा सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, गांव को स्वस्थ बनाने के लिए सभी की भागीदारी आवश्यक है। पंचायत, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कर्मी, किसान, महिलाएं, युवा और ग्रामीण मिलकर स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर काम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, ग्राम सभा में स्वच्छ पानी, साफ सफाई, कचरा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और पोषण से जुड़े जैसे जो विषय हैं, उन पर चर्चा की जा सकती है। समुदाय जो है वो अपनी समस्याओं को सामने रखकर उनके समाधान की दिशा में सामूहिक प्रयास कर सकता है और यही सामुदायिक भागीदारी सच्चे स्वराज की भावना को मजबूत करती है। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि जब गांव अपने स्वास्थ्य, स्वच्छता और विकास से जुड़े मुद्दों को समझकर मिलजुल कर समाधान की दिशा में आगे बढ़ता है, तभी हम देखते हैं कि एक जो गांव है वो स्वस्थ रह पाएगा।
1: बिल्कुल,
0: जागृति जी, हम अक्सर भविष्य के लिए धन बचाते हैं, जमीन खरीदते हैं और बच्चों की शिक्षा के लिए निवेश करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के बिना जीवन की दूसरी उपलब्धियों का आनंद अधूरा रह सकता है।
1: जी हाँ अंजलि, आपने सही कहा, क्योंकि स्वास्थ्य पर किया गया समय और प्रयास खर्च नहीं बल्कि भविष्य के लिए निवेश है। एक स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ परिवार की ताकत बनता है, स्वस्थ परिवार मिलकर स्वस्थ समुदाय बनाते हैं और स्वस्थ समुदाय मिलकर मजबूत गांव का निर्माण करते हैं। आज जरूरत है श्रोताओं कि हम स्वास्थ्य को केवल बीमारी के समय याद न करें, रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में स्वास्थ्य को शामिल करें। स्वच्छता रखें, पौष्टिक भोजन लें, साफ पानी पिए, नियमित शारीरिक गतिविधियां करें, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बीमारियों के संकेत को नजरअंदाज न करें।
0: बिल्कुल।
1: तो साथियों कहना चाहेंगे कि हम अपने गांव से एक ऐसी शुरुआत करें जहां हर घर में स्वच्छता हो, हर थाली में पोषण हो, हर परिवार में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हो और पूरे गांव में सहयोग की भावना हो, क्योंकि अंजलि स्वस्थ परिवार से स्वस्थ समाज बनता है, स्वस्थ समाज से मजबूत गांव बनता है और स्वस्थ गांव से मजबूत देश बनता है।
0: जी जी।
1: हमारी सच्ची पूंजी केवल हमारी संपत्ति नहीं, हमारा स्वास्थ्य है। इसे संभालना भी हमारी जिम्मेदारी श्रोताओं, और आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ वातावरण देना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, जागरूक रहे और अपने गांव को स्वस्थ, खुशहाल और मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाए।
0: बिल्कुल। तो जागृति जी, इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रही हैं। अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट, कोपड़ा, वागतरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9414082643।
0: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को। नमस्कार।

थारी में पासो लावो जोनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, बेशी अनाज तकी ना तू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, जैसा कि कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य जहाँ हम बात करते हैं शरीर को स्वस्थ रखने की, मन को बेहतर बनाने की और ऐसी छोटी छोटी आदतों की जिन्हें अपना कर हम अपने जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बना सकते हैं। श्रोता साथियों, जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में अच्छा खान पान, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और साफ सफाई जैसे विषय आते हैं।
0: जी हाँ,
1: लेकिन मनीषा, क्या हम सभी ने कभी सोचा है कि जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए देखभाल की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे मस्तिष्क को सक्रिय रखने और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए अच्छी आदतें भी जरूरी होती है।
0: जी हाँ,
1: आज की जिंदगी में मोबाइल फोन, इंटरनेट, भागदौड़ के बीच हमारा अधिकतर समय स्क्रीन पर बीतता है। हम मोबाइल पर पढ़ते हैं, संदेश देखते हैं, वीडियो सुनते हैं, लेकिन अपने विचारों को लिखने और अपने मन के साथ कुछ समय बिताने का अवसर कम ही निकाल पाते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: इसलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसी सरल आदत की जिसके लिए न किसी महंगे उपकरण की जरूरत है और न ही किसी विशेष व्यवस्था की। बस एक कागज, एक कलम और रोज के कुछ मिनट। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अपने हाथ से लिखने की आदत की। रोज कुछ मिनट लिखना किस तरह हमारे ध्यान, याद रखने के अभ्यास, विचारों को व्यवस्थित करने और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल में सहायक हो सकता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं रोज कुछ मिनट हाथ से लिखे, दिमाग सक्रिय और विचार व्यवस्थित होंगे।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि हमारा स्वास्थ्य केवल हमारे शरीर के स्वस्थ रहने का नाम नहीं है। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं श्रोता साथियों, तो उसमें शरीर के साथ साथ हमारा मन, दिमाग, हमारी सोच और हमारी भावनाएं भी शामिल होती हैं। हम अक्सर अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना, व्यायाम, योग, नींद और साफ सफाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन श्रोता साथियों, मानसिक स्वास्थ्य और दिमाग को सक्रिय रखने के लिए क्या करते हैं, इस पर काम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम देखते हैं अंजलि जी कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा दिमाग लगातार काम करता रहता है। मोबाइल पर संदेश, सोशल मीडिया, वीडियो, समाचार, काम का तनाव, पढ़ाई, परिवार की जिम्मेदारी और श्रोता साथियों भविष्य की चिंता, इन सबके बीच हमारे मन में एक साथ बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। कई बार हम किसी बात को लेकर परेशान होते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि आखिर परेशानी की वजह क्या है। कभी मन में बहुत सारे काम होते हैं और समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। ऐसे समय में एक बहुत ही सरल आदत हमारी मदद कर सकती है श्रोता साथियों, वो है श्रोता साथियों रोज कुछ मिनट लिखने की आदत।
1: बिल्कुल मनीषा, जब हम अपने हाथ से लिखते हैं तो हमारे शब्दों को याद करना, विचारों को समझना और उन्हें वाक्यों में व्यक्त करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में हमारा ध्यान और सोचने की क्षमता काम करती है। यदि विद्यार्थी पढ़ाई के बाद अपने हाथ से मुख्य बातें लिखते हैं तो उन्हें विषय को दोहराने और समझने में मदद मिलती है। इसी तरह बड़े भी अपनी दिनचर्या, अनुभव और जरूरी कामों को डायरी में लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप रोज कई पन्ने लिखें, केवल 5 मिनट से शुरुआत कीजिए। आज क्या लिखा, किस बात से खुशी मिली और कल कौन सा जरूरी काम करना है, इन बातों को लिखना भी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि दिन भर की जिम्मेदारियों और चिंताओं के कारण कभी कभी हमारा मन परेशान रहता है। ऐसे में अपनी भावनाओं और विचारों को कागज पर लिखने से उन्हें समझने और व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है।
0: जी हाँ,
1: इसके साथ ही श्रोता साथियों, पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और परिवार के साथ बातचीत भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, ऐसे में हम देखते हैं श्रोता साथियों कि कई बार हमारे दिमाग में एक साथ कई सारी बातें चलती रहती हैं। घर का काम, ऑफिस का काम, पढ़ाई, परिवार, भविष्य, पैसे की चिंता और कई छोटी छोटी बातें मन में घूमती रहती हैं। जब ये बातें श्रोता साथियों केवल दिमाग में रहती है तो हमें लगता है कि समस्या बहुत ज्यादा है, लेकिन जब श्रोता साथियों हम उन्हें कागज पर लिखना शुरू करते हैं तो एक एक बात सामने दिखाई देने लगती है। मान लीजिए श्रोता साथियों कि किसी व्यक्ति के मन में 5 काम हैं। वो सोच रहा है कि आज उसे बाजार जाना है, घर का काम जरूरी है वो करना है, किसी को फोन करना है, पढ़ाई करनी है और अगले दिन की तैयारी करनी है। अगर वो इन सभी कामों को दिमाग में रखेगा अंजलि जी, तो हम देखते हैं कि उसे तनाव महसूस होगा। ऐसे में श्रोता साथियों हम देखते हैं कि अगर वो कागज पर लिख ले कि जरूरी फोन करना है, बाजार कब जाना है, 1 घंटा पढ़ाई मुझे कैसे करनी है, घर का काम पूरा कैसे करना है, अगले दिन की तैयारी कैसे करनी है, ये सारी बातें श्रोता साथियों हम उतार लेते हैं तो हमारे मन का तनाव है वो कम हो जाता है और हम आसानी से हमारे कामों को कर पाते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, आज की जिंदगी में हमारा ध्यान बार बार भटकता रहता है। कभी मोबाइल पर संदेश आ जाता है, कभी फोन की घंटी बजती है, तो कभी हम एक काम करते हुए दूसरे काम के बारे में सोचने लगते हैं।
0: जी हाँ।
1: श्रोता साथियों, कई बार हम कोई जरूरी काम शुरू तो करते हैं लेकिन ध्यान दूसरी जगह चला जाता है, इससे काम पूरा करने में अधिक समय लग सकता है। ऐसे में कुछ मिनट शांत बैठकर हाथ से लिखना एकाग्रता का अभ्यास करने का अच्छा तरीका हो सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने तय किया कि वह रोज 5 मिनट अपने दिन के अनुभव लिखेगा। वह एक शांत जगह पर बैठकर मोबाइल को दूर रखता है और केवल अपने लिखने पर ध्यान देता है।
0: जी हाँ,
1: इससे उसे कुछ समय एक ही गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलता है। इसी तरह विद्यार्थी किसी पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु लिख सकते हैं, किसान अपने खेत के कामों का विवरण लिख सकते हैं, कोई व्यक्ति दिन भर के जरूरी कामों की सूची बना सकता है। शुरुआत में 5 मिनट पर्याप्त हैं, जरूरी नहीं है श्रोता साथियों कि आप एक साथ बहुत कुछ लिखें। धीरे धीरे अपनी सुविधा के अनुसार समय बढ़ा सकते हैं। यदि लिखते समय ध्यान भटकता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोबारा अपने काम पर ध्यान लगाएं और आराम से लिखना जारी रखिए। याद रखिए कि एकाग्रता का अभ्यास धीरे धीरे होता है। नियमित रूप से किसी गतिविधि में ध्यान लगाने का अवसर देना हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हो सकता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं, तो ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले आज हम कार्यक्रम में जान रहे हैं कि रोज कुछ मिनट हाथ से लिखना दिमाग को सक्रिय और विचार को व्यवस्थित रखता है, जिसमें मनीषा हम ढेर सारी बातों को जान पाए। यही बात करें विचारों को व्यवस्थित करने में लिखने की भूमिका की, तो श्रोता साथियों, हम सभी के मन में दिन भर कई तरीके के विचार आते रहते हैं।
1: जी हाँ।
0: कभी घर के कामों की चिंता, कभी बच्चों की पढ़ाई की, तो कभी नौकरी की जिम्मेदारियां और कभी भविष्य को लेकर योजनाएं। जब एक साथ बहुत सारे विचार मन में चलते हैं तो कई बार यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि पहले कौन सा काम करें और किस काम को बाद में करना चाहिए। ऐसे समय में मनीषा अपनी बातों को कागज पर लिखना उपयोगी हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: मान लीजिए किसी महिला के मन में कई योजनाएं हैं, वो पढ़ाई आगे बढ़ाना चाहती है, अपने बच्चों को समय देना चाहती है और घर की जिम्मेदारियां भी निभाती है। उसे लगता है कि समय की कमी के कारण वह कुछ नहीं कर पा रही।
1: जी हाँ।
0: वह अपनी दिनचर्या लिखती है और अगले दिन की 3 जरूरी काम तय करती है तो उसे अपने समय और अपने जिम्मेदारियों को समझने में मदद मिल सकती है। इसी तरह कोई युवा लिख सकता है कि उसे परीक्षा की तैयारी करनी है, कौन सा विषय पढ़ना है, रोज कितना समय पढ़ाई के लिए निकालना है, और लिखने से काम अपने आप पूरे नहीं होते, लेकिन उन्हें छोटे हिस्सों में बांटना और प्राथमिकताएं तय करना आसान हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: जब हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से लिखते हैं श्रोता साथियों, तो हमें अपनी जरूरतों और लक्ष्यों पर विचार करने का अवसर मिलता है। इसलिए दिन की शुरुआत में या रात को सोने से पहले अगले दिन की योजना लिखने की आदत अपनाई जा सकती है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि रात में हमें दिन की समीक्षा करनी है। हाथ से लिखने की आदत के लिए श्रोता साथियों, रात का समय भी अच्छा हो सकता है। सोने से पहले 5 मिनट निकाल कर हम पूरे दिन के बारे में लिख सकते हैं। आज मैंने क्या किया, आज मैंने क्या सीखा, आज कौन सी बात मुझे परेशान कर रही थी, कल मुझे क्या बेहतर करना है। इस तरह श्रोता साथियों, दिन की समीक्षा करने से व्यक्ति अपने व्यवहार और दिनचर्या को समझ सकता है। लेकिन रात में बहुत ज्यादा चिंता वाली बातें लिखकर हमें उसके बारे में सोचना हमारे लिए जरूरी नहीं है। यदि कोई बात बहुत परेशान कर रही है तो उसे लिखकर समाधान के अगले छोटे कदम पर ध्यान देकर हम बेहतर कर सकते हैं। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि हमें सकारात्मक सोच के साथ लिखना है। हाथ से लिखना केवल समस्याओं के बारे में लिखने तक सीमित नहीं होना चाहिए। हम अपने जीवन की अच्छी बातों को लिख सकते हैं। हर दिन ऐसी 3 बातें लिखी जा सकती है जिसके लिए हम आभार व्यक्त करें, जैसे कि आज परिवार के साथ मैंने समय बिताया, उसके लिए मैंने समय निकाला, आज मैंने अपना जरूरी काम पूरा किया, आज किसी ने मेरी मदद की। इससे हमारा ध्यान श्रोता साथियों केवल परेशानियों पर नहीं रहता है, बल्कि जीवन में मौजूद अच्छी चीजों पर भी जाता है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में कभी खुशी आती है, कभी चिंता, कभी निराशा, और कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनके बारे में हम किसी से खुलकर बात नहीं कर पाते। घर की जिम्मेदारियां, आर्थिक परेशानियां, काम का दबाव या परिवार से जुड़ी चिंताएं हमारे मन में कई विचार पैदा कर सकती है। श्रोता साथियों, ऐसे समय में अपनी भावनाओं को पहचानना और स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना जरूरी है।
1: जी हाँ।
0: लोगों को डायरी में अपनी मन की बातें लिखने से अपने विचारों और भावनाओं को समझने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति लिख सकता है कि आज मुझे काम पूरा नहीं होने की चिंता रही, मुझे समझ आया कि मैंने काम शुरू करने में देर की, कल मैं अपना काम थोड़ी देर पहले से शुरू कर दूंगा ताकि मेरा काम समय पर हो जाए।
1: जी
0: हाँ। इस तरह लिखने से व्यक्ति अपनी परेशानी को पहचान सकता है और आगे के लिए कोई छोटे कदम तय कर सकता है। इसी तरह हम रोज रात को अपने आप से 3 सवाल पूछ सकते हैं कि आज मुझे किस बात से खुशी मिली, आज किस बात ने मुझे परेशान किया, कल मैं अपने स्वस्थ दिनचर्या के लिए कौन कौन सी चीजें कर सकता हूँ। इन सवालों के जवाब लिखने से मनीषा हमें अपने दिन के अनुभव का विचार करने का अवसर मिलता है।
1: जी हाँ।
0: ये भी समझना जरूरी है कि डायरी लिखना मानसिक स्वास्थ्य संबंधित सभी परेशानियों का इलाज नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक चिंता, उदासी, नींद की परेशानी या तनाव बना रहे तो उसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लेनी चाहिए।
1: जी हाँ बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि हमारा स्वास्थ्य केवल बीमारी से बचने का नाम नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: स्वस्थ जीवन के लिए शरीर के साथ साथ मन और दिमाग पर ध्यान देना भी हमारे लिए जरूरी है। रोज कुछ मिनट अपने हाथ से लिखना एक बहुत छोटी और आसान आदत है। इसके लिए किसी खास जगह, महंगी चीज या ज्यादा समय की जरूरत भी नहीं होती है। एक कॉपी, एक पेन, कुछ मिनट का पर्याप्त समय हम ले सकते हैं। जब श्रोता साथियों हम अपने विचारों को कागज पर लिखते हैं तो हम देखते हैं कि उसे समझने, व्यवस्थित करने और प्राथमिकता तय करने में हमें मदद मिल सकती है। हमें अपने दिन के काम लिख सकते हैं, अपनी अच्छी बातों को याद कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को पहचान सकते हैं और अपने स्वास्थ्य से जुड़ी जो आदतें हैं उन पर हम ध्यान दे सकते हैं। इसलिए श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि आज से ही अपने व्यस्त दिन के कुछ मिनट अपने लिए जरूर निकालें। मोबाइल को थोड़ी देर किनारे रखें, कॉपी और पेन उठाएं और अपने मन की बातें लिखें। हो सकता है कि कुछ ही मिनटों में एक छोटा सा अभ्यास आपके दिन को अधिक व्यवस्थित कर सकता है।
0: जी बिल्कुल मनीषा, यही अंत में श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि मस्तिष्क और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए केवल लिखना ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ स्वस्थ जीवन शैली अपनाना भी जरूरी है। अपने भोजन में दालें, हरी सब्जियां, मौसमी फल, अनाज और पर्याप्त पानी शामिल करें। संतुलित भोजन शरीर और मस्तिष्क को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने में मदद करता है। अपनी उम्र और शारीरिक क्षमता के अनुसार नियमित रूप से टहले, योग करें या कोई अन्य शारीरिक गतिविधि अपनाएं। पर्याप्त नींद लें और सोने से पहले मोबाइल का उपयोग कम करने का प्रयास करें। परिवार और मित्रों के साथ बातचीत करें, अपने अनुभव साझा करें और दूसरों की बातें भी ध्यान से सुने। इसके साथ पढ़ना, लिखना, पहेलियां हल करना, नई भाषा सीखना या कोई रचनात्मक कार्य काम करना भी दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है। श्रोता साथियों, इन सभी गतिविधियों का उद्देश्य अपने शरीर और मन की देखभाल करना है। हर परिवार की जरूरतें और जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं, इसलिए अपने दिनचर्या को अपनी उम्र, स्वास्थ्य और परिस्थितियों के अनुसार हमें अपनाना चाहिए।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ू जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ू ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए, हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।